मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026, प्रातः के 5:58:33 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, भक्ति संगीत यानी भगवान के प्रेम में डूबकर गाया बजाया जाने वाला संगीत, ये सिर्फ सुर ताल नहीं है श्रोताओं, बल्कि दिल को ईश्वर से जोड़ने वाली सीढ़ी है। भक्ति संगीत मन को शांति देता है, ईश्वर से सीधा जुड़ने का मार्ग दिखाता है और हमें संस्कारवान भी बनाता है, एकता की भावना को पैदा करता है। और जब हम अपनी आत्मा में इस संगीत को बसा लेते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा दिल साफ हो जाता है, घर में बरकतें आती हैं और ईश्वर की याद में हमारा मन खुश हो जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक भजन से। आवाजें हैं नरेंद्र चंचल और साथियों की।

कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल और साथियों को। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और भजन। कलाकार हैं लता मंगेशकर।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया ये भजन। श्रोता, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक शब्द का। सिख धर्म में शब्द यानी दो शब्दों को जोड़कर बनाई जाने वाली गुरु की वाणी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु का दर्जा दिया और हुक्म दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, यानी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हर एक शब्द ही सिखों का गुरु है। इसलिए सिख मत्था टेकते वक्त किताब को ही नहीं बल्कि उसमें लिखे शब्द को भी नमन करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 6 गुरु, 15 भगत और 11 भट्ट और 4 गुरु सिखों की वाणी शब्द रूप में है। ये शब्द हमें बताते हैं श्रोताओं, एक ओंकार सच बोलना, मेहनत की कमाई खाना, नाम जपना आदि। यानी शब्द ही पूरे जीवन का सार है, एक तरह से जीवन जीने की गाइडलाइन है। तो वक्त हो चला है एक शब्द का कार्यक्रम में श्रोताओं, और हरप्रीत कौर की आवाज में ये शब्द है।

श्रोताओ, शब्द के बाद कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक नाते पाक का। श्रोताओ, नात पढ़ना सुनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जताने का तरीका है। कुरान में दुरूद भेजने का हुक्म है, नात उसी का एक अदबी रूप है। या नबी सलाम अलैका जैसी नात सुनकर दिल नरम हो जाता है और बेचैनी दूर हो जाती है। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बयान होता है, जिससे सुनने वालों को अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलाद, उर्स और दीनी जलसे नाते ख्वानी के बिना अधूरे माने जाते हैं। और जब बात कव्वाली की हो तो कव्वाली एक श्रोताओ सूफ़ी संगीत है। इसमें अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह और इश्क हकीकी की बातें हारमोनियम पर तबला ढोलक के साथ गाकर सुनाई जाती हैं। कव्वाली का मकसद समा है, यानी सुनते सुनते ऐसी हालत में पहुंच जाना जहां इंसान दुनिया भूलकर अल्लाह की याद में खो जाता है, जिसे वजद कहते हैं। तो श्रोताओ, आइए अब रुख करते हैं एक नाते पाक की ओर। और ये नाते पाक है इकबाल हुसैन हैदराबादी की आवाज़ में।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे इकबाल हुसैन हैदराबादी को। कार्यक्रम है भक्ति संगीत का वंदना, और अब कार्यक्रम के अंत में वक्त हो चला है एक और भजन का। ये भजन है अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए इसी भजन के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार हैं ए हरिहरन, मिताली बी सिंह और उत्तरा केलकर।
1: एपिसोड नंबर 138 138।

बड़ी चतुराई से मंथरानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्य कुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी

आंख भड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग सुन रहे थे। संगीत सतीश भाटिया का था, कलाकार थे ए हरि अरन, मिताली बी सिंह और उत्तरा केलकर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति भी प्रीत में है। प्रेम और शांति, दोस्ती और भाईचारे का अटूट संबंध दिलों की खोट और कपट को इस प्रकार दूर कर देता है जिस प्रकार उजाले के सामने अंधेरा भाग जाता है। यह संदेश कोई नया और अनोखा नहीं है। ईश्वर के हर नेक बंदे ने, हर नबी और वली ने, हर ऋषि और मुनि ने अपने अपने अंदाज से इसे दोहराया है। हजारों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम दुश्मनी को कभी दुश्मनी से नीचा नहीं दिखा सकते, केवल प्रेम और दोस्ती से उसे जीत सकते हैं। ये कभी न मिटने वाला कानून है। प्रभु यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों और विरोधियों से प्रेम और बुराई का बदला नेकी से दो। हजरत मोहम्मद साहिब ने कहा, अगर तुम ईश्वर से प्रेम का दावा करते हो तो उनके बंदों की सेवा करके दिखाओ। इसीलिए मैं कहता हूं ये संदेश अनोखा नहीं है मगर सच्चा जरूर है। मेरे विचार में पहाड़ों जैसा पुराना, समंदर जैसा गहरा, सूरज जैसा रोशन और गुलाब जैसा ताजा संदेश ये है। अपने दिल दिमाग के दरवाजों को खोल दो ताकि तंग नजरी, भेदभाव, जात

पांत के जाले साफ हो जाएं। मनुष्य मनुष्य को उसके असली रूप में देख सके, ताकि प्रेम की धीमी धीमी किरणें ठंडी हवा बंद कलियों को फूल बना दे। और मनुष्य एक दूसरे से नफरत करने की बजाय एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना सीखे। कौम, नस्ल, रंग, जात पात और प्रांत के भेदभाव ने देश के नक्शे को बिगाड़ दिया है, जिसमें पढ़कर लोग इंसानियत का असली अर्थ भी नहीं समझ पाते। इंसानियत की केवल एक ही कसौटी है, मनुष्य का मनुष्य सम्मान करे, प्रेम करे, वो भी बिना जाति धर्म को देखे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। हमारे दिलो दिमाग में ऐसी गुत्थियां पड़ गई हैं जिसकी वजह से आपसी मेलजोल और इंसानियत का एहसास कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में जब जिंदगी इंसानियत मौत और जिंदगी के दोहराहे पर खड़ी हो, ऐसी बातों की याद ताजा रखना जरूरी है जो एकता अमन प्रेम और शराफत का उपदेश देती हैं।

अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है गांधी कथा।

हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही खास मित्र थे। मित्र कहे जा सकने वाले ऐसे मेरे दो मित्र भिन्न भिन्न समयों में थे। एक मित्रता तो दूर तक नहीं निभी, यद्यपि मेरी ओर से उस मित्र का त्याग नहीं हुआ। मेरे दूसरे का साथ करने के कारण पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरा साथ मेरे जीवन का दुखद अध्याय है। ये संग बहुत वर्षों तक चला। उस मित्रता में मेरी सुधारक दृष्टि थी। पहले उस साथी की मित्रता मेरे मझले भाई से थी। वह मेरे भाई का सहपाठी था। उसमें कई दोष थे जिन्हें मैं देख पा रहा था, पर मैंने उसे सच्चा वफादार माना था। माताजी, बड़े भाई और मेरी धर्मपत्नी तीनों को ये संगत बुरी लगती थी। पत्नी की चेतावनी की तो मुझ जैसे घमंडी पति कब परवाह करता था। हां, माताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकना मेरे लिए कठिन था। बड़े भाई की सीख भी सुननी ही थी, पर यह कहकर मैंने उन लोगों को तसल्ली करा दी, आप लोग उसके जो दोष बताते हैं उन्हें मैं जानता हूं। आप लोगों को उसके गुणों का पता नहीं है। मुझे वह गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने उसका साथ सिर्फ उसे सुधारने की नीयत से किया है। मेरा विश्वास है

कि वह सुधर जाए तो बड़ा अच्छा आदमी निकलेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मेरे बारे में बेफिक्र रहें। मैं ये तो नहीं जानता कि इन बातों से उनका समाधान हो गया, पर उन्होंने मेरा विश्वास किया और मुझे अपनी राह पर जाने दिया। मुझे आगे चलकर मालूम हुआ कि मेरा अनुमान सही नहीं था। सुधार करने के लिए भी आदमी को गहरे पानी में नहीं उतरना चाहिए। हम जिसका सुधार करना चाहते हों उसके साथ मित्रता नहीं चल सकती। मित्रता में अद्वैत भावना होती है। ऐसी मित्रता दुनिया में बहुत कम देखने में आती है। मित्रता समान गुण वालों की ही होती है और उन्हीं को शोभती और निपती है। मित्रों का एक दूसरे पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता, इसलिए मित्रता में सुधार की गुंजाइश बहुत थोड़ी होती है। मेरा मत है कि अंतरंग मित्रता अनिष्टकारक है, क्योंकि मनुष्य दोष को बड़ी जल्दी अपनाता है। गुण ग्रहण करने में प्रयास की आवश्यकता है। आत्मा और ईश्वर की मित्रता की चाह रखने वाले को एकाकी रहना चाहिए या फिर अखिल विश्व के साथ मैत्री करनी चाहिए। ये विचार ठीक हो या बेठीक, इतना सही है कि मेरा व्यक्तिगत मित्रता संपादन का प्रयास निष्फल रहा। जिन दिनों इस मित्र से मेरा संबंध था, उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का बोलबाला था। अनेक शिक्षक गुप्त रूप से मांस और मद्य का सेवन करते थे। उसी मित्र से ये बात मालूम हुई। राजकोट के अन्य

0: कर देखो तो पता चलेगा कि तुम में कितना बल आ जाता है। ये सारी दलीलें कुछ एक दिन में ही सामने नहीं आई थी, ऐसी दलीलें भांति भांति के उदाहरणों से सजाकर अनेक बार सामने रखी गईं। मेरे मंझले भाई तो फिसल चुके थे, उन्होंने इन दलीलों का समर्थन किया। अपने भाई और इस मित्र की तुलना में मैं कहीं कमजोर था, उनका बदन अधिक गठीला और शारीरिक बल मुझसे बहुत अधिक था। वह साहसी थे, इस मित्र के पराक्रम के कार्य मुझे मोह लेते थे। वह चाहे जितना दौड़ सकता था और बड़ी तेजी के साथ, लंबी और ऊंची कूदान में उसे कमाल हासिल था और मार सहने की शक्ति भी उसमें अद्भुत थी। इस शक्ति का प्रदर्शन भी जब जब मेरे सामने करता था, अपने में जिस शक्ति का अभाव होता है उसे दूसरे में देखकर मनुष्य का चकित होना स्वाभाविक है। मैं भी हुआ, आश्चर्य से मोह उत्पन्न हुआ। मुझ में दौड़ने की शक्ति नहीं के बराबर थी, मैं भी इस मित्र की भांति बलवान हो जाऊं तो कैसा अच्छा हो। इसके सिवा मैं बड़ा डरपोक था, चोर भूत सांप आदि के भय मुझे घेरे रहते। ये डर मुझे बहुत सताते थे, रात को अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती थी, अंधेरे में तो कहीं न जा सकता था, दीपक के बिना सोना भी नामुमकिन सा था। उधर से भूत आ जाए, उधर से चोर आ जाए और तीसरी दिशा से सांप निकल आए तो? इसलिए रोशनी तो रहनी ही चाहिए। पास सोई हुई और किंचित युवावस्था प्राप्त स्त्री पर भी अपने इस भय की बात कैसे प्रकट करता? मैं जान गया था कि मुझसे वह अधिक हिम्मत वाली है और इससे मैं लज्जित था। उसने सांप वगैरह का डर तो कभी जाना ही नहीं था, अंधेरे में अकेली जाती थी। मेरी इन कमजोरियों का उस मित्र को पता था, वह मुझसे कहता, मैं तो जीवित सांप को भी हाथ से पकड़ लेता हूं, चोर से नहीं डरता, भूत प्रेत तो मानता ही नहीं। ये सब मांसाहार का प्रताप है, ये बात उसने मेरे मन में जमा दी।
1: इसी के साथ गांधी कथा अब संपन्न होती है।

अभी आप गांधी कथा सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित वाकथॉन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हमारे श्रोता सुन सकेंगे आज दिन में 7:31 से। धरती गाती है लोक संगीत का ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज दिन में 9:25 पर, जिसमें रागनियां सुनवाई जाएंगी। कलाकार होंगे वीर सिंह शर्मा और साथी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही क्षणों में संस्कृत में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। 2 अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी जिसका विषय है कब्ज और अपच।
2: खान पान में गड़बड़ियों के चलते तमाम लोग कब्ज और अपच के शिकार हो जाते हैं। कब्ज और अपच के कारण कुछ और बीमारियां भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। अपच व कब्ज आम आदमी के लिए उस आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की देन है जिस पर आज उसे गर्व है। विज्ञान और तकनीक पर आधारित आज के परिवेश ने मनुष्य की रोजमर्रा की आदतों और आवश्यकताओं में व्यापक परिवर्तन किए हैं। उसके रहन सहन का स्तर बदला है तथा उसके साथ ही उसके खान पान के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। आज मानव अपना भोजन सीधे धरती से न लेकर मशीनों द्वारा सील बंद किए गए पैकेटों से लेने को प्रमुखता देता है और इसी वजह से मनुष्य रेडीमेड खान पान की चीजें लेता है। केवल 3 मिनट में तैयार होने वाले नाश्ते और भोजन की तर्ज पर वह उस भोजन को प्रमुखता देता है जो जल्दी तैयार हो जाए और खाने में भी आसान हो। विज्ञान ने जहां एक तरफ आम आदमी को खान पान में सुविधा उपलब्ध कराई है, श्रम और समय की बचत हुई है, वहीं दूसरी ओर उसके भोजन में रेशेदार और चोकरयुक्त पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम हो गई है जिससे मनुष्य अपच व कब्ज जैसी आम बीमारियों का शिकार हो रहा है। आज चिकित्सकों के पास प्रतिदिन आने वाले रोगियों में से 20-25% रोगी ऐसे होते हैं जो अपच और कब्ज जैसी बीमारियों के ग्रास बन चुके होते हैं। यूं तो साधारण व्यक्ति भी कब्ज का मतलब समझता है लेकिन चिकित्सकीय भाषा में कब्ज आम आदमी की उस समस्या को कहा जाता है जब प्रतिदिन कम से कम एक बार शौच जाने पर भी उसका पेट साफ नहीं होता। आमतौर पर ये शिकायत डाइटिंग करने या फिर लगातार कुर्सी पर बैठे रहने से होती है। भोजन में हरी और रेशेदार सब्जियों एवं मौसमी फलों का अभाव होना और व्यायाम से दूर होना अपच व कब्ज जैसी रोगों के प्रमुख लक्षण हैं। अपच तथा कब्ज के शिकार रोगियों के लिए यूं तो फल और सब्जियां दवाओं से भी कहीं अधिक अच्छी होती हैं। इनका सेवन निरंतर करने से इन रोगों से मुक्ति मिलती है। मौसमी फलों और सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई और तुरई प्रमुख हैं और पपीता तो ऐसे रोगियों के लिए रामबाण औषधि की तरह है। यह अन्य फलों की अपेक्षा सस्ता भी होता है और पेट के लिए काफी हितकारी होता है। इसके अलावा हर सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीता रहे। अधिक पानी पीने से मल सूख कर सख्त नहीं हो पाता, इस कारण व्यक्ति कब्ज या अपच का शिकार नहीं हो पाता है और भोजन को पचाने में भी पानी सहायक होता है और अपनी नित्य प्रतिदिनचर्या में चाय, कॉफी के तंबाकू के साथ साथ ऐसे भोज्य पदार्थों का भी अधिक सेवन नहीं करना चाहिए जो अधिक चिकनाई या मसालेदार हों। और यदि कोई व्यक्ति कब्ज या अपच का शिकार होता है तो वह 4 से 6 चम्मच इसबगोल की भूसी का सेवन पानी, दही या गर्म दूध के साथ सुबह शाम करे और यदि उसको तब भी आराम नहीं मिलता तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अपच और कब्ज के रोगी को जब रोग काफी पुराना हो जाता है तो मल विसर्जन के समय मांस की 2-3 गांठें बाहर निकलती हैं जिनसे बूंदों या कभी कभी धार के रूप में रक्त बाहर निकलता है लेकिन सामान्यतः उसे किसी खास पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। ऐसा रोगी प्रमुख रूप से अर्स या बवासीर जैसे घाव के रोग का शिकार होता है और उन्हें चाहिए कि वे तुरंत बिना विलंब किए किसी योग्य चिकित्सक की शरण लें और नीम हकीमों या फिर चांसी अस्पतालों के चक्कर में न पड़े क्योंकि विलंब होने की स्थिति में रक्त बाहर निकलता जाता है और रोगी खून की कमी एनीमिया का शिकार हो जाता है।
1: अभी आप कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे थे जिसमें आपने सुनी जानकारी। विषय था कब्ज और अपच और उपचार। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी, विषय है रासायनिक उर्वरकों का बदलता स्वरूप और प्रयोग।
3: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं, और लाभ लेने के लिए हमारे किसान भाई लगातार उन्नत किस्में अपनाते हैं और रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। अगर आज के समय में बात करें तो रासायनिक खादों का जो स्वरूप है वो बदल गया है, तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं जिसका विषय है रासायनिक उर्वरकों का बदलता स्वरूप और प्रयोग। किसान भाइयों, कृषि उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरित क्रांति

0: अनुकूल है, जैसे नियंत्रित विमोचन। भैया ये उर्वरक धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं जिससे पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। इससे उर्वरकों की बर्बादी कम होती है और लागत भी घट जाती है। किसान भाइयों, अब जमाना बदल गया है, अब जल में घुलनशील उर्वरक भी आ गए हैं। भैया इन उर्वरकों को पानी में घोलकर ड्रिप सिंचाई या स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है। ये तेजी से पौधे द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और भैया उच्च मूल्य वाली फसलों में अधिक उपयोगी होते हैं। किसान भाइयों जैसे नैनो उर्वरक, किसान भाइयों यह आधुनिक तकनीक पर आधारित उर्वरक है। भैया इसकी खासियत यह है कि यह बहुत कम मात्रा में अधिक प्रभाव देते हैं। इससे भैया लागत कम होती है और पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों मिश्रित उर्वरक, इसमें भैया एक से अधिक पोषक तत्व एक साथ होते हैं जैसे NPK। इसमें संतुलित पोषण मिलता है और अलग अलग उर्वरकों का उपयोग की जरूरत कम होती है। और एक है भैया सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त उर्वरक। भैया देखो आज के समय में केवल NPK ही नहीं बल्कि जिंक, आयरन, बोरोन जैसे सूक्ष्म तत्वों को भी उर्वरकों में शामिल किया जा रहा है जिससे भैया फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। और भैया देखो समय के साथ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में बदलाव आया है। कुछ किसान भाई हमारे संतुलित उर्वरकों का उपयोग करते हैं। पहले जो किसान थे नाइट्रोजन का ज्यादा उपयोग करते थे, लेकिन भैया अब संतुलित उर्वरक जैसे NPK का महत्व समझ गए हैं और इसका कम उपयोग करते हैं। भैया इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। भैया आज के जमाने में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर किया जा रहा है। इससे भी सही मात्रा में पोषक तत्व दिए जाते हैं और अनावश्यक खर्चा भी बचता है। किसान भाइयों एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन IMP, भैया इसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद जैसे जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी की संरचना बेहतर होती है। किसान भाइयों सटीक कृषि भी किसका उदाहरण है, जैसे नई तकनीक में GPS सेंसर आदि की मदद से खेत में जरूरत के अनुसार ही उर्वरक दिया जाता है। इससे उत्पादन बढ़ता है और संसाधनों की बचत भी होती है। ड्रिप और फर्टिगेशन तकनीक, किसान भाइयों अब उर्वरकों को पानी के साथ फर्टिगेशन दिया जाता है जिससे सीधे जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचते हैं और बर्बादी कम होती है। किसान भाइयों रासायनिक उर्वरकों के कुछ लाभ भी हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, पौधे की तेजी से वृद्धि होती है और बड़े स्तर पर खेती में उपयोगी होता है और खाद्यान्न सुरक्षा में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे किसान भाई सीमित मात्रा में इनका उपयोग करते हैं तो सही है, अगर हद से ज्यादा उपयोग करते हैं तो इससे होने वाली हानियां भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, जल और वायु प्रदूषण बढ़ता है, सूक्ष्म जीवों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। किसान भाइयों अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य में इन उर्वरकों का उपयोग अधिक टिकाऊ तरीके से किया जाएगा क्योंकि समय बदल रहा है, नई नई तकनीक आ रही है जैसे नैनो तकनीक है, जैव उर्वरकों और ऑर्गेनिक खेती को भी भैया बढ़ावा दिया जा रहा है और भैया सरकार भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी पहल के माध्यम से किसानों को भी जागरूक कर रही है। तो किसान भाइयों कुल मिलाकर बात ये निकल के आती है कि रासायनिक उर्वरकों का स्वरूप और उपयोग समय के साथ बदलता गया है। पहले जहां इनका अंधाधुंध उपयोग होता था तो भैया वहीं अब वैज्ञानिक और संतुलित तरीके अपनाए जा रहे हैं। नए उर्वरकों और नई तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव हुआ है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ें। तो किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
1: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें सुन रहे थे जिसमें आपने सुनी जानकारी, विषय था रासायनिक उर्वरकों का बदलता स्वरूप और प्रयोग। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें।

आज सुबह 7:31 पर आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित वाकेथॉन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हमारे श्रोता सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का समय रहेगा आज सुबह 9:00। जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होंगी 9:15 पर। धरती गाती है लोक संगीत का ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज सुबह 9:25 पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रागनिया, कलाकार होंगे वीर सिंह शर्मा और साथी बात आसपास की। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज सुबह 9:50 पर। वाचन स्वर और संकलन होगा अंकुर चौधरी का। भारत में रेडियो

0: रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज दिन में 10 बजे। हमारे केंद्र से आज दिन में 10:30 पर कार्यक्रम होगा जागरूक श्रोता। हमारे श्रोता हमें कॉल कर सकेंगे। आज का विषय होगा रेड क्रॉस के सिद्धांत और आज का समाज। ये कार्यक्रम होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर प्रायोजित कार्यक्रम। उमंग का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से आज दिन में 11:30 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। कार्यक्रम का आज आप सुन सकेंगे भाग 1280। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज दोपहर 12:00। कार्यक्रम का आज आप सुन सकेंगे भाग 665। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा आज दोपहर 12:15 पर। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे योगराज नायक का सितार वादन। राग होगा शुद्ध सारंग। विलंबित अदा चौताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध होंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: लगाएं पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय। अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
1: प्रदेश में 30 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
2: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
4: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाया।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
5: किसानों ने मांग की कि सेल्फ राइट बढ़े तो हम भेज पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ राइट बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ राइट बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्फ राइट बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम, क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जहाँ फलों की बैगिंग की गई है।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
6: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के मान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। IPL क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत RCB को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। RCB की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। देश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय। अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

करना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना

0: स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 हुए हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित वाकथन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आप अब सुनेंगे।
3: बोल

0: जो आयोजन किया जा रहा है आरतपुर हिंदुस्तान के नाम से, ये वोकेशन है जिसका आयोजन यहाँ पर आज किया गया है और जो वोकेशन की शुरुआत बिल्कुल होने वाली है, सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर इस बात को आकाशवाणी के केंद्र पर लगे हुए हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पावन संकल्प के साथ भारतीय आकाश में गूंजती वो आवाज पिछले 9 दशकों से हर भारतीय के दिल को छुआ है, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं भारत में रेडियो प्रसारण के 90 शानदार वर्षों का जश्न मनाने के लिए वोकेथन के लिए। और आज इस शानदार कार्यक्रम में जो हमारे साथी हैं तमाम यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद है, नजीबाबाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी अंजनी कुमार की यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त
1: भी धर्माने को बोला जाएगा वो तो
0: निदेशक अभियांत्रिकी लतराम जी। और हम आपको ये कहते हैं इस वक्त यहाँ पर वोकेथन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी
2: हम बस अभी शुरू करते हैं ना वोकेशन को।
0: और श्रोतो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत में इस वक्त रेडियो प्रसारण के जो 90 साल पूरे होने जा रहे हैं आज जो 2026 है और उन्हें 90 वर्षों का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और माइक्रोफोन को मैं लेकर के चलता हूँ अपने साथी चरणजीत सिंह के पास।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में दिन पर आप सभी श्रोता अधिकार बन रहे हैं और ये बनना अगर की तरह समेटे तो कुछ शब्द हमारे डिक्शनरी में हमें मिलते हैं, लेकिन अब बात उस दौर की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए देश में गिनों चुने ही प्राइवेट ट्रांसमीटर भी थे। साल 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की गई और निधि आपको मालूम है इसके बाद क्या हुआ?
4: अब महज 6 वर्षों में ही यानी साल हमारे 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया।
3: जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया
4: गया। 90 साल में मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सचिव निधि भारद्वाज और मेरे साथ एक बड़ी लंबी टीम है, हमारे एक और साथी हैं, आइए श्रोताओं उनसे भी जुड़ते हैं और नाम भी जानते हैं।
0: जी है श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस अभी आयोजन में आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ लगे हैं इस वोकेशन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम 1935 में केंद्रीय समाचार संगठन की स्थापना कर चुके यानी हमारे देश में हो चुकी थी और समाचार प्रसारित किए जाने लगे थे, देश भर की खबरें ऑन एयर हो रही थी। महज 10 वर्षों के भीतर ही जब वो ऐतिहासिक घड़ी आई कि देश साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ और तब भारत के दिल्ली समेत
3: जी हाँ बिल्कुल भारत के पास दिल्ली समेत 6 रेडियो स्टेशन थे और इनमें मुंबई, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली अस्तित्व में आ चुके थे।
4: और देखिएगा श्रोता हम आपको आंखों हाल बताते हैं, ये पद यात्रा अब शुरू हो चुकी है और हमारे भी सभी पदाधिकारीगण इस पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल हम मना रहे हैं, राजवीर भी हमारे साथ है। राजवीर, इस पद यात्रा का आंखों देखा हाल क्यों ना आप बताए।
0: बिल्कुल श्रोताओं, जो ये वोकेथन है इसकी शुरुआत हो चुकी है और जितने भी हमारे यहाँ पर इस वोकेथन के साथी है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग व्हाइट कलर की इस समय टी शर्ट पहने हुए हैं, व्हाइट कलर का सभी के सर पे लगा हुआ है और पंक्तिबद्ध होकर के आकाशवाणी के जो गेट है उससे बाहर निकलते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इस समय लोग मौजूद हैं जिनमें है आकाशवाणी नजीबाबाद के अधिकारीगण, यहाँ पर कार्य करने वाले समस्त उद्घोषक, समस्त प्रस्तोता, और सभी एक ही ड्रेस में, बहुत ही खूबसूरत नजारा है आकाशवाणी के बाहर का। जी हाँ, बिल्कुल सही राजीव जी आपने कहा, और इस मौके पर की अगवानी कर रहे हैं यहाँ केंद्र निदेशक रोहित शर्मा जी, और आप सब के साथ पीछे कितनी लंबी कतार है जहाँ तक नजर आ रही है, वहां तक हम इस शानदार और वेशभूषा में देख रहे हैं लंबी कतार को, और ये लम्हा देखते ही अपने आप में हम सबको आकर्षित कर रहा है। मेरे साथ है चरण जी,
3: बहुत लंबी कतार आप बता रहे थे, और हम देख रहे हैं कि दो पंक्तियां बनी हैं, एक पंक्ति में स्त्री हैं और दूसरी पंक्ति में पुरुष हैं, और पुरुष की पंक्ति में सबसे आगे हमारे नगर पिता चेयरमैन इंजीनियर मोहसिन खान साहब हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस प्रोफेशन का हिस्सा बन गया?
5: मुझे हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो वो बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने अपने 90
3: में
5: तो ये बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे जाता है जब डेली एक्सरसाइज डेली वॉक इस तरह काम करने चाहिए, अच्छी सेहत रहेगी, अच्छा लोग रहेंगे और अच्छा देश।
0: मानसिक शक्ति के लिए आकाशवाणी का केंद्र अब तक काम करता आ रहा था, लेकिन अब तन की शक्ति के लिए भी आपने देखा है कि हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इंजीनियर मोहसिन खान, और अब हमारे साथ निधि भारद्वाज।
4: मैं ये कहना चाहती थी चरणजीत जी, जसवंत जी, राजीव जी, ये जो विधि अब निकल पड़ा है पद यात्रा के लिए, सुंदर भी लग रहा है। इधर एक और साइकिल से कोई अपने जा रही है तो वो भी देखने वाले हैं कि आज आकाशवाणी का ये सफर कैसे है, और प्रशासन की पूरी मुस्तैदी हमारे साथ, लोगों के संरक्षण के साथ हम चल रहे हैं। सभी अधिकारीगण पदाधिकारीगण हमसे जुड़े हैं, साथ में हमारे बहुत सारे लोग भी हैं, और आपसे सर आपका परिचय यही आपकी आवाज से सब पहचान लेंगे। आपको कैसा लग रहा है 90 साल के पद यात्रा में शामिल होकर, प्लीज अपना नाम भी बताइएगा।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि भगवान हमारी उम्र 10 साल और बढ़ाए तो हम इसकी शताब्दी मनाए।
4: श्रोता आपका नाम भी जानना चाहते हैं,
3: इंद्रदेव भारती,
4: और आपको हम सुनते रहते हैं आकाशवाणी में।
3: धन्यवाद।
4: और ये वाकेथन का प्रयास कैसा है?
3: कहाँ का प्रयास?
4: ये वाकेथन जो चल रही है,
3: ये बहुत अच्छा प्रयास है। लोगों को रेडियो के बारे में, आकाशवाणी के बारे में पता तो चलेगा, जो लोग नहीं सुनते थे वो सुना करेंगे।
4: बिल्कुल सही कहा, और अब मैं ये माइक देती हूँ अपन साथी जसवंत को।
0: बिल्कुल लेडी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बड़ी सभ्य वॉकेथन है, और इस वॉकेथन में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल

0: एक साइड में चल रही है, यातायात भी बाधित नहीं हो रहा है, ना तो यातायात बाधित हो रहा है और न ही किसी को कोई असुविधा हो रही है, बल्कि ये ऐतिहासिक लोकेशन बड़े मध्यम गति से अपने मुकाम तक बढ़ रही है। और हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं, एक और साथी जुड़ गए हैं। सर आपका नाम? शामिल होकर क्या कहना चाहेंगे अपने और श्रोताओं को?
1: सभी शामिल होंगे
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अब ये मौका है हमारे जहाँ अब हमारे साथ चौराहे पर पहुंच चुके हैं। और देखिएगा ये जो सफर है, जो लाइव कमेंट्री सजीव प्रसारण का जो सफर, जो वॉकेथन का सफर है, लगभग अपने आधे पड़ाव से थोड़ा पहले है, लेकिन एक 90 वर्षों का जो सफर हमने लंबा समय तय किया है उसमें जुड़ाव आपका और हमारा लगातार बना हुआ है। और देखिएगा हम आपको बता दें कि 90 वर्षों को अभी और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस गौरव का गाँव के अंतिम व्यक्ति का सबसे हुए जिलों के जहाँ हम लोग अच्छे से यूज करके मनोरंजन करते हैं। आज माननीय जी मन की बात आकाशवाणी से ही सुनी तो जन जन तक पहुँच रही है और सभी टीम का जो योगदान रहा, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो हमारी सहयोग में लगभग 23 भाषाओं में इसका प्रसारण हो रहा, 489 हमारे अपने आप में दिखाता है कि कितना डिटरमिन तरीके से हम लोग इससे काम कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा को जो मिसाल बनाने आज समाज में पूरे इलाज के लोग संगेर साफ होके मार्गे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत
1: पहुंची है। और हमारे साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं तक ये बधाइयां पहुंच रही हैं, क्योंकि 90 साल का
0: मिलकर तय किया जी बिल्कुल। और ये 90 वर्षों की यात्रा बहुत सटीक हो गई है और सबकी ये अभिलाषा भी रही है, सबकी अभिलाषा भी रही है कि हम और शतक पर होने वाले भव्य आयोजन को।
2: राजीव भैया
0: हमारे साथ हैं और मेरे साथी राजीव
1: सिंह जी, और राजीव बिल्कुल धन्यवाद किरण जी की और इस समय जो हमारी वॉकर है वहाँ चुके हैं। हाँ और हम देख रहे हैं और इसी पंक्ति में सबसे आगे बड़े बड़े आकाशवाणी निदेशक उप निदेशक और यांत्रिकी श्रीमान तिलक राम जी, चाहिए मैं माइक्रोफोन को लेकर के चलता हूँ उप निदेशक अभियांत्रिकी श्री तिलक राम जी के पास, वो इस संबंध में अपने जो भी अनुभव है वो हमारे तमाम साझा करें।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। हमारा विशेष
1: राजनीतिक लाइव प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि लोगों का जो सुकून है, जन सलाब उमड़ रहा है सुहाने इस सफर में जो लंबा साल का हम कर रहे हैं। तरह तरह के लोग हमें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नसीबाबाद और उसके आस पास के बहुत सारे महिलाएं और पुरुष। आपका नाम और आपका संदेश?
2: मैं तो बचपन से खेली बड़ी हूँ प्रांगण में, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अमेजिंग की बात है और मैं आज अपनी बहुत खुश हूँ। बहुत ही गर्व की बात है।
1: हाँ, बहुत बहुत आपको भी बधाई कि आप 90 साल के इस सफर में शामिल हैं और आपने बताया कि मायका जैसा लगता है।
2: यहाँ पे आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े हुए मुझे 27 साल हो गए हैं।
1: बहुत ही काफी हमारी श्रोता के लिए कुछ और संदेश है और कैसा लग रहा है आपको एक बार और
2: सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि फिटनेस जो है वो बहुत जरूरी है हमारे आज के टाइम के लिए। जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है अभी आजकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो उसमें जो है फिटनेस के लिए एक ये बहुत अच्छी पहल है। आई थिंक सबको फिट रहना चाहिए। फिट भारत रहेगा तो हमारा फिट इंडिया रहेगा तो हमारा आगे बढ़ेगा।
1: जैसे रोशनी बढ़ रही है वैसे वैसे ही हम लोग बढ़ रहा है। हमारे साथ सभी अधिकारी बन हो रहे हैं, आज क्या हो रहा है
3: बिल्कुल सही कहा। सब लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय तो है ही। हम देख रहे हैं कि बसों में बैठे हुए यात्री हिलाकर इस धर्मी अवस्थान का स्वागत कर रहे हैं और यही है वो लम्हा जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे ही वॉकेथन भी आगे बढ़ रही है। और इस वॉकेथन में हालांकि सैकड़ों साथियों के साथ शुरुआत की गई थी और अब ये संख्या लगभग दोगुनी हो गई है और निरंतर ये संख्या बढ़ रही है। इससे ये हमें संदेश तो अवश्य मिलता ही है कि लोग इसके प्रति कितने सजग हैं। और मेरे साथ हैं चरणजीत सिंह।
4: हाँ जसवंत, बिल्कुल लोग कितने हैं और कितने गंभीर हैं इस आयोजन को लेकर, क्योंकि देखिएगा इतनी सुबह घरों से निकल कर आना और पूरी तरह से ड्रेसअप होने के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होना, न केवल शामिल होना बल्कि एक अनुशासन के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना। हम देख रहे हैं दूर तक इस समय घुमाव है फ्लाईओवर के ऊपर और दूर तक हमें केवल और केवल सफेदी फैली दिखाई दे रही है, एक दूधिया रोशनी। क्यों जसवंत?
3: रोशनी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि और ये तो और भी अधिक आकर्षित करने वाला दृश्य है। इस समय हम है ओवर ब्रिज पर नजीबाबाद के। जी हाँ।

0: एक अंतराल है, इस अंतराल को अलग अलग भव्य आयोजनों के साथ हम पूरा करेंगे। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं निधि भारद्वाज।
1: और देखिए हमारे
0: बिल्कुल स्वागत है।
2: हाँ यार, तो कुछ पहले के लिए हमारे बीच में हमारे प्रमोद भैया हैं, वो अपनी बात शेयर करना चाह रहे थे। धन्यवाद राजीव जी। और देखिए ये बहुत ही खुशी का पल है जब आकाशवाणी के 90 साल प्रसारण के पूरे हो रहे हैं। और ये हमारा जो ये काफिला है, जो रैली है, जो ये लोकेशन का आयोजन किया गया है, इसको हम लेकर आ गए हैं। इस समय धीरे धीरे हमने फ्लाई ओवर पार कर लिया है और गुरुद्वारे से हम आगे निकल गए हैं। और इस तरीके से ये हमारे जो वॉकेशन है, ये माल गोदाम चौराहे से होता हुआ ये जाएगा कृष्ण आई के चौक से स्टेशन पहुंचेगा और उसके बाद फिर हम आकाशवाणी किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा उत्साह इस समय हम सभी के अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि जब आज आकाशवाणी के प्रसारण के 90 साल पूरे हो रहे हैं, इस खुशी में जो आकाशवाणी का जो ये काफिला है जो आगे बढ़ रहा है, उसको जो आम जनता है वो पहचान रही है कि आकाशवाणी भी कुछ है और ये जन जन की वाणी वास्तव में इसी तरीके से कही जाती है। जी जसवंत जी
0: बहुत धन्यवाद। और अब देखिए हम पहुंच गए हैं माल गोदाम तिराहे पर और सामने हम देख रहे हैं कि ये अपना एक ध्वज के समान अपना बैनर है और इस बैनर के पीछे चल रहा है एक लंबा काफिला और उस काफिले में हर एक नौजवान, हर एक वृद्ध, हर एक महिला अपने आप को और भी ज्यादा उत्साही महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ से टर्न राइट हैंड की तरफ लेंगे क्योंकि हम पहुंचे हैं यहाँ माल गोदाम तिराहे पर और यहाँ से काफिला बढ़ रहा है आगे कृष्णा चौराहे की तरफ।
3: जी हाँ बिल्कुल, कृष्णा चौराहे की तरफ। लेकिन फिर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 90 वर्षों का ये सफर है। फिलहाल हम इस वॉकेशन पर एक सीमित दायरे में है लेकिन आकाशवाणी का अपना जो दायरा है बहुत बड़ा है।
0: आइए आइए, बस छोटे से करने के लिए मूव ऑन।
4: आइए आइए आइए,
0: थैंक यू सो मच।
3: महाविद्यालय के निदेशक भी हैं डॉक्टर जो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप

0: प्लेटफॉर्म ऐसी नहीं जो प्लेटफॉर्म पर हम
1: इधर इधर थोड़ा इधर हो
2: जाएगी नाम से था और आज मई स्कूल का नाम ऑल इंडिया रेडियो था आज आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। मैं आपके जीवन से जुड़ी अगर कोई बात कोई याद आप हमारे साथ करना चाहें ये सफर किसी भी ऐसा मामला बना आपके जीवन में कि आप रेडियो को लंबे समय तक याद रखें।
3: वो समय याद आ रहा है जब हम बचपन में थे तो देवकी नंदन पांडे 8 बजे हम रात को समाचार आते थे तो देवकी नंदन पांडे के लिए तमाम मोहल्ले के दो गांव के लोग बैठ जाते थे जो मैं सुना देते भारती मनोरंजन के लिए भारती का बहुत बढ़िया हमारा हमारे आकाशवाणी ने
0: आपको परिवार के ही हैं। मैं सोच रहा था कुछ ऐसी अनोखी आवाज जाए आगे आगे आ जाइए आगे भारत में नहीं बल्कि
1: भारत के बाहर दुनिया भर के कोने कोने में आकाशवाणी अपनी एक अलग ही अमिट पहचान रखता है और इस पहचान को आज साक्षात रूप दे रहा है ये वाकथन, क्योंकि इस वाकथन में न केवल आकाशवाणी परिवार के सदस्य जुड़े हैं बल्कि आज शहरवासी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए।
4: नमस्कार, मैं सुवेंद्र सिंह आकाशवाणी में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय चुका है और इतिहास की अगर हम बात करें आकाशवाणी का कैसे बैठा लोग अभी हमें इस पर ध्यान देना है।
0: और अब जब हम देख रहे हैं कि हमारा काफिला मुड़ चुका है कृष्णा चौक से रेलवे स्टेशन की ओर और इस बैनर के पीछे न केवल एक जन सैलाब है बल्कि साथ में एम्बुलेंस भी चल रही है ताकि यदि किसी वजह से कोई असुविधा भी होती है तो त्वरित उनको एक उपचार मिल सके। और अब हमारे साथ हैं अभी
5: अच्छा, तो आपके रतपुर से हमसे जुड़े हैं। हाँ, आपको रेडियो के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, ये सारा काम लेकिन अपना रेडियो का समय नहीं छोड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया आप। मेरा 32 साल पुराना रेडियो।
0: अच्छा,
5: अभी बीच में खराब हो गया था, मेरे बेटे ने गलत चोरी काम किया जी, मैंने उससे सही करवाया रेडियो। मैं अपना रेडियो सुनती हूँ, देखो मोबाइल देखने टाइम खर्च होगा
0: जी जी,
5: टेलीविजन देखने टाइम। आपका ये प्यार हम देखकर बहुत आनंदित हैं और इस सफर में आप जुड़ी, आपका धन्यवाद। टाइम खर्च होगा, एक और साथी हमारे साथ है और आप कदम से कदम आगे चल रही हैं और सुंदर प्यारे गुलाबी वस्त्रों में आप आकाशवाणी के इस सफर में हैं। आपका नाम? अच्छा, आप कुछ हमारे लिए कुछ संदेश श्रोताओं के लिए, हमारे आकाशवाणी परिवार के लिए? मैं गाने का आपका शौक है, आप गाती भी हो क्या? मुझे नहीं गाती नहीं सुनती। चलिए श्रोताओं, इनके संदेश और इनकी शुभकामनाएं हमें मिल चुकी हैं और हमारे साथी सभी लोग जुड़े हैं। एक पूर्व उद्घोषक है जसवंत जी, उनसे हमारी बात
1: कराएंगे, उनसे भी हम बात कराएंगे।
4: अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि अभी हमारा जो वॉकेथन है पहुंच चुका है
0: रेलवे स्टेशन के समीप, और आइए इसमें हम अलग अलग अपने श्रोताओं से, अपने पूर्व साथियों से भी हम आपकी बात करा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक और मित्र जुड़े हुए हैं। आपका नाम?
6: मेरा नाम दानिश है
0: जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस लोकेशन में?
6: अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज ये वाक्सन हमारे 90 साल के मिसाल आकाशवाणी के पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा पर्व है। मेरे अपने भी अनुभव है, अपने अनुभव में पहली बार कर रहा हूँ तो ये बहुत ही अच्छी विषय महसूस हो रहा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस लोकेशन में जुड़ने के लिए। और इस रास्ते पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई रिक्शा वाले आते हैं वो भी बड़े कौतूहल के साथ देखते हैं कि आज ये जन सैलाब किस उद्देश्य से निकला है। तो आप सभी श्रोताओं को हम बता दें कि ये सब एक समरसता के सूत्र में बांधने के लिए वॉकेथन हो रहा है। और आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रावधान में ये कार्यक्रम और ये भव्य आयोजन इस समय है। काफिला पहुंच चुका है रेलवे स्टेशन नजीबाबाद, और अब यहाँ से हम बाएं ओर मुड़ते हुए इस वॉकेथन को फिर से लिए चलते हैं आकाशवाणी की ओर। और मेरे साथ हैं राजवीर सिंह।
7: धन्यवाद कृष्ण जी। और श्रोता हूँ, अभी जो हमारा काफिला है
0: ठीक है।
7: दरअसल में शामिल है हमारे साथ
0: राजवी भाई, थोड़ा तेज आ जाइए। तकलीफ आगे आ जाइए। अरे सर नमस्कार।
8: मेरा मानना है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये काफिला हमारा बढ़ते हुए एक बार फिर से माल गोदाम चौराहे की ओर,
7: साथ साथ आज के इस

0: कर लीजिए, हम तो फिर से जुड़ गए हैं, व्यवधान के लिए खेद है। और अब ये काफिला हमारा पहुंचा है एक विद्यालय के समीप, और यहाँ इस विद्यालय पर सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ सब एक थोड़ा सा ठहराव आया है, लेकिन गर्मी पूरी तरह से रुकी नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए हैं पाहू जैन पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बलराम सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है सर इस सम्मेलन में।
1: धन्यवाद। आज ये बहुत खुशी हो रही है, आयोजन कर रहा है, और मैं यहाँ इस समारोह में जो लोगों की उपस्थिति है उसको देखकर बहुत ही गदगद हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि इस डिजिटल युग में यह आकाशवाणी अपना इतना महत्व बनाए हुए है जो जन जन तक पहुँची है, क्षेत्र में इतने भी संस्कृति के लोग रहते हैं, जितने समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर सहयोग रहता है। और
2: आइए अब हम हमने जहाँ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, न केवल पुष्प वर्षा करके यहाँ पानी की गई है हमारे गांव के लिए जो सामने का हिस्सा है, और आयोजकों के लिए

0: और सही है और हमें ये आयोजन किया गया। हमारे बीच विद्यालय बाल सदन मॉन्टेसरी स्कूल के इससे कार्यक्रम है। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, क्या टेलीविजन देखती हैं और रेडियो सुनती हैं? अच्छा, क्या चीज आपको ऐसा लगता है जो रेडियो में कुछ खास है जो टेलीविजन में खास नहीं है? ये बहुत पुराने और ये नन्ही सी बिटिया थी और अब वरिष्ठ शिक्षिका हमारे साथ बाल सदन। आपका शुभ नाम? रीना अग्रवाल जी। आप आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग सजीव इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हमारा नगरवाद आकाशवाणी की वजह से ही जाना माना देश जाना जाता है
0: जी। आकाशवाणी का जो केंद्र है,
1: हमारा केंद्र है नजीवाद है, उसी वजह से नजीवाद सभी जगह प्रसिद्ध है आकाशवाणी की वजह से।
0: आकाशवाणी की वजह से नजीवाबाद की न केवल।
2: The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने

0: हमारे साथ वागतन का आप आज सही प्रसारण सुन रहे हैं।
1: किसी और फोन से जोड़ लो ना, क्या हुआ?
0: पुराने श्रोता, कुछ पुराने श्रोता, कुछ पुराने लिसनर हमारे साथ इस वागतन का हिस्सा बने हुए हैं और हम लगातार वागतन का इसको अंतिम पड़ाव की ओर धीरे धीरे ले जाते हुए वापसी में हम घूमते हुए समय पहुंच चुके हैं फ्लाईओवर केंद्र पर और हमारे साथ यहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके आकाशवाणी नजीब आवाज केंद्र से सेवानिवृत्त हो चुके डॉक्टर एस के जौहर जी हमारे साथ इस समय कार्यक्रम का हिस्सा है। वाकथन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये हमारे साथ वरिष्ठ उद्घोषक वट वृक्ष के रूप में लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे और अब भी सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर एस के जौहर साहब किसी न किसी रूप में आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हैं। आज भी इस वाकथन को शुभकामनाएं देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। आइए जुड़ते हैं आपसे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकथन है, आकाशवाणी के बेमिसाल 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और सबसे जो खूबसूरत पल है वो इस बात का है कि इस आकाशवाणी ने कनेक्ट किया है देश के कोने कोने को और देश के सबसे पिछली लाइन में खड़े हुए सबसे पिछले व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है और आकाशवाणी मनोरंजन और ज्ञान वर्धन और समाचारों के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है और आज का जो वॉकथन है वो मैराथन की तरह से है, यानी कनेक्टिंग प्यूपिल बाय वॉकिंग, यानी वॉक करते हुए प्यूपिल को कनेक्ट करना और ये कनेक्टिविटी निश्चित रूप से आकाशवाणी नजीबाबाद की ओर से पूरे जन जन तक पहुंची है और एक बेमिसाल ऐसा परिदृश्य उत्पन्न हुआ है कि जो जीवन पर्यंत याद। धन्यवाद।
0: जी हाँ, जो जीवन पर्यंत याद रहेगा और आकाशवाणी के आकस्मिक उद्घोषणों की बात हो और एजाज अहमद का जिक्र ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ डॉक्टर एस के जौहर साहब से अभी हम जुड़े हुए थे, अब इस समय हमारे साथ जुड़े हैं एजाज अहमद जी और हम जानते हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं आज के इस वाकथन को लेकर।
3: तो नमस्कार। आज वो पल आ ही गया जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 90 साल बहुत बड़ी एक समझिए आपके अवधि होती है जिसमें प्रसारण के माध्यम से रूबरू होना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आकाशवाणी ने जो आज मुकाम बनाया है देशवासियों में विश्वसनीयता के साथ वो आज सड़कों पर उतर रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं और ये ऐसा अवसर है जो रेडियो को जन जन तक पहुंचाने की जो हमारी एक मुहिम रही है उसका एक हिस्सा बन रहा है। आपको याद होगा कि हमारा प्रसारण 1936 में आकाशवाणी के रूप में शुरू हुआ था और अनवरत चलता चला आ रहा है। आज हम इस वक्त फ्लाईओवर नजीबाबाद से गुजर रहे हैं, जन समूह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आकाशवाणी के साथ लोग जुड़े हुए हैं और यही एक भावना है लोगों की कि वो कदम से कदम मिलाकर आकाशवाणी के साथ चल रहे हैं क्योंकि आकाशवाणी ने शिक्षा सूचना क्षेत्र में अपने श्रोताओं का साथ निभाया है। आप सभी को धन्यवाद, मुबारकबाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद एजाज अहमद जी, आपने अपनी जिंदगी के ऐसे अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं और क्योंकि अभी काफिला वापसी की ओर
5: बैठ जाओ
4: आपकी बात कराइए।
5: दोनों
4: श्रीमान अमन कुमार त्याग जी
5: दोनों बैठो।
4: चलो
5: लंबे समय तक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, कोई उसको अपने मतलब
6: जहाँ तक आपने उसके नामकरण पर जो जिक्र किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर उसके नाम भले ही बदलते रहे, साथ एक ही रहा, सबको जागरूक करना, सबके हिस्से का मनोरंजन उन तक पहुँचाना, सबके हिस्से का ज्ञान और सबके हिस्से की जानकारी उन तक पहुँचाना। और आकाशवाणी ने 90 वर्षों तक अनवरत से काम किया है। हम ये चाहेंगे कि ये जो समय है ये सैकड़ों वर्षों तक चले, हजारों वर्षों तक चले और इसके यूं ही मिलते रहे और आगे अपनी मंजिल तक पहुंचते रहे। अब मेरे साथ चरणजीत
7: जी। धन्यवाद जसवंत। और देखिएगा हमारे साथ एक बढ़कर एक श्रोता लंबे समय से जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, हमारे रेडियो का हिस्सा है, आकाशवाणी का हिस्सा है, न केवल इन कार्यक्रमों को सुनते हैं बल्कि यहाँ प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनते हैं। और आज इस वाकथन का भी हिस्सा बनकर न केवल वे गौरवान्वित जरूर महसूस कर रहे होंगे बल्कि हम भी आकाशवाणी केंद्र के जो हमारे प्रस्तोता है, प्रस्तुतकर्ता है, यहाँ के अधिकारी है, कर्मचारी है, वास्तव में इस वाकथन का हिस्सा बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और देखेगा ये आगे आगे पुलिस का काफिला भी, और न केवल आगे पुलिस सायरन बजा रही है और इसके साथ साथ इसका वाकथन का हिस्सा भी बनी हुई है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में और भी बहुत लोग जुड़े हैं, आइए आपसे करते हैं मुलाकात। हमारे साथ एक और सदस्य हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस वाकथन का हिस्सा बनने के साथ और अपना परिचय भी दीजिएगा।
8: मेरा नाम रेहान खान है सर, मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से और ये शामिल होके 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद सभी भारतवासियों और बहुत ही अच्छा स्थान है हमारे गाजियाबाद के लिए, तो प्राउड है, हम जहाँ भी जाते हैं सब गाजियाबाद को जानते हैं हमारे आकाशवाणी की वजह से। और 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं
7: जी। रेहान साहब आपने बधाई दी और मैं अच्छी तरह से आपको जानता हूँ कि क्रिकेट जिस समय आप यंग एज में थे या आप पढ़ाई के दौर से गुजर रहे थे तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में आप क्रिकेट भी खेलते थे और क्रिकेट का और रेडियो का चोली दामन का साथ रहा है, तो कैसा आप महसूस करते हैं कि रेडियो से जो कमेंट्री प्रसारित होती है उसको उसके प्रति आपके भाव क्या है, आपके विचार क्या है?
8: बिल्कुल सर, बहुत बहुत ही अच्छी कमेंट्री हुआ करती थी उस समय क्योंकि लोग देख नहीं पाते थे, तो जाहिर बात है उनको सारे अपने शब्दों में ही पूरे जो क्रिकेट के बारीकियों को
7: आंखों के सामने चित्र घूम जाया करते,
8: चित्र घुमा देते थे साफ समय नरोत्तमपुरी साफ हुआ और भी लोग जुड़े हुए लोग
7: जी,
8: और इतनी अच्छी कमेंट्री हुआ करती थी और बिल्कुल क्रिकेट की बारीकियां हमको बताया करते थे। अब जो है दूसरा माहौल हो गया है, शोबाजी ज्यादा हो गई है,
7: अब शोबाजी ज्यादा हो गई है, लेकिन आकाशवाणी शोबाजी नहीं करता है, आकाशवाणी वही दिखाता है जो वास्तव में होता है। और डॉक्टर राजीव अरोड़ा जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, क्यों क्यों डॉक्टर साहब, जो होता है वही दिखाता है आकाशवाणी?
9: बिल्कुल दिखाता है और लोगों तक जन जन तक भावनाएं पहुंचाता है और ये एक मनोरंजन का ही नहीं ये साधन है इस युग के सबसे बड़े माध्यम जिसने अपनी घर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और अपने विचार पहुंचाए वो है आकाशवाणी।
7: जिसने अपनी भावनाएं पहुंचाई, अपने विचार पहुंचाए वो है आकाशवाणी। और अब फिर से हमारे साथ ही राजीव
10: कतारे यहाँ पर हमारे छोटा कैसे कि आपको मालूम है कि ये सफर जो रेडियो का शुरू हुआ था सबसे पहले 23 जुलाई 1927 को जब बॉम्बे स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में पहली बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम और स्वतंत्रता के बाद नाम दिया पंडित नरेंद्र शर्मा। तो छोटा जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि जो गोकथन का आयोजन किया गया है भारत में प्रसारण के लक्ष्य है, बड़े 40 वर्षों के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और एक बार फिर बातचीत से लोग दे रहे हैं, हमारे साथ ये आ पहुंचा है CKI चौक पर और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर आकाशवाणी का जो है केंद्र है। और हम आपको बता दें कि मित्र सालों का सफर है, पहला रेडियो सम्मेलन भारतीय शास्त्रीय संगीत को हर घर पहुँचाया था। जैसे बात करें 1957 में हुई शुरुआत विविध भारती में जो माध्यम से एक बार अपने श्रोताओं को घूमने के लिए मजबूत कर दिया था। और मेरे साथ ही जफर के दीपक मेरे साथ में माइक्रोफोन को लेकर चलता हूँ दर्शन सिंह के पास।
11: धन्यवाद राजवीर जी। जैसे कि आकाशवाणी की एक विशेषता ये भी रही है कि समयबद्धता के आधार पर काम किया जाता है, पंक्चुअलिटी इसके मूल में है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ठीक 7:30 पर ये वॉकेशन शुरू होगी और 8:30 तक अपने ये निश्चित गंतव्य स्थल तक पहुंचेगी और लगभग 7-8 में हम वहां तक पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से जिस गति से ये काफिला बढ़ रहा है। और आज इस वॉकेथन की चमक ने साइड में लगे हुए सभी दुकानदारों की चमक को फीका कर दिया है क्योंकि ये वो ऐतिहासिक पल है जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हम मना रहे हैं। और इस आयोजन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए अब हम एक और अपने साथी से आपकी बात करा रहे हैं, विश्वास द्विवेदी जी।
12: श्रोताओं नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की वॉकेथन कार्यक्रम में। इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम आज नजीबाबाद में देखने को मिला और दूर तक सफेद टोपियां और सफेद टी शर्ट में लोग नजर आ रहे हैं, इतना उत्साह दिख रहा है। और वास्तव में ऐसा लगता है कि आज आकाशवाणी ने अपनी पहचान खूब बनाई है। आज का यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
11: बिल्कुल सही कहा। और ये वॉकेथन का उत्साह ही है कि जो बुजुर्ग केवल 200 मीटर ही चल पाने के लिए सक्षम थे आज उन सब ने भी 3.5 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा कर लिया है। और बच्चे जो बहुत कम चलना पसंद करते हैं वो भी इस भव्य वॉकेथन में पूरी यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही एक बच्चे से जुड़वाएंगे, हमारे साथ है निधि भारद्वाज।
13: एक नन्हे कदम तक करते हुए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम अमन, आप हमारे साथ पद यात्रा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
14: वो अच्छा लग रहा है, वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
13: आप रेडियो सुनते हैं बेटी? रेडियो में क्या अच्छा लगता है?
14: रेडियो में तो अखबार खबरें आती रहती है।
13: कितनी अच्छी बात है कि आज का बच्चा पहले ये कहने के बजाय कि मैं गीत सुनता हूँ कहता है कि मैं खबरें सुनता हूँ। निश्चित रूप से भविष्य जो है भारत का सुरक्षित हाथों में है। देखिए आप सबको कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं?
14: सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल ज्यादा ना चलाए क्योंकि मोबाइलों से आंखें खराब होती है। तो आप बस अपने रेडियो सुनते रहे, भले से आप कुछ भी सुने लेकिन उससे आपकी आंखें खराब हो।
13: सुंदर संदेश लेकिन अभी भाई हमारे साथ में और बहुत सारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जैसे जैसे सूरज का तेज बढ़ा
12: है जैसे
13: जैसे हमारे साथ चलने वाले कैसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े एक लंबे और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे कार्यक्रम के अधिकारी गण, आप जानिए विचार।
12: तो भी सर को समापन भी है लेकिन धन्यवाद और अब जो हमारा काफिला है वो एक बार लौटते हुए वापस एक बार आकाशवाणी के और इस बार में हमारे
11: जी राजवीर जी, सबसे पहले तो चूंकि अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हमारा जो वॉकेशन मैं बहुत बहुत बहुत अभी अपने जो हमारे साझा हमारे साथ कर रहे हैं उनके प्रेम से उनके सहयोग अपने उन श्रोताओं से हूँ जिनके संदेश बहुत आकाशवाणी की विशेषता रही है समयबद्धता। हमने ठीक 7:30 पर इस वॉकेथन का शुभारंभ किया था और चूंकि ये आयोजन 8:30 पर संपन्न होना था, हम 8:25 पर यहाँ पहुंच चुके हैं। वो 5 मिनट की औपचारिकताएं और यहाँ पर पूरी होंगी। तो एक बार फिर से आकाशवाणी ने ये दिखा दिया कि समयबद्धता इसके मूल में है। और अब मेरे साथ हैं चरणजीत सिंह।
15: न सिर्फ वर्तमान में सफल में बल्कि बीते 90 वर्षों से लगातार आकाशवाणी सुशासन का पालन कर रहा था। आपको बताया था कि आजादी का एक संघर्ष लंबा संघर्ष पहले एक लंबा वक्त गुजारा है की गोलियों में चलते हुए
16: गुलामी की बेड़ियां हमारे देश में लगी थी और
15: पहुंचाया जाता रहा है। तो देखिएगा के लिए आकाशवाणी केंद्र नासिकाबाद
16: और इन सूचनाओं के माध्यम से एक एक कर काफिला बनता चला गया और उस समय हम देख रहे थे बड़ा एक कतार के रूप में दिखाई दे रहा है और एक तरह से दूध या रोशनी यहाँ फैली हुई दिखाई दे रही है। और अब हम इस समय एंट्री कर चुके हैं आकाशवाणी के नसीबाबाद केंद्र के भीतर और अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अब इस स्वागतन में जिन लोगों ने पसीना बहा है और एक मैसेज दिया है लोगों को कि मानसिक संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए एक सुकून भरी आवाज रेडियो की हमें जरूर सुननी चाहिए। दिन में थोड़ी देर भी सही लेकिन जरूर सुननी चाहिए। इससे एक आत्मबल मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, मानसिक शांति मिलती है और ऊर्जा के लिए हमें एक शारीरिक कसरत की जरूरत है जो कि आज हमने वॉकेथन के माध्यम से की है। क्यों निधि?
17: बिल्कुल सही कहा। और अपने श्रोता जब से हमें लाइव सुन रहे हैं, ये लाइव सुनना जरूर चाहते होंगे। हाँ, आकाशवाणी के लोगों का बात आपका लगातार मैसेज जुड़ना निश्चित रूप से आपके प्रेम को दर्शाता है। हम गौरवशाली क्षण का हिस्सा बने हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम के साथ चरणजीत जी, जसवंत जी और रेडी भारद्वाज आपके साथ जुड़कर बहुत ही आनंदित है। क्यों?
11: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये अब वॉकेथन समाप्त हो रही है और यहाँ पर जैसे ही एक काफिला आकर ठहरा है उसी तरह से पंक्तिबद्ध खड़े होकर सभी सहभागियों ने, सभी प्रतिभागियों ने अपनी अनुशासनात्मक जीवन शैली का भी परिचय दिया है। और यहाँ जैसे कि राजवीर जी बात कर रहे थे कि ऊर्जा भी चाहिए, तो वो ऊर्जा के लिए यहाँ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है। सभी को यहाँ एक सूक्ष्म जलपान से भरा हुआ बैग वितरित किया जा रहा है। उसको लेकर जैसे सबकी थकान उतर रही है और मानसिक थकान से वो वैसे ही दूर हो चुके हैं क्योंकि आकाशवाणी का ये गेट है और इस द्वार पर आकर जब वो खड़े हुए तो यही वो जगह है जहां से कहा जाता है कि हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.4 अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ का। मेरे साथ है राजवीर सिंह।
18: सीधा लिए चलते हैं। अच्छी बात ये है कि सभी लोग स्वस्थ हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। हमें थोड़ा सा संदेह था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, तो सभी लोगों ने इसको अच्छी तरीके से फिनिश किया। बहुत बहुत ये खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए।
15: हमारे पुराने
19: और मैं फॉर्मली आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी लोग हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। आप सभी जानते भी हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष कितने मायने रखते हैं हम सभी के लिए, लेकिन उसके बारे में हमारे कई दिनों से प्रोग्राम्स में भी बातें हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो आपको धन्यवाद देने के लिए, शुक्रिया कहने के लिए मैं अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तिलक राम जी को आमंत्रित करता हूँ कि दो शब्द वो सबको धन्यवाद स्वरूप कहें। प्लीज
20: आज 90 साल के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो प्रोग्राम की टीम स्वरूप शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम का अधिकारी अंकित सानी जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आयोजन को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सफल बनाया है और इतनी संख्या में सभी यहाँ अतिथिगण उपस्थित हुए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नब्बे साल के इस सफर में आकाशवाणी ने आप की सेवा की है और सभी ये सभी जो सफल हुआ है ये सभी हमारा उद्देश्य जो श्रोतागण से ही सफल होता है। अगर हमारे पास श्रोतागण नहीं है तो हमारा भी आकाशवाणी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे श्रोतागण ने भी लगातार जो पत्राचार से टेलीफोन के माध्यम से हमें अवगत कराते रहे हैं और हमेशा अपनी डिमांड भी बताई है कि हमें ये पसंद है ये नहीं पसंद है। तो सभी श्रोतागण का सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन को सफल बनाने का, आकाशवाणी का आगे भी ऐसे ही सफल चलता रहे ये इसके लिए भी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।
21: थैंक यू सर। थैंक यू। और अब आगे कहने के लिए माइक का देना
22: हमारे साथ श्रोताओं एक और हमारे साथी जुड़े हैं और
23: मेरा मिठाई का काम है जिक्र सुनू
22: बढ़ते हुए हम अपने अन्य श्रोतागणों की तरफ चलते हैं और मैं ये माइक देती हूँ।
24: बहुत धन्यवाद। और जैसे कि यहाँ आकर अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी वॉकेथन से किसी मैराथन पर जाते हैं तो प्रतिभागी थक जाते हैं, बैठना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ किसी की भी ऊर्जा कम नहीं हुई है, हर कोई और अधिक ऊर्जास्वित लग रहा है। और जैसे लग रहा है कि मुझे कुछ और भी कहना है, मुझे आकाशवाणी से अपने संबंध को और भी प्रगाढ़ करना है, इसी विषय पर हम अपने एक और वरिष्ठ उद्घोषिका से बात करा रहे हैं।
22: खड़े जैसे की आपने जब ये कटिंग शुरू हुआ तब से आप हमारे श्रोताओं के साथ आपका भी दिल से शुक्रिया की इतना लंबा वक्त आयोजित किया और अंतिम पड़ाव पर वापस हमने कहा कि चुकी थी आ चुके हैं वापस श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगी की वर्षों का ये प्यार रेडियो को आपने दिया है, बस आपसे यही गुजारिश है, यही सजा है कि आप अपना प्यार इसी तरह से जुड़ी बनाए रखिएगा। उनसे शुक्रिया और मिलेंगे और कार्यक्रम में
0: धन्यवाद। और जैसे कि हर कोई चाह रहा है कि मैं भी आकाशवाणी के माध्यम से बोलूं, क्योंकि बहुत दूर दूर से श्रोता हमारे साथ हमारे बहुत दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं और वो इस मौके धन का न केवल हिस्सा बनने के लिए आए हैं बल्कि ये दिखाने के लिए आए हैं कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं भी आकाशवाणी परिवार का हिस्सा हूँ। एक और हमारे श्रोता बुलंदशहर से हमारे बीच आए हैं, आपका नाम?
1: तारिक मलिक।
0: रेडियो के विषय में क्या कहना चाहेंगे?
1: रेडियो के विषय में यही कहना चाहूंगा, ये हमारी इतनी पुरानी संस्थाएं हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट ने चलाई थी, आज इसको 90 साल हो गए, कितनी पीढ़ियां बदल गई हैं। हमारे बुजुर्ग इसको सुनते थे, बहुत अच्छे से इसको देखते थे, आज भी आकाशवाणी का नाम आता है, सब लोग इसको पहचानते हैं। मैं चाहता हूँ जो नया युवा आ रहा है, जो फोन में बच्चे व्यस्त रहते हैं, उनको फोन से हटा के अगर हम रेडियो की तरफ डाइवर्ट करें, यहाँ पर हमें नॉलेज मिलेगी, अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, हमारे शहर में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हमारे पास लाइव अपडेट रहती रहेंगी। तो उन चीजों से बचाकर या तो स्पोर्ट्स में लगाएं, खेल में लगाएं, या फिर मोबाइल की जगह आकाशवाणी सुनाएं, तो इसका अच्छा क्या होता
0: है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये रेडियो सुनकर हमें जानकारी और ज्ञान तो मिलता ही बल्कि एक बहुत बड़ा परिवार भी मिल जाता है। हमारे साथ है निधि भारद्वाज।
22: परिवार की बात की है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑनर हमारे अनाउंसर फोन करके बता रहे हैं कि आज कंप्यूटर स्क्रीन मैसेजेस से भर चुके हैं 9457078288 पर। लगातार शुभकामनाओं के संदेश पहुंच रहे हैं जिस पर वो अपनी फरमाइशें गीत सुनते हैं, जिस पर वो आपका पत्र मिला कार्यक्रम करते हैं और उनके संदेश खातर हम बस इतना ही कहेंगे आपका प्यार हमें यूपी मिलता रहे। और हमारे साथ हमारी एक उद्घोषिका जुड़ चुके हैं और वो भी कुछ दो
2: शब्द में अपना नाम बताइए और तुरंत आपके लक्ष्य से शादी बिल्कुल। मैं आज आकाशवाणी के 90 साल पे मिसाल ये था हमारा आज बहुत।

0: बाकी पूरी टीम के साथ और हमारे पुराने सब लोग भी शामिल है, जैसे हम चले थे
1: अंदर अंदर अंदर
0: हमारे साथ हमारे दोस्त को हमेशा बढ़ाता रहा है, आज भी बढ़ाया और चलता रहेगा यूं ही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हर कोई इतना उत्सुक है कि मैं भी आज इस भव्य आयोजन में अपने दो शब्द जरूर कहूँ। जीत भाई, किन से हम अब बात करना चाहेंगे?
2: जी, हमारे बीच में
3: सफर आगे बढ़ रहा है।
1: अंकित संस्था तो करा दे
4: ध्यान रखते हुए कार्यक्रमों को तैयार करते हैं।
5: दिलों की बात आपने जानी, एक बार फिर से आकस्मिक उद्घोषणों की ओर
6: बहुत सारे

0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। हम आकाशवाणी की रुचि व्यापार के रूप से बोल रहे हैं और हमारे साथी हो चुकी है एक और हमारी साथी महिला साथी अपने सेक्शन में बताएंगे और आवाज तो आप पहचान ही लेंगे लेकिन फिर भी हम जानेंगे उनका नाम।
1: परिवार में जब ये एक नया आयोजन हुआ 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तो बहुत ही अच्छा लगा है इसको वॉकेथॉन से जुड़ के और उम्मीद है आगे भी हम लोग इसी तरह परिवार में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये हमारे कंट्रोल रूम के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी मेहनत का ये परिणाम है। आइए आपसे जानते हैं कि आप किस तरह से इस कार्यक्रम का भी आनंद ले रहे थे और किस तरह का योगदान आपका कार्यक्रम में रहा।
3: हमारा जो सहयोग रहा इसमें कंट्रोल रूम में जो आप लाइव बोल रहे थे
4: हम चाहेंगे आपका परिचय भी हमारे श्रोताओं को।
3: मैं मुन्नालाल वरिष्ठ तकनीशियन
2: रजनीश जी आज इस सजीव प्रसारण में कहीं ना कहीं आपकी एक अहम भूमिका रही है तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि 90 वर्षों की इस यात्रा का ये सजीव प्रसारण रहा, हम लोग फिल्म में वाकथन कर रहे और लोगों ने हमें सुना और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने तो किस तरह से आपका योगदान क्या तैयारी रही आपकी और किस तरह से योगदान
5: बहुत ही बहुत खुशद अनुभव रहा। ये जो 90 साल हुआ था 1936 में हमारा जो आज कल न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीजें देखा है हमने भी बहुत सारी चीजें देखी है। पहले जो हमारी रिकॉर्डिंग की सर्टिफिकेट थी जो होती थी क्या कहते हैं क्या कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम थी जो अब वो इलेक्ट्रॉनिक टोटी हो चुकी डिजिटल हो चुकी है। अभी मेरे हिसाब से जो है चेंज आते ही रहता है हम लोगों को उसमें उसको एसिमिलेट करना पड़ता है अपडेट करते रहते भी करते हैं ताकि जो है लोगों को हम जन जन तक जो है अच्छी सुविधाएं दे सकें और सबको उसको लिए मतलब धन्यवाद देते हैं। 90 साल
2: ये धन्यवाद दिया हमें तकनीकी अधिकारी ने और हमारे मौजूद श्रोता जिसकी आकाशवाणी केंद्र में इस समय हमारे साथ मौजूद है
4: मैं कमलेश पुथियाल उत्तराखंड से हूँ और ये 90 साल बेमिसाल जो आकाशवाणी के हैं दूरसंचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हम समस्त भारतवासियों को मिली है। पुख्ता समाचार के लिए मनोरंजन के लिए देश के कोने कोने तक जो आवाज जाती है वो आकाशवाणी के माध्यम से जाती है और इसमें बहुत से ऐसे वो रहते हैं जैसे फौजी भाइयों के लिए है, ग्राम जगत है, कृषि जगत है, बहुत से प्रोग्राम है और खासकर समाचार को पुख्ता भी होती है, इंतजार करते हैं। धन्यवाद।
2: और यहाँ के जो सजीव प्रसारण में हमारे साथ योगदान दे रहे थे हमारे कश्मीर उद्घोषक फैजुर रहमान जी, हम उन्हें अपना माइक सौंपते हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा और आगे वे इस कार्यक्रम कोशिश भी करेंगे। फैजुर रहमान,
6: श्रोताओं, आज का बहुत ही ये कार्यक्रम सार्थक रहा। निजीवा शहर से और दूर दूर से आए बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, आकाशवाणी के अधिकारी, हमारे समनिदेशिती और सभी लोगों ने एक बेहतरीन आज कार्य को पूरा किया। बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और साथ में आकाशवाणी के आज 90 वर्ष पूरे हुए, ये भी अपने आप में एक बेमिसाल हमारा आज का कदम रहा।
7: तो श्रोताओं, आज के इस कदम ताल करते हुए सफर में हम पहुंच गए हैं लौटकर एक बार फिर आकाशवाणी में और अभी आप हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं फैजुर रहमान के साथ और इस पूरी टीम में आपका सहयोग हमें मिलता रहा। तो अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज
8: और मुझे यानी जसवंत सिंह को
9: और मुझे यानी चरणजीत सिंह को
10: और मुझे यानी राजवीर सिंह को इस कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिएगा अनुमति।
7: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित वाकेथन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:50 होने को हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ फैजुर रहमान, और रुख करते हैं पहले गीत की ओर। ये गीत हमने लिया है फिल्म तीन देवियां से। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें हैं, एसडी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं।

0: हो गए सब घूंघट तो जरा ओढ़ो हो, हो अरे मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़क पन्ने छोड़ो।
1: कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म तीन देवियां से, ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थीं। एसडी बर्मन का संगीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के

0: लिए विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। कार्यक्रम है गोल्डन हिट्स। ये गीत हमने लिया है फिल्म याराना से। किशोर कुमार की आवाज है, राजेश रोशन का संगीत। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म याराना से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ थी, राजेश रोशन का संगीत, गीत के वो लिखे थे अनजान ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म समाधि का ये गीत। गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले ने, आर डी बर्मन का संगीत है, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में ये गीत हमने लिया है फिल्म दयावान से। पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीतकार हैं अजीज़ कैसी।

पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल रिले होगी।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आप सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काशी दौरे के दौरान 6332.08 करोड़

0: संरचना सुदृढ़ीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित भव्य बौद्ध महोत्सव श्रद्धा, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में देश विदेश से आए 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडो श्रीलंका जम्बू द्वीप बुद्ध विहार सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मूलगन कुटी विहार में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए तथागत बुद्ध विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, वहीं सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धम्म देशना, विपश्यना और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवा और करुणा का संदेश भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव सुमितानंद थेरो ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है।
1: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंधकुटी महाविहार में रखा है, हम लोग को भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस की पासिंग आउट परेड वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। वाराणसी मंडल के विभिन्न भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कुल 3,070 प्रशिक्षु आर्ची अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के रूप में सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। वाराणसी, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों के प्रशिक्षण केंद्रों सहित PSC 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 34वीं वाहिनी भुल्लनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया।
2: 491 महिला आरक्षियों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहाँ पर हुई है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है,
0: जिसमें से 491 महिला प्रशिक्षुओं ने भी परेड में सहभागिता की। परेड के उपरांत इन सभी महिला आरक्षियों को विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहाँ वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण एवं जन सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त तो वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर एवं गाजीपुर प्रशिक्षण केंद्रों से 1390 आरक्षियों ने भी परेड में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय की चेक वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मानदेय वृद्धि को शिक्षा मित्रों के मनोबल को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
3: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: गाजीपुर के कासमाबाद तहसील स्थित कयामपुर छावनी गांव में मगई नदी पर लोगों ने श्रमदान कर पुल निर्मित कर दिया, जिसका लोकार्पण प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने किया। मगई नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 15 से 20 गांव के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की एवं आपस में चंदा इकट्ठा कर मगई नदी पर पुल निर्मित कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि यह संकल्प शक्ति एवं अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के मगई नदी पर पुल बनाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। पश्चिम

0: हाल चुनाव में गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक अंतर्गत पलिया गांव निवासी उमेश राय ने कोलकाता के चर्चित हावड़ा उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव पलिया सहित पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब गाजीपुर में भी दिखने लगा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने पिछले दिनों एक पावर हाउस के 10 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में विभागीय संलिप्तता को देखते हुए 3 अफसरों को और 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जेई राजीव गुप्ता, जेई नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। वहीं 2 संविदा लाइन मैन बर्खास्त कर दिए गए। पिछले दिनों गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में हुई संदिग्ध मौत के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी कटरिया गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पिछले दिनों गाजीपुर में हुई बरसात और आंधी तूफान के कारण जहां सब्जियों को नुकसान हुआ, वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 मई को गाजीपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रमिकों के साथ बैठक की और उन्होंने उनके बीच मजदूर दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाजीपुर में 780 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें 3.25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार गाजीपुर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस ने जनपद में अपराध मुक्त वातावरण बनाने की उद्देश्य से पुलिस की 12 टीमों के द्वारा एक गैंग के 61 सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गैंग के 24 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तथा गैंग के कुल 90 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने राजभर समाज के आजादी की लड़ाई में योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में 26 राजभर युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी राजभर समाज महाराजा सुहेल देव के चलाए रास्ते पर ही चल रहा है एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गाजीपुर पहुंचे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारतीय युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर न्याय आपके द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बैंकिंग तथा पारिवारिक वाद के मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का भी निपटारा होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत होगी। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भागकर अपने मामले को निपटाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गाजीपुर के 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों 2 आरोपियों राहुल यादव एवं दयाराम सिंह ने न्यायालय में हाजिर हुए एवं उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 आरोपी सर्वांश वर्मा की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 3 के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कुर्की आदि के माध्यम से पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। इसके अंतर्गत आपने सुना वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रागनिया। कलाकार हैं वीर सिंह शर्मा और साथी।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रागनिया, कलाकार हैं वीर सिंह शर्मा और साथी।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रागनिया, कलाकार हैं वीर सिंह शर्मा और साथी। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज दिन में 10:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। हमारे श्रोता हमें कॉल कर सकते हैं। आज का विषय रहेगा रेड क्रॉस के सिद्धांत और आज का समाज। हमारे श्रोता एक बार फिर सुन लें, आज का विषय है रेड क्रॉस के सिद्धांत और आज का समाज। हमारे श्रोता हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 94570 78288।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन है अंकुर चौधरी का।

नमस्कार, आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम बात आसपास की में मैं अंकुर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर आयोजित निशुल्क दिव्यांगजन कैंप की। एक ऐसा प्रयास जो केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि समाज के उस वर्ग तक सहारा और आत्मविश्वास पहुंचाने की एक सार्थक पहल है जो अक्सर सुविधाओं के अभाव में पीछे रह जाता है। इस कैंप का दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक ओर प्रशासन की सक्रियता, दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता और सबसे महत्वपूर्ण जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर दिखती उम्मीद। ये आयोजन ये दर्शाता है कि जब योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन

0: पर उतरती हैं तो उनका असर सीधे लोगों के जीवन में दिखाई देता है। बात करते हैं कैंप में उपस्थित डॉक्टर से।
1: मैं डॉक्टर यागवेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज किया गया।
2: इस कैंप में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?
1: ये कैंप असल में एक चिन्हांकन शिविर है, जिसमें हम सबसे पहले दिव्यांग जनों को उनके तकलीफों के अनुसार उनको

0: हो चुका है तो उसके केसेस हमें अब नहीं मिलते हैं, और सर्वल पैल्सी और दूसरी दिमागी क्षमता की कमी के केसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका प्रमुख कारण अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो ये है कि समय पर प्रसव प्रक्रिया जो है वो इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए ताकि वहां बच्चे के जन्म के समय पूरा ध्यान रखा जा सके, ANC चेकअप माता के समय पे हो सके ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो जिससे कि बच्चों में आगे जाके किसी भी प्रकार की दिव्यांगता ना उत्पन्न हो।
1: क्या शुरुआती जांच और इलाज से दिव्यांगता को रोका जा सकता है?
0: हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है कुछ हद तक। देखिए जो जेनेटिक डिसेबिलिटीज हैं काफी सारी, उनमें ये प्राय पाया गया है कि जेनेटिक इश्यूज को अगर हम शुरू में ही ट्रेस कर लेते हैं तो वहां पर दिव्यांगता अगर रोक भी नहीं पूरी तरह से पाते हैं तो लेकिन उसका प्रतिशत उससे होने वाली समस्याएं उनको काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आज इस कैंप में लगभग कितने लोगों की जांच की गई और किस किस प्रकार के दिव्यांग लोग आए हैं?
0: यहाँ कैंप में अभी तक 55 लगभग लोग इस अभी तक समय में 55 से अधिक लोग यहाँ पर देखे जा चुके हैं जिसमें उनके पेंशन से जुड़ी समस्याएं, उनके दिव्यांगता से जुड़े सर्टिफिकेट्स और अन्य समस्याओं का यहाँ पर हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जिनका अभी तक कभी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है उनके नए सर्टिफिकेट्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जिन लोगों को उपकरण दिए जा रहे हैं उनकी चयन की प्रक्रिया क्या होती है?
0: इसमें सबसे पहले ऐसे मानिए कि सबसे पहले उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता का जो उनका आधार पर जो सर्टिफिकेट बनेगा सबसे पहले वो बनाया जाता है जिसको UDID साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में UDID फॉर्म्स के साथ में उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसको वापस से अपलोड किया जाता है साइट पर जाकर, उसे निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि सभी लोग अभी अपना UDID नहीं करा पाए हैं तो उनका हम पेन पेपर पर ही उनका सर्टिफिकेट बना दे रहे हैं प्रपत्र सात्र पर, और उसको बाद में हम UDID पर अपलोड कर देंगे। जब UDID पर अपलोड हो जाता है और सर्टिफिकेट डेवलप हो जाता है उसके बाद जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग हमारे साथ मिलकर उनको चिन्हित करते हैं और उनके किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है इसको चिन्हित किया जाता है, फिर उनको वो उसी प्रकार के उपकरण को अवेल करा के उनको वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
1: इस कैंप में आने वाले लोगों को आप स्वास्थ्य के प्रति क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहोगे?
0: इस कैंप में आने वाले लोगों के लिए मैं सबसे पहले तो यही संदेश दूंगा कि रोड साइड एक्सीडेंट्स और बाकी एक्सीडेंट्स की वजह से जो लोग दिव्यांगता की तरफ चले जाते हैं तो खास ख्याल रखें, ट्रैफिक नियमों का पूरा ध्यान रखा करें और ड्रिंक एंड ड्राइव को पूरी तरह से अवॉइड किया जाए। साथ ही साथ जो बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियां हैं माता को अपने अस्पताल में जाकर समय से चेकअप कराने चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए, प्रॉपर उनको अपना बैलेंस अपना खाना लेना चाहिए, पूरक आहार लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में बच्चे स्वस्थ पैदा हो या इस प्रकार की बीमारियां ना हो, और अगर होती हैं तो उनको ससमय किसी प्रॉपर चिकित्सक को दिखाया जाना चाहिए।
2: यदि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों तो जीवन की अनेक कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कैंप में उपस्थित दिव्यांग जन से।
3: राजवीर सिंह,
1: आपको इस कैंप की जानकारी कैसे मिली और यहाँ तक आने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
3: इस कैंप की जानकारी कल हमारे हेडक्वार्टर जाकर उनसे आपको कहा था और मैं अपने पिताजी को साथ में लेकर यहाँ आया।
1: कैंप में आपको कौन कौन सी सुविधाएं या उपकरण प्राप्त हुए?
3: अब तो मैं पेंशन के लिए आया था और यहाँ पर ट्राईसाइकिल की बैटरी वाली की इच्छा रखता, ट्राईसाइकिल की वो रखता हूँ इसीलिए यहाँ पर आया था। पेंशन मेरी 2 साल से नहीं आई है, मैं बिजनौर जाकर भी कई बार थक चुका हूँ।
1: इन सुविधाओं से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार का बदलाव आएगा?
3: भाई यही एक दूसरे के उत्साह थोड़ा अपने घर वालों साथ लेकर फिर आने जाने में अपने अगर ऐसा कोई वो मिल जाएगा हमें तो उससे हमारी सहायता हो जाएगी और उसका लाभ मिलेगा हमें।
2: ये कैंप केवल सुविधाएं देने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मसम्मान जगाने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं कैंप में उपस्थित अभिभावक से।
4: कमलेश आर्य, मेरा आर्य सेकंड संस्थान में 104 बच्चे रह रहे हैं, ज्यादातर दिव्यांग है जिनकी देख रेख में मेरे को 35 वर्ष, और आज यहाँ कैंप लगा है इसमें हमारे सर्टिफिकेट भी कुछ बनेंगे, कुछ उपकरण मिलेंगे और नई नई जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं अपने कुछ बच्चों को लेकर यहाँ पर आई।
1: क्या आपको पहले भी ऐसी कोई सुविधाएं मिली थी?
4: जी जी, समय समय पर मिलती रहती है तभी मैं इन बच्चों का पालन पोषण कर पाती।
1: इस कैंप से आपको क्या मदद मिली है और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा?
4: बदलाव आएगा कि जो बच्चों के पास जिनके उपकरण नहीं है जैसे व्हील चेयर ट्राईसाइकिल तो उससे भी चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा उत्साहवर्धन हो। जो सुस्त बुद्धि बच्चे हैं उनको कुछ किट विट मिलेंगी, उनमें खेलने के फिजिकली अच्छा रहने के सामान भी होंगे। जो गूंगे बहरे हैं उनको मशीनें मिलेंगी कानों, तो ये सब सुविधाएं यहाँ मिलेंगी और इनके सर्टिफिकेट भी बनेंगे जिनके अभी तक नहीं बन पाए।
1: सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है?
4: सरकार से यही है कि जो इतने मजबूर लाचार हैं बच्चे हैं, बड़े हैं जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझ नहीं

0: समय समय पर ये सुविधाएं सबको मिलती रहे, यही मेरी सरकार से आशा है।
1: इस तरह के कैंप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जरूरी है?
0: बहुत जरूरी। पहले जिले पे ही जाना पड़ता था, अब ये लोग इस तरह पे लगने लगे, इनसे और ज्यादा फैसिलिटी हो गई सभी दिव्यांगों के लिए।
2: ये कहा जा सकता है कि ऐसे प्रयास केवल दिव्यांग जनों के लिए ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए सहारा और सबल बनाते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख।
3: मैं तपराज सिंह देसवाल, ब्लॉक प्रमुख नजीबाबाद।
1: इस दिव्यांग कैंप को आप किस नजरिए से देखते हैं और इसका सामाजिक महत्व क्या है?
3: समाज के जो गरीब लोग हैं, जो शारीरिक रूप से किन्हीं अंगों के कारण अक्षम हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा ये आयोजन होते हैं। सामाजिक महत्व, जो लोग अपने पैसे से नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त यहाँ दिए जाते हैं, इसलिए इसका काफी सामाजिक महत्व है।
1: क्या इस तरह के कैंपों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं?
3: कैंपों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजनाएं निरंतर सरकार बनाती है, बढ़ाती है। कई बार ये कैंप लगते हैं, एक साल में 3-4-5 बार तक लगते हैं।

0: हम काम करते हैं और कोशिश रहेगी कि और बढ़ें, लोगों को ज्यादा लाभ।
1: जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका ऐसे प्रयासों को निरंतरता और मजबूती प्रदान करती है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित यह निःशुल्क दिव्यांग जन कैंप एक सशक्त उदाहरण है कि जब स्वास्थ्य, प्रशासन और समाज एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो बदलाव केवल संभव नहीं होता बल्कि वे हर जरूरतमंद तक पहुँचता है। ये पहल केवल सुविधाएं नहीं देती बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और समान अवसर की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करती है। 8 मई को आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। ये 90 वर्षों की यात्रा केवल आवाजों की नहीं बल्कि विश्वास, संवाद और जनसेवा की एक ऐसी परंपरा की कहानी है जिसने हर दौर में समाज को जोड़ने का कार्य किया है। इसी के साथ मैं अंकुर चौधरी आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप सुनते रहिए बात आसपास की। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम बात आसपास की सुन रहे थे। वाचन स्वर और संकलन था अंकुर चौधरी का। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर को सुनने वाले हमारे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के सुहाना सफर पर मैं हूं आपके साथ फैजुर रहमान
1: और मैं आपकी साथी पारुल गोयल। दोस्तों, आप सबको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भारतवर्ष में रेडियो प्रसारण के सफलतम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में हम ये मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हमारे इस दिलचस्प कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है। और आज पारुल जी, जैसे कि आज हमारे आकाशवाणी ने भी जो है 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में एक नजीबाबाद शहर में रैली का आयोजन किया और ये रैली बहुत ही खूब रही। फेसबुक लाइव के द्वारा इसे लाइव भी देखा जा सकता था और हमारा सजीव प्रसारण हमारे केंद्र से इसे प्रसारित भी किया गया। बेहतरीन एक संस्मरण हमारे साथ जुड़ा। आज सभी युवाओं ने, सभी अधिकारियों ने, सभी समनिदेशिति ने बहुत ही सुंदर आज का ये कार्यक्रम पूरा किया और सभी जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उनको भी आज के इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: और फैजिर भाई, आज हमारे बहुत पुराने श्रोता भी हमारे आकाशवाणी में उपस्थित थे। हाँ, और बहुत ज्यादा उत्साहित थे
0: जी, देखकर
1: आज हम देखेंगे कि किस केंद्र से, जिस केंद्र से प्रोग्राम आ रहे हैं और वो सुनते आए हैं इतने साल से।
0: जी जी,
1: तो वो आज बहुत उत्साहित और बहुत प्रसन्न दिखे सारे पुराने श्रोता।
0: सभी लोगों को कवरेज किया गया लगभग, और मैं यहाँ स्टूडियो से सुन पा रहा था कि बहुत सारे ऐसे हमारे श्रोता हमारे साथ जो विशेष तौर से हमारे शहर के बाहर से आए थे। कोई बुलंदशहर से था, कोई मुरादाबाद से था। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प आज का कार्यक्रम रहा और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक हमेशा के लिए एक याद जुड़ गई और 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ये एक वाकई बहुत ही बड़ा एक मील
1: बहुत
0: का
1: बड़ी
0: पत्थर
1: है हमारे लिए और आपके लिए और
0: क्योंकि खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने रेडियो से अपने बचपन की शुरुआत की और रेडियो सुनते हुए बड़े हुए, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम को पारुल जी आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे वर्ष 2000 के 17 के बारे में। तो 2017 में जो रेडियो का हमारा सफर रहा, ऐसी कौन सी प्रमुख बातें उस वक्त जो है रेडियो पर प्रसारित हो रही थी, उस पे हम बात करेंगे।
1: जी फैजूर जी, आज हम अपने श्रोता दोस्तों को एक बार फिर से लेकर चल रहे हैं सन 2017 के उस सुहाने सफर की सुनहरी यादों में, जिन्हें हमसे और आप सबसे रूबरू कराने में

0: हमारे भारतीय रेडियो प्रसारण ने एक अहम भूमिका निभाई है।
1: जी पारुल जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ज्ञान, मनोरंजन, महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां, समाचार, सभी कुछ मिलाकर यदि संक्षेप में कहा जाए तो एक अनमोल खजाना रेडियो प्रसारण ने हम तक और आप सब तक, हमारे श्रोताओं तक, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया।
0: जी फैजुर रहमान जी, बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं जो हमें अपने श्रोता साथियों से साझा करनी है, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं सन 2017 में बनी फिल्म काबिल का ये सुंदर सा नगमा।
1: जी श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म काबिल से और जुबीन नौटियाल की आवाज है, पलक मुच्छल की आवाज है और
0: राजेश रोशन का संगीत निर्देशन है और नासिर फराज के गीत को लिखा है। आइए सुनते हैं वो कौन सा गीत है।

0: श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको ये गीत पसंद आया होगा। और बात चल रही है श्रोताओं कार्यक्रम सुहाना सफर में साल 2017 के प्रसारण की। सन 2017 से जुड़ी यादें फिर से अगर हम ताज़ा करें तो सन 2017 का वह दौर था जब देश और विदेशों में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई।
1: जी बिल्कुल, और ये सब सूचनाएं और जानकारियां हम तक सहजता और सरलता के साथ पहुंचाने का जिम्मा लिया हमारे भारतीय रेडियो प्रसारण ने। और इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए हम अपने भारतीय रेडियो प्रसारण के लिए सदैव आभारी रहेंगे।
0: पारुल जी, सन 2017 वह समय था जब फीफा U17 यानी U17 वर्ल्ड कप पहली बार भारत में आयोजित हुआ। इसी कारण इस समय बहुत बड़े स्तर पर भारत में स्टेडियम निर्माण और विकास कार्य हुए।
1: हाँ जी, लाखों दर्शकों ने देश के 6 बड़े बड़े शहरों में ये मैच देखे थे और भारत में सभी खेलों की विशेषकर फुटबॉल की लोकप्रियता भी बढ़ी थी।
0: भारत में 6 से 9 जुलाई 2017 को उड़ीसा में 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन का सफल आयोजन किया गया। भारत ने पदक तालिका में 12 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य पदक जीतकर विश्व के धरातल पर अपना परचम लहरा दिया था।
1: फैजुर रहमान जी, अब हो जाए थोड़ा सा मनोरंजन और लेते हैं छोटा सा ब्रेक और अपने दोस्तों को सुनवाते एक मधुर सा गीत सन 2017 में बनी लोकप्रिय फिल्म लईस रईस का। ये गीत है, आवाज है केके की, संगीतबद्ध किया है अहीर ने और गीतकार है मनोज यादव। आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। बात कर रहे हैं वर्ष 2017 के रेडियो प्रसारण की। श्रोताओं, 2017 में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिनमें भारत में जीएसटी का कार्यान्वयन 1 जुलाई से और रामनाथ कोविंद का 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेना शामिल रहा। श्रोताओं, अगर जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई सन 2017 को वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 17 जुलाई सन 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। और श्रोताओं, एक जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला भी इसी वर्ष हुआ। 10 जुलाई को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए एक आतंकी हमले में 7 तीर्थ यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। अगर हम बात करें रेल दुर्घटनाओं की तो 2017 में कई रेल दुर्घटनाएं भी सामने आईं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी कुछ ऐसी जानकारियां जो उस वक्त के रेडियो प्रसारण से जुड़ी रहीं। जी पारुल जी।
1: श्रोता दोस्तों, यदि फिल्मी दुनिया पर दृष्टि डाली जाए तो सन 2017 में भारतीय फिल्मी जगत ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसी वर्ष बनी फिल्म बाहुबली 2 ने एक नया इतिहास रचते हुए फिल्मी जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। न्यूटन फिल्म ने भारत को ऑस्कर अवार्ड का नॉमिनी बनाया और न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।
0: जी पारुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये 2017 वह दौर था जब भारतीय फिल्मी जगत ने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक विषयों पर वैश्विक पहचान दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। रईस, जॉली, LLB 2, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हिंदी मीडियम, गोलमाल अगेन, जुड़वा 2, टाइगर जिंदा है, दंगल जैसी फिल्में दर्शकों को दीवाना बना दिया इन फिल्मों ने। और पारुल जी, क्यों ना एक और अब म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए।
1: जी, और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म टॉयलेट, एक प्रेम कथा का ये सुंदर सा गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं।
1: श्रोता दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फिल्मों को, कलाकारों को, फिल्मी संगीत को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? वह योगदान है हमारे रेडियो प्रसारण का। रेडियो पर जब हम इन गीतों की धुनें बजती भी सुनते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति झूमने लगता है। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सन 2017 में AI तकनीक और मशीन लर्निंग का उपयोग स्वास्थ्य तकनीक और उद्योगों के विकास हेतु तेजी से बढ़ा।
0: श्रोताओ, इसरो ने 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया इसी साल। राजनीतिक क्षेत्र में भी सन 2017 में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय सरकार के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, तो ये पुरस्कार उस वक्त मिले डॉक्टर आर गांधी को एथलेटिक्स के लिए, हीरानंद कटारिया को कबड्डी के लिए, और GSSV प्रसाद को बैडमिंटन के लिए, ब्रज भूषण मोहंती को मुक्केबाजी के लिए, और PA राफेल को हॉकी के लिए, संजय चक्रवर्ती को शूटिंग के लिए, और रोशन लाल को कुश्ती के लिए।
1: अरे फैजू रहमान जी, अपने श्रोता दोस्तों से बात करते करते हमें तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। घड़ी की घूमती हुई सुई हमें और अनुमति नहीं दे रही है अपने श्रोता दोस्तों के साथ जुड़े रहने की। तो दोस्तों, हम चाहते हैं
0: जी पारुल जी, देखिए बात तो और भी हम कुछ ना कुछ करना चाहते थे अपने दोस्तों से, लेकिन अब क्योंकि कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव में है, तो एक गीत जो है श्रोताओं को सुनवा दिया जाए।
1: श्रोता दोस्तों को
0: जी, ये गीत जो है हमने लिया है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से, जो सन 2017 में आई। श्रोताओं आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोता दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? हम भी यही चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम इसी प्रकार प्यार के साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। क्योंकि दोस्तों, मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो दोस्तों, मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो दोस्तों, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो दोस्तों, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।
1: बहुत अच्छी बात आपने जो है अपने संदेश में कही पारुल जी, और वक्त हो चला है अपने श्रोता दोस्तों से विदा लेने का। तो श्रोताओं, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताइएगा। और अब विदा ले लेते हैं पारुल जी अपने श्रोताओं से। श्रोताओं, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के सजीव फोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम जागरूक श्रोता। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान
1: और पारुल गोयल का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी कॉल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें कॉल करेंगे, हमारा नंबर है 9457078288। और आज का हमारा विषय है श्रोताओं, रेड क्रॉस के सिद्धांत और आज का समाज। तो हमारे श्रोताओं की कॉल हमें आने लगी है। पारुल जी,
1: जी
0: हेलो, जागरूक श्रोता।
1: हेलो
0: हेलो जागरूक श्रोता।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो, हाँ जी,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश।
1: सतीश जी, हाँ जी, जी कहाँ से बोल रहे हैं सतीश जी?
2: फरुखाबाद उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूँ।
1: जी जी जी, आज का विषय पता है सतीश जी आपको?
2: और आपको नमो बुद्धाय।
1: हाँ जी, आपको भी नमो बुद्धाय।
2: मैं नमो बुद्धाय हूँ, मैं छात्र लोग हूँ। हाँ जी, तो मैं नमो बुद्धा को मानता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा
2: जी।
1: जी सतीश जी,
2: क्या है?
1: हाँ जी,
0: हमारा आज का विषय है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस।
2: क्या तो 8 मई को, आज तो मेरा सर जी कहना चाहता हूँ, 8 मई को क्या बजा बनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस ही भाई बस
0: जी। हाँ, रेड क्रॉस दिवस का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं कि तमाम दुनिया में कहीं भी युद्ध होते हैं, बाढ़ आती है, या कोई ऐसी कोई भी आपदा जिसमें मानव जाति को नुकसान होता है या वो घायल होते हैं, तो उस समय एक संस्था पूरे विश्व में काम करती है और वो लोगों की मरहम पट्टी करती है, लोगों को ठीक करने के लिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए अपने शिविर लगाती है, एक अस्पताल के रूप में।
1: सभी
0: इसको रेड क्रॉस कहते हैं।
1: सभी पीड़ितों को राहत सामग्रियां पहुंचाना, राहत देना, सेवा करना, सहायता करना सारे ही लोगों की, ये सब रेड क्रॉस संस्था का कार्य होता है।

0: सतीश जी, आपने भी कभी कुछ ऐसा कार्य किया है परोपकार का, मानवता से संबंधित? आपने कभी किसी की सहायता करी है, किसी
1: हाँ,
0: परेशान
1: मैं
0: में?
1: भी जैसे सहायता क्या, जैसे बड़े बूढ़े रहेंगे तो उनकी सहायता करना चाहिए,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कहना चाहता हूँ जैसे किसी की कहीं भी जाता हो, जो आज
0: जी
1: के
0: जी
1: जमाने में मैडम जी ऐसा है, जैसे किसी की दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई
0: जी
1: बात
0: जी
1: हो जाए, तो उसको तुम उठा लो, तो उसे उठाने वाले को जो है दूसरे बंदे कहेंगे अरे इतनी इतनी टक्कर मारी है वो है,
0: हाँ
1: तो
0: जी, हाँ
1: उसी
0: जी
1: पे आजकल चौंक देता है, तो बात जा है, ये आज
0: जी
1: जमाना ऐसा है।
0: जी
1: देखो,
0: जी
1: किसी का मदद करो तो किसी का मदद के चक्कर में बहुत बहुत महंगी पड़ जाती मदद।
2: जी, ऐसा ऐसा नहीं है जो मैं आपको।
1: ऐसा ही भी होता
2: जी
1: है
2: जी
1: सर
2: जी
1: जी, ऐसा ज्यादातर
2: जी
1: के कोई लड़की हुए, कोई लड़की कोई कोई गिर गई हो तो उसको उठा लो, अरे इतना चढ़ा है जो है वो है,
0: सतीश भाई,
1: तो
0: आपका
1: दिक्कत
0: जो
1: आ जाती।
0: अनुभव है थोड़ा सा
1: जी
0: कड़वाहट भरा है
2: जी
0: सहायता से
1: नहीं, वो
0: संबंधित।
1: कड़वा तो बड़ा है लेकिन वो हकीकत है, ऐसी बात
2: जी
1: नहीं। वो तो
2: जी जी
1: आजकल लड़कों पे हालत नेक देर में ये बीमारी चोप
2: जी
1: देती है।
2: जी सतीश जी, जैसे आज हम रेड क्रॉस दिवस मना रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है हम पूरे विश्व में इस दिवस को मनाते हैं, और ख़ास तौर से घायलों को, बीमारों को, असहाय लोगों को मदद करने के लिए ये सोसाइटी, ये संस्था आगे आती है। और जैसे कभी ना कभी ऐसी कुछ आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कोविड एक आपदा थी, है ना, कोरोना काल के समय क्या आपने लोगों की मदद की, मैं कुछ जानना चाहता हूँ।
1: कोरोना काल में यही है, जैसे किसी के पास गरीब बंदे हैं, जैसे कोई हो तो कोरोना काल में जैसे सरकार, तो सरकार है और बड़े कुछ लोग होते खाना बांट रहे थे, तो उनको खाना खिलाना चाहिए, पानी देना चाहिए टाइम से,
0: जी जी
1: तो उसमें बहुत बहुत लोगों ने मदद करी है, तो
0: जी
1: ऐसा अच्छा लगा था ऐसा।
0: बस
1: और मैं भी
0: सतीश जी, हाँ जी
1: दिल्ली में फंस गए थे तो लॉकडाउन में,
0: जी
1: तो कई बसें तो बंद हो गई, गाड़ी भी ट्रेन भी बंद हो गई
0: हाँ,
1: थी जाने
0: सारी
1: के लिए, नहीं तो
0: व्यवस्थाएं
1: तो
0: अव्यवस्थित हो
1: सारी
0: गई थी।
1: व्यवस्थाएं सरकार ने उपलब्ध की थी, खाना आना दिया था, सब कुछ दिया था, तो
2: जी,
1: ऐसे ही होता रहता
2: तो
1: है।
2: आपने सतीश जी हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत
0: बहुत
2: बहुत
0: बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।
2: हमारे साथ अभी जुड़े थे हमारे श्रोता सतीश जी, आपने अपने विचार रखे। और पारुल जी, एक और कॉल
0: जी
2: हमारे
0: जी
2: साथ।
0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: हाँ जी नमस्कार,
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश के लिए।
0: अविनाश जी।
1: जी जी
0: हाँ
1: जी
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: त्रिपुरा से। जी
0: त्रिपुरा से। हाँ जी
2: आपने
0: जी
2: काफ़ी दूर से हमें कॉल किया है और आप हमें इतनी दूर से सुन रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस, क्या आप जानते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में?
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आजकल के दिन में जैसे मानवता के प्रति जो हम सबका जो उसमें ध्यान भटकता जाता है, हम सभी सिर्फ स्वार्थ के पीछे दौड़ते हैं, अपने
0: हाँ जी
1: पीछे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जो मानवता के हित में हो। तो
2: जी
1: जैसे मान लीजिए कि जैसे हम ब्लड डोनेट करके भी मानवता के हित में हम कार्य कर सकते हैं, या फिर कहीं देखिए कहीं प्राकृतिक आपदा आ चुका है तो वहां पर भी हम अपने सहयोग से एक एक भी अगर जान बचा सकते तो फिर हम सबके लिए गर्व की बात होता है। या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया हो तो आजकल देखिए लोग क्या करते हैं कि पहले रील्स बनाने के चक्कर में रहते हैं, उनको अगर 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल किसी भी तरह से पहुंचा दिया जाए तो हो सकता है उनकी जान बच जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और आज उनके साथ जो दुर्घटना हुआ है, हो सकता है कल आपके साथ हो, तो इसीलिए हम सबको मानवता के प्रति अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मानवता ही होता है सबसे बड़ा धर्म।
2: जी
1: तो इसीलिए हम सभी को
2: अविनाश जी,
1: इस बात
2: बहुत
1: का ध्यान
2: बहुत
1: रखना
2: अच्छी आप
0: चाहिए।
2: बात बता
0: बहुत
2: रहे हैं
0: अच्छी
2: इस
0: बात कही
2: वक्त,
0: है।
2: क्योंकि ये बिल्कुल एक सार्थकता की बात है कि इस वक्त जो है बहुत लोग रील बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। कई ऐसे स्पॉट की भी बात है जहाँ पे रील बनाना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि वो एविडेंस के रूप में काम आती हैं कुछ चीज़ें।
1: जी,
2: लेकिन
1: काम
2: आज जैसे हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस के जो अविनाश जी जो 7 नियम है ना, उन पे आपकी बात बड़ी खरी उतर रही है। वो ये है कि वो सबसे पहली बात होती है मानवता की, यानी कि आपके सामने जो है एक इंसान है, वो किसी धर्म, किसी जाति, कैसा भी है, किसी भी देश का है ना। तो रेड क्रॉस क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 देशों में लड़ाई हुई, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही देश के सैनिकों की मदद करेगी या उन्हीं की मरहम पट्टी करेगी या उन्हीं को ठीक करेगी। उसका कार्य है कि कोई भी सैनिक, किसी भी देश का सैनिक या किसी भी देश के नागरिक, जहां भी परेशानी है वहां

0: रेड क्रॉस पहुंचता है और दुनिया को जो है एक अपनी मानवता वाली जो बात है, जो उसका पहला नियम है, उस पर बात करता है, निष्पक्षता की बात करता है, यानी इसका दूसरा नियम है, और तटस्थता की बात करता है, यानी कि युद्ध के समय किसी भी पक्ष का साथ ना लेना, है ना, अपनी बातों पे अड़े रहना और लोगों को जो है एक तरीके से मदद पहुंचाना। इंडिपेंडेंसी की बात करता है अविनाश जी, और स्वैच्छिक सेवा की बात करता है, एकता की बात करता है, और यूनिवर्सैलिटी की बात करता है, यानी कि सार्वभौमिकता की बात करता है, वैश्विक संस्था है। और जब हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस की अविनाश जी, तो क्योंकि आप त्रिपुरा राज्य से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो कुछ बताइए, अपने कुछ अनुभव बताइए, जिस तरीके से आपने कभी लोगों की मदद की हो और कुछ लोग आपकी मदद से ठीक हो पाए हों।
1: जी जी बिल्कुल। तो हमारे घर के सामने ही, मतलब कि एक वहाँ पर चार रास्ते एक साथ ही मिलते, तो वहाँ पर एक सड़क दुर्घटना हुआ था। तो उस समय देखिए हम लोगों ने मदद की थी, और वहाँ पर मदद करने के बाद कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि इसके चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर हमारे पीछे पड़ जाएगी, कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब कि इन सब चक्कर में। तो हम लोगों ने सोचा कि इन सब चक्करों में पहले हम सबको इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इनका मदद करना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने ऐसे किया, तो बाद में क्या हुआ कि सरकार की ओर से हम सभी को पुरस्कृत भी किया गया था। तो इसलिए देखिए ऐसा नहीं है कि पुलिस के चक्कर में पड़ के लोग कुछ दूसरों की मदद करना भूल जाएंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है कि एक मदद से उनकी जान भी बच सकता है। तो हम सबको पहले
0: बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं अविनाश जी, बहुत अच्छे नागरिक आप हमें लग रहे हैं इस देश के, और इसमें वॉलंटियर सर्विसेज भी हैं, आप अपनी स्वेच्छा से जो है रेड क्रॉस को जो है अपनी जो ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कहीं भी आपदा आ जाती है तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। आपने हमें कॉल किया अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़े।
1: जी जी धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ अविनाश जी त्रिपुरा से, आपने हमें कॉल किया। बहुत ही अच्छा लगता है श्रोताओं ये जानकर कि कहीं ना कहीं हर मन में एक इंसान छुपा बैठा है, यानी हम बाहर से इंसान ना हो तो अंदर से कम इंसान बन जाए तो वाकई ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। एक और कॉल हमारे साथ जुड़ रही है, कौन है, कहां से हैं?
2: हेलो
3: हाँ जी,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
3: राकेश जी शिमला से?
2: जी
3: हाँ जी, नमस्कार राकेश जी।
2: जी नमस्कार आपको।
3: जी आप जी। आपने सुना अभी तक हमारा जो प्रोग्राम ये चल रहा है कार्यक्रम, आपको आज का विषय पता है राकेश जी?
2: जी हाँ जी, रेड क्रॉस के बारे में।
3: हाँ जी
2: जी
0: थोड़ी अपना अनुभव बताइए राकेश जी, सबसे पहले कब सुना होगा ये नाम आपने अपनी लाइफ में?
2: ये जो रेड क्रॉस वाला जो मैंने, जब से मैंने होश संभाला है, जब मैं बचपन में सुना करता था तो मैं बचपन से मैं ये कई बार मैं मन में सवाल पूछता कई बार परिवार से कि ये रेड क्रॉस क्या होता है।
0: जी जी जी, और एक वो भावना है ना, जो मतलब लोगों की मदद करने की भावना, वो जुड़ जाती है ना।
2: जी
0: और हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी एक वाकई में एक सैनिक है और युद्ध स्तर पे काम आते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, है ना।
2: जी
0: तो बड़ा अच्छा सा एक सोसाइटी है।
3: तो राकेश जी आपको पता मालूम हुआ कि रेड क्रॉस क्या है?
2: बिल्कुल जी मालूम हुआ, जब मैं थोड़ा मैं अपनी होश संभाला फिर मुझे पता चला कि ये रेड क्रॉस जो है की हेल्प करना, कई मानो की कोई कहीं किसी को चोट लगी तो उसको हम अस्पताल ले जाए, तो इसके बारे में हम फिर पता चला। तो इसके अनुभव ये जो है रेड क्रॉस है ये अच्छा है। मैं अपने बात कर सकता हूँ कि हमारे हिमाचल की एक परंपरा है रेड क्रॉस के बारे में बताना चाहता हूँ।
3: तो
2: अगर हमारे जैसे लोग अगर हमारे प्रदेश आ जाते हैं
3: जी। हाँ जी,
2: अगर आपको कहीं परेशानी हो जाती है या क्या बोलते गाड़ी की समस्या या गाड़ी खराब हो जाती है या बारिश हो जाती है, हमारा एक सिस्टम है, हम अपने घर में आश्रय देते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से हैं।
3: हाँ जी, ये तो बहुत पुण्य का काम है।
0: बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं,
3: ये बहुत अच्छा। आज
2: क्योंकि हमारे एक बात की समय ज्यादा समय, एक बात की बात है पहले

0: इस समय बाद की बात है, जब हम वो थे छोटे छोटे,
1: जी
0: तो हमारे वाले हमारे आए थे यहाँ फेरी वाले, जो घर घर में जो कपड़े बेचते थे,
1: हाँ जी
0: तो आए थे वो। और उस समय मेरी मम्मी अकेली थी घर पे।
1: अच्छा,
0: तो उस जमाने में चारा की पहले छेड़छाड़ तो नहीं होती थी औरतों के साथ।
1: हाँ जी,
0: तो आए थे वो, तो आए तो हम थोड़े मतलब हमारे पास होता था एक कमरा।
1: अच्छा,
0: तो आए तो बोलते हैं कि भाई हाँ जी यहाँ कोई घर में लेगा। बोलो क्यों? अरे हम रात को फंस गए थे और अब हम कहाँ आज से ले, कहाँ हम यहाँ सोने के लिए कहाँ जगह। तो फिर मम्मी ने क्या बोला, देखो भाई एक कमरे में तो मैं रहती और मेरे बच्चे रहते हैं।
1: हाँ जी,
0: बोलो तुम ऐसा करो गर्मी का मौसम है, बाहर सो जाओ बरामदे में आराम से।
1: हाँ जी,
0: तो उनने बोला कि आप सोने के लिए जगह जहाँ भी देगी हम सो जाएंगे। तो हमने क्या किया, बोला हमने सबसे पहले पूछा कि खाना खुना तो नहीं खाना, बना देती हूँ। तो उनने बोला कि नहीं खाना तो नहीं खाना। हमने बोला बस सोना है। तो बरामदे में हमने घोसला, पर हम अपने बिस्तर में भी दे रहे थे उनको।
2: जी,
0: मैं कहा ये लो, मैं कहा आपको ठंडा देगी। नहीं, बोला हमने अपने कमल लाए है। मैं कहा ये क्यों करने खराब, ये तो आपने बेचने।
2: जी,
0: अगर आप अपने कमल इस्तेमाल करेंगे तो आप ग्राहक
1: बेचेंगे कैसे? जी,
0: बेचेंगे कैसे?
1: जी,
0: तो हमने कहा ये है, मैं कहा ये कर लो तो सो जाओ।
1: हाँ जी,
0: तो ये छोटी छोटी बात है। तो हमने ऐसे हमने ये नहीं सोचा कि भाई घर में अकेली महिलाएं जा अकेली महिलाएं हैं, उनकी छोटे छोटे बच्चे भी है। तो हमने उनको केला रहने के लिए आशीष दिया, लेकिन हमने अपने दरवाजे को मजबूती से कुंडी लगा के रखी है,
1: अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा। जी,
2: बहुत अच्छी आज की जो आपने बात बताई ना राकेश जी, ये
1: जी,
2: हमारे कुछ जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसमें आज के समाज पे जो इफेक्ट आ रहे हैं, जो प्रभाव आ रहे हैं, उस पर भी बात हो गई और बड़ी अच्छी आपने बात हमें बताई। राकेश जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन हम संशय में रहते हैं, हम डर में रहते हैं कि हम उनकी मदद करें ना करें, क्या होगा। तो ऐसी स्थितियों से जो है हमेशा अगर सही निर्णय लेना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें हमें देख लेना चाहिए कि हमारी सेफ्टी उसमें है या नहीं। तो यदि हमारी सेफ्टी है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये तो आपने
0: आज की डेट में तो ये करना सही होता है, क्योंकि अगर आप मानो कि हम आपके घर में आएंगे
1: जी,
0: तो आपको पहले पूरा सोच समझ के आपको निर्णय लेना होता है कि ये सही है अपने घर में एक दिन के लिए रखने के लिए है।
1: जी जी, अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखना होता है राकेश जी।
0: जी जी जी,
1: तभी हम दूसरे की, जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रख पाएंगे और उसकी मदद कर पाएंगे। तो पहले अपनी सुरक्षा की जी जी
0: छोटी मोटी सी मदद कर सकते,
1: जी जी जी,
0: किसी को पानी की समस्या है, किसी को रोटी की समस्या है, ये तो कर सकते, लेकिन
1: हाँ
0: अपने घर में किसी को रखना है वो तो समस्या में।
1: बिल्कुल राकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बस सुरक्षा का भाव मन में होना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर से, अपनी सामर्थ्य से मदद कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी बीमार की मदद कर रहा है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर रहा है या युद्ध में पीड़ित लोगों की मदद कर रहा है। उसमें यदि भाव होगा मदद का तभी वो मदद कर पाएगा, लेकिन सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। जी, आपसे बात कर बहुत प्रसन्नता महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी।
0: जी जी, धन्यवाद जी।
2: हमारे साथ जुड़े थे अभी श्रोता और राकेश जी शिमला से, और कार्यक्रम है हमारा जागरूक श्रोता, और आज हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस दिवस पर। दुनिया का सबसे पुराना और प्रमुख मानवीय सेवा संगठन है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य आपात स्थितियों में बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की स्थापना 17 फरवरी को 1863 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, और इसकी स्थापना करने वाले थे हेनरी ड्यूनेट। और स्थापना करने का जो कारण था श्रोता, वो था 1859 में बैटल ऑफ सोल्फेरिनो युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की दयनीय स्थिति और देखभाल के अभाव में उनकी मौत को देखकर हेनरी ड्यूनेट का दिल दहल गया था। उन्होंने एक ऐसे तटस्थ

0: रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाते हैं?
1: जी।
0: आज हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि रेड क्रॉस के जो संस्थापक हेनरी ड्यूनेन थे,
1: जी
0: उनका जन्मदिन भी आज ही का
1: जन्मदिन
0: ही
1: जी जी
0: है।
1: बहुत अच्छी बात
0: जी
1: आपने
0: जी
1: श्रोताओं से साझा की।
0: जी
1: और पारुल जी, जल्दी से एक और कॉल हम ले लेते हैं। एक
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: कॉल हमारे पास है।
0: हेलो।
2: हेलो जागरूक श्रोता
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। हाँ
1: हरबिलास
2: जी,
1: सिंह तोमर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर जी,
1: कैसे हैं?
2: आपकी दुआ इस कृपा से बहुत अच्छी तरह से
1: जी,
2: है।
1: मध्य प्रदेश से आपने हमें कॉल किया, इतना प्यार आप हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर जी।
1: जैसे आज का हमारा विषय है तोमर जी, हम बात कर रहे
2: जी
1: हैं रेड क्रॉस के बारे में, है ना? तो कभी
2: जी
1: कभी
2: सर,
1: लगता है कि आप भी जो है एक युद्ध स्तर पे लोगों की मदद करें, आगे आएं, और कैसा लगता है जब लोगों की मदद करते हैं तो?
2: बहुत ही अच्छा लगता है सर जी। रेड क्रॉस का उद्देश्य एक दूसरे को मदद करना, भाईचारा स्थापित करना।
1: जी
2: हमेशा से जैसे सैनिक लोग युद्ध में घायल हो जाते, उनकी सेवा करना। आपदा के समय, जैसे राष्ट्रीय आपदा कोई आ जाती है, उस समय कोई घायल हो जाते, उनकी सेवा करना रेड क्रॉस का उद्देश्य रहता है।
1: जी।
2: और पूरे विश्व में 8 मई को मनाया जाता है, और प्रथम बार 1948 में मनाया गया था
1: जी,
2: ये।
1: ये हरबिलास जी, जैसे मान लीजिए अगर आज के समय की हम बात करें तो ऐसा बहुत कम हो गया है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आते, ऐसा क्यों हो रहा है?
2: उसमें कुछ व्यवधान थे, जैसे कोई घायल पड़ा है सड़क पे, उसको अपन नहीं ले जाते क्योंकि पुलिस की दिक्कत पड़ती थी कहीं कुछ। लेकिन अब कोर्ट ने ऐसे आदेश पारित कर दिए, किसी भी घायल को ले जाओ, कोई आपसे पूछताछ नहीं होगी।
1: जी।
2: तो कुछ कानूनी व्यवधान थे, इसलिए लोग हिचकिचाते थे।
1: जी
2: हमेशा घायल की
1: हाँ,
2: मदद करना चाहिए,
1: डरते थे, है
2: अपना
1: ना? जी,
2: डरते थे
1: जी।
2: जी।
1: लेकिन कई बार
2: ये
1: अगर
2: था
1: सही समय पे लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बच जाती है, उन्हें दूसरा जीवन मिल जाता है, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, है ना हरबिलास जी?
2: सही है, बिल्कुल। उसको अपन जीवन नहीं दे सकते, इतना तो कर ही सकते हैं,
0: जी
2: साथ
0: जी
2: अस्पताल तक पहुंचा दें कम से कम।
0: अगर समय से पहुंच जाता है कोई भी मरीज या कोई भी
2: जी
0: घायल, तो उसे
2: जी
0: प्राथमिक उपचार भी मिल जाता है समय पर, और
2: मिल
0: जीवन
2: जाता है,
0: रक्षा
2: उसकी
0: भी हो
2: जान
0: जाती है
2: बिल्कुल
0: उसकी। जी
2: हो जाती है जी।
1: अच्छा राकेश जी, जैसे आजकल हम नवयुवकों की बात करते हैं, नवयुवक आजकल बहुत स्कूल कॉलेजेस में झगड़े कर रहे हैं, आए दिन कहीं भी जो है एक दूसरे को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, किस तरीके से जो है हम अपने इस देश को और सुंदर बनाने की कोशिश करें, क्या कर सकते हैं हम?
2: सर जी हमें एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकारना चाहिए। सामने वाला जो कह रहा उसको भी सुने, उसकी बात को भी ध्यान से सुने। अपना ही अपन नहीं कहते रहे, हम ही समाज में सब कुछ नहीं है, अन्य लोग भी हैं।
1: जी
2: उनका
1: जी
2: अस्तित्व
0: जी
2: स्वीकार, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी सर।
0: बहुत अच्छी बात
1: बहुत
0: है।

0: हमारे साथ जुड़े थे अभी हरबिलास जी, और आप हमें कॉल कर रहे थे मध्य प्रदेश से। पारुल जी, एक और कॉल इस समय हमारे साथ हैं।
1: हेलो।
2: हेलो हेलो, जागरूक श्रोता।
1: हाँ जी,
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग।

0: पारुल जी, एक और कॉल इस समय हमारे साथ है।
1: हेलो।
2: हेलो हेलो जागरूक श्रोता,
1: हाँ जी,
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग। हेलो।
2: हेलो हेलो जागरूक श्रोता,
1: हाँ जी,
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग।
2: टाइम से तबीयत थोड़ी सी ऐसी खराब चल रही है।
1: अच्छा
0: अच्छा
2: हाँ, तो
0: चलिए
2: घर में कोई है भी नहीं मेरे अलावा, तो इस वजह
1: जी
2: से
1: जी
2: मेरा आना नहीं हुआ। लेकिन आज पूरा मेरा बहुत लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था इस
1: जी
2: प्रोग्राम में शामिल होने का, लेकिन क्या करूं, बहुत
0: जी
2: अफसोस
0: वो
2: हो रहा
0: बेहद
2: है।
0: ही आज
2: बकार
0: का
2: जी
0: हमारा कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहा,
1: जी
0: और
2: हाँ
0: शहर
2: सर, मैं
0: में
2: लाइव
0: एक
2: लाइव
0: जी
2: देख रहा
0: जी
2: था
0: जी
2: प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ के जो मतलब गणमान्य लोग थे और
1: जी
2: वहाँ
1: जी
2: के जो मौजूदा चेयरमैन साहब थे, उनको भी लाइव देखा गया।
0: जी
2: और शोभित शर्मा जी, अंकित सैनी जी और
1: जी
2: जितनी भी टीम थी, नंदिनी महेश्वरी जी, सभी लोगों को मैं देख रहा था। रेणु कोटनाला जी,
1: जी जी
2: निधि भारद्वाज जी, बहुत
1: जी
2: अच्छा
1: जी
2: लग रहा
1: सभी
2: था।
1: आप तो सभी
2: लेकिन
1: लोगों
2: हाँ
1: से
2: मैम,
1: परिचित हैं और
2: बिल्कुल मैम
1: आपको आज सभी की निगाहें आपको भी ढूंढ रही थी,
0: जी
1: लेकिन आप मन छोटा
2: हाँ,
1: मत कीजिए, क्योंकि आप
2: क्या
1: जो कार्य वहां
2: करें,
1: रहकर कर रहे थे अपनी
2: क्योंकि
1: माता जी की
2: इंसान
1: सेवा।
2: इंसान जो
1: जी
2: चाहता है
1: जी जी
2: उसके मन की कभी पूरी नहीं हो
1: नहीं
2: पाती
1: नहीं
2: है।
1: होगी,
2: इंसान
1: आप
2: को
1: अच्छी अपनी आशावादी रहिए,
0: जी
1: आपके मन की जरूर पूरी होगी। और हमारे आकाशवाणी रेडियो केंद्र से, नजीबाबाद केंद्र से, हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जिसमें आपको आने का अवसर मिलेगा। और अभी आपके
2: बिल्कुल
1: लिए
2: मैम,
1: वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, अपनी माताजी की सेवा करना। और सेवा से ही संबंधित आज का हमारा ये कार्यक्रम है,
2: बिल्कुल
1: तो
2: मैम,
1: आप घर
2: प्रोग्राम तो
1: रहकर
2: बहुत दूर
1: ही
2: से
1: अपना
2: जुड़ा हुआ
1: कार्य कर रहे
2: प्रोग्राम में।
1: हैं।
2: बिल्कुल मैम
1: जी,
2: जी,
1: ये बहुत
2: जैसे
1: अच्छी
2: कि
1: चीज़ है।
2: रेड रेड क्रॉस डे
1: जी
2: आज मनाया जा रहा है,
1: जी
2: और उसमें भी मैं यही कहूंगा कि मानवता, इंसानियत इंसान के दिल में होनी चाहिए जो
1: जी
2: सबसे पहले है।
1: ये सबसे
2: जी
1: पहला है।
2: चाहे वो इंसानों को लेकर के हो, या वो पक्षी को लेकर के हो, या वो जानवरों को लेकर के हो,
1: हाँ जी
2: सभी को लेकर के इंसान के दिल में मानवता और इंसानियत होनी चाहिए। और ये चीज हमें अपने बच्चों को भी
1: जी
2: उनको भी सिखानी चाहिए, और उनके मन में
1: बिल्कुल
2: भी ये भाव पैदा करना चाहिए कि वो जानवरों जानवरों की भी सेवा करें, और
1: जी
2: इंसानियत जहाँ तक है हमारे बुजुर्ग हैं और जो परेशान हैं उनकी भी सेवा करें, उनके काम आए, उनकी मदद करें।
0: जी
2: क्योंकि आजकल माँ बाप कहते हैं कि इन चीजों से दूर रहो, ऐसा
0: जी नहीं,
2: देखने में
0: ऐसा
2: आता
0: नहीं है जी।
2: है।
0: वकार
2: वो
0: फरीदी जी, मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छी
2: जानवरों से
0: तरीके
2: भी,
0: से
2: पशु पक्षियों से भी
1: जी
2: थोड़ा सा
1: जी
2: बच्चों को डरा के रखते हैं,
0: जी
2: उनसे दूरी बना के रखो कि ये नुकसान पहुंचा देगा,
0: जी
2: जिससे कि बच्चों के मन में खौफ पैदा होता है, वो डर जाते हैं, वो उनकी सेवा करने के बदले उनको मारपीट करते हैं,
0: जी जी जी
2: है ना
0: जी
2: मैम।
0: तो वकार फरीदी
2: और
0: जी, जैसे मान लीजिए शुरू की अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस जैसे लोगों की सहायता करता है, तो हमारे वकार फरीदी भाई जो हैं वो क्या क्या कर चुके हैं अपने जीवन में जिससे उन्हें बड़ा अच्छा लगा लोगों की मदद करके, कोई
2: सर
0: ऐसा
2: मुझे बहुत
0: संस्मरण
2: अच्छा
0: सुनाएं।
2: लगता है, हाँ सर, ऐसा संस्मरण ये है कि जो कि मतलब इंसान परेशान है और कहीं हमें ट्रैफिक में या बसों में या ट्रेन में सफर करते हुए कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, या उनके पैसे गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, और वो हमसे मदद मांगते हैं। एक बार ऐसा हुआ, बस में मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ किसी के जो पर्स था वो चोरी हो गया था।
0: जी
2: काफी समय की बात है, उस समय फोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह भी उस समय नहीं यूज होते थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मदद मांगी कि मेरे
1: जी
2: पास पैसे नहीं है। और वो जो कंडक्टर साहब थे उनको बीच रास्ते में ही उतारने वाले थे, तो
0: जी
2: वहां मैंने कहा कि इनका टिकट मैं पैसे में दूंगा और इनका टिकट बनाया हूँ।
0: जी बहुत अच्छी आपने मदद की
2: जबकि
0: ये
2: बस में काफी लोग मौजूद थे और
0: जी
2: वो सभी लोग देख रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं होना
0: जी
2: चाहिए
0: जी
2: कि अगर 50-60 लोग बस में बैठे हुए हैं और किसी को 150 रुपए का टिकट या उनको मदद की जरूरत है, तो
0: जी
2: हम लोग सब मिलकर भी कर सकते हैं, और अगर
1: जी
2: कोई
0: जी
2: एक करना
0: जी
2: चाहे तो कोई एक भी कर
0: जी
2: सकता है।
0: वकार
2: लेकिन
0: फरीदी जी,
2: वहां पे जी
0: वही बात आ गई ना जो आज के हम समाज के प्रभाव पे जो हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि ऐसा भी बहुत कुछ हो चुका है कि लोग जो हैं लोगों से पैसे मार लेते हैं और लोगों से पैसे जो हैं हड़प लेते हैं ना, ऐसा झूठ बोल बोल के। तो आज हमारा समाज उस ओर जा रहा है जब किसी अच्छे व्यक्ति को भी ज़रूरत है तो हम मतलब शंका में
2: नहीं,
0: रहते हैं कि
2: उसकी
0: इसकी
2: मदद
0: मदद
2: नहीं हो
0: करनी
2: पाती।
0: है ना।
2: बिल्कुल
0: तो हमें समाज को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे नागरिक बने तो हमारा समाज खुद ही अच्छा हो जाएगा।
2: सही, इंसान सही है, गलत
0: जी
2: है, झूठा है या सच्चा है, ये चीज भी इंसान के चेहरे पे साफ पता चल जाती है
1: जी
2: कि वो
1: जी
2: झूठ बोल रहा है या सही।
1: हाँ जी
0: आप हमारे साथ
2: तो
0: जुड़े वकार फरीदी जी, और आपने अपने
2: फैजुर
0: विचार
2: रहमान
0: साझे
2: भाई, बहुत अच्छा लगा,
0: जी
2: और
0: जी
2: अलका जी, पारुल जी
1: पारुल
2: से भी बात
1: जी
2: करके
1: जी
2: बहुत अच्छा लगा। और बस मुझे थोड़ा

0: तो यही अफसोस रहेगा कि आज
1: कोई
0: के
1: बात नहीं, आप
0: प्रोग्राम
1: अफसोस
0: में
1: मत
0: मैं शामिल
1: कीजिए,
0: नहीं हो
1: जल्दी ही
0: पाया।
1: मुलाकात होगी यहाँ
2: जी
1: और आपको जल्दी ही बुलाया
0: हालांकि
1: जाएगा सम्मान के
0: बहुत
1: साथ।
0: अच्छा मौका था सभी लोगों से रूबरू होने का।
2: जी
1: जी,
2: जी आपने हमें कॉल किया वकार फरीदी जी, बहुत बहुत
1: बहुत
2: शुक्रिया आपका।
1: शुक्रिया आपका।
0: ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू।
2: हमारे साथ अभी जुड़े थे वकार फरीदी भाई और आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। जागरूक श्रोता कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है श्रोताओं, और अब घड़ी की सुइयां बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही हैं कि हम आपसे और कोई बात कर पाए। तो पारुल जी अपने श्रोताओं से ले लेते हैं अब विदा। श्रोताओं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप श्रोताओं के सजीव कॉल पर आधारित कार्यक्रम जागरूक श्रोता सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
1: फिल्मी संगीत के इस मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खानदान से लिया गया ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को बोल दिए थे नक्श लायलपुरी ने और संगीत से सवारा था खयाम ने। आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, कभी जिंदगी हमें इतने खूबसूरत रंग दिखाती है कि हर मौसम, हर नजारा और हर पल एक गीत सा लगने लगता है। प्यार जब दिल में हो तो फूल सिर्फ बागों में नहीं, इंसान की मुस्कान में भी खिलने लगते हैं। और इसी रंगीन एहसास के साथ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद पक्षी। आइए सुनते हैं रंग रंग के फूल खिले हैं।

0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700।

0: चार दो।
1: हाँ।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोता दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ये वाला गीत जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, ये गीत भी एक ऐसा ही एहसास है। दोस्तों, जब किसी की बातें आदत बनने लगती है और दिल चुपके से पूछ बैठता है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या प्यार का इरादा है, तो आइए सुनते हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की शानदार आवाजों में। गीत को धुन दी है कल्याण जी आनंद जी ने और बोल दिए हिंदी पर ने। आइए सुनते हैं।
3: यूं ही तुम मुझसे बात

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आराधना से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में संगीत से सवारा है एसडी बर्मन ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दो रास्ते से। आवाज है मोहम्मद रफी की, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं आनंद बख्शी। आइए सुनते हैं ये सुमधुर गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
0: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
0: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी। तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर,
0: जी
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
0: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं,
0: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी।
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी,
1: तो सबसे पहली जानकारी है पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी, समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन

0: फिर भी क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 8800-4400-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।

0: খেলো জল ভিতরঙ্গ, তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে, গাহে তব জয় গাথা, জনগণ মঙ্গলদায়ক, জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে।
1: বঙ্গাল হি নহি, উনকে গীত দেশ বিদেশ গাঁও শহর হর জগহ গায়ে আর সরাহে জাতে হ্যাঁ। ভারত কে সুপ্রসিদ্ধ জানে মানে সাহিত্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সশক্ত গীতকার আর সঙ্গীতকার হি নহি, সাহিত্য কি অনেক বিধাও মে উনহে মহারত হাসিল হ্যায়। ভে এক সুবিখ্যাত কবি, নাটককার, উপন্যাসকার, কথাকার, গদ্যকার, নিবন্ধকার, ব্যাখ্যাতা, কুশল গায়ক, চিত্রকার আর নাট্য অভিনেতা হোনে কে সাথ সাথ বিশ্ব কে এক মহান শিক্ষক হ্যায়।
2: দেশ নে মনাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি 150বি জয়ন্তী। ইস অবসর পর তেলুগু কে প্রসিদ্ধ কবি সমালোচক এন গোপী নে ঠাকুর বাড়ি কবিতা লিখি। প্রস্তুত অংশ উসি কবিতা কা হ্যায়। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रवींद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्वबोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे।

0: আমাদের শান্তি।
1: ১৯০১ में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों के सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
2: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
2: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
3: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
2: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
3: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
2: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। अप्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: श्रोताओ, मैं राखी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी के लगातार आते फोन कॉल्स हम सभी के लिए सराहनीय हैं और यही हमें उत्साहित भी करते हैं कि आप इस पड़ाव में और पल में हमारे साथ हैं। हमें बेहद खुशी होती है कि आप सभी हमारे कार्यक्रम को बड़े चाव से सुनते हैं और कॉल और मैसेज के माध्यम से जुड़े रहते हैं। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। उससे पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
0: श्रोताओ, कई सालों से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में हम अपने उन श्रोताओं के नाम आपसे साझा करेंगे, इसलिए बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं श्रोताओ आज के कार्यक्रम की ओर, जिसका शीर्षक है सम्मान की आवाज। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं, एक ऐसी चीज भी है जो जीवन को अर्थ देती है, सम्मान। लेकिन सच कहें, आज भी दुनिया के अनेक कोनों में औरत का सम्मान उसके हिस्से में उतनी आसानी से नहीं आता। वह जन्म लेती है तो उसके सपनों पर सवाल उठते हैं, वह बड़ी होती है तो उसके कदमों पर पहरे बिठा दिए जाते हैं, वह हक मांगे तो उसे जिद्दी कह दिया जाता है और यदि वह चुप रहे तो धीरे धीरे उसके अंदर की रोशनी बुझने लगती है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, ये कहानी पूरी दुनिया की महिलाओं की है। हर जगह एक सच्चाई गूंजती है और जब उठती है तभी समाज उठता है। यूनाइटेड नेशन CEDAW जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते दुनिया को यही याद दिलाते हैं कि स्त्री अधिकार मानव अधिकार है और बदलाव की आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है तब जब कोई स्त्री चुप रहना छोड़ देती है। हमारे भारत में भी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अनेक सुविधाएं दी हैं। 1090 महिला हेल्पलाइन, 181

0: महिला सहायता केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला स्वरोजगार योजना, लाडली बहन योजना। लेकिन इन सब का असली मतलब तभी बनता है जब महिला खुद कहे कि मैं अब डर के नहीं जीऊंगी। और बदलाव तब और तेजी से आता है जब एक महिला बोलती है और दूसरी उसका हाथ पकड़ती है और तीसरी उसके साथ दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही तीन महिलाओं की है, तीन जिंदगियां, तीन संघर्ष, तीन आवाजें जो मिलकर एक चीख को बदल देती हैं, एक शक्तिशाली हुंकार में। एक लड़की जो सपने लेकर आगे बढ़ना चाहती है लेकिन समाज की रुकावटें उसके रास्ते में हैं। एक महिला जो दूसरों को रास्ता दिखाती है लेकिन उसकी भी दुनिया आसान नहीं। और एक औरत जो सालों की चुप्पी से टूट चुकी है लेकिन अब उठने का हौसला जुटाती है। और इस कहानी में एक पुरुष भी है जो शुरू में अपनी सोच का कैदी है लेकिन बदलाव की ताकत को देख स्वीकार करता है कि सम्मान सिर्फ महिला का नहीं मानवता का मुद्दा है। यह नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक संदेश है, एक दर्पण है जिससे हम समाज की असल तस्वीर देखते हैं। आज आप सुनेंगे सम्मान की आवाज, एक ऐसी आवाज जो ना झुकेगी, ना टूटेगी, ना थकेगी, जब तक हर महिला अपने हक, अपनी गरिमा, अपने अस्तित्व का सम्मान ना पाले।
1: दीदी, मैंने बीए खत्म कर लिया पर नौकरी के लिए शहर जाना चाहती हूँ। घर वाले कहते हैं लड़की की क्या नौकरी, घर पर ही रहो।
2: सीमा, सम्मान वहीं से शुरू होता है जहाँ तुम अपनी बात मजबूती से रखती हो। अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगी तो दुनिया तुम्हें क्या पहचान देगी। आज सरकार भी लड़कियों के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीमें चला रही है, लाडली बहन योजना, स्वयं रोजगार योजना, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, सब इसलिए हैं कि लड़कियां आगे बढ़े।
3: काश ये योजनाएं मेरे घर के हाल भी बदल पाते। तुम लोगों की बातें सुनकर अच्छा लगता है पर हर घर में इतना आसान नहीं होता। हम जैसी औरतें तो बोल भी नहीं सकती, और बोले भी तो कहा जाता है औरत होकर जुबान मत चलाओ। और तो और पति भी शराब पीकर मारा पीटी करते हैं। मैं आवाज उठाऊं तो कहते हैं चुप रह, औरत हो।
1: दीदी, 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है और 181 181 महिला सहायता केंद्र है। आप अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकती हो।
2: और तो और सरकारी महिला सहायता केंद्र में तुम्हें कानूनी मदद भी मुफ्त मिलेगी।
3: डर लगता है समाज क्या कहेगा।
1: दीदी, समाज कभी नहीं बदलेगा अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो।
4: सीमा, कल तुमको मैंने से घूमने फिरने में जाते देखा था, ये ठीक नहीं है।
1: रवि, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है।
4: तुम लड़की हो, गांव के लोग बातें बनाते हैं, लड़कियों की इज्जत ऐसे घूमने फिरने में नहीं होती है।
1: रवि, सम्मान किसी को लड़का या लड़की देखकर नहीं मिलता है। अगर सीमा पढ़ाई के लिए गई है तो इसमें गलत क्या है। इज्जत कपड़ों और साथ में चलने वालों से नहीं होती है, सोच से होती है।
4: लोग मुझे ताना मारेंगे, सीमा गांव की मर्यादा तोड़ रही है, पर तुम सुनती ही नहीं हो। गांव के रीति रिवाज हैं, इसे बदलना आसान नहीं है।
1: ये तुम्हारा हक नहीं है पढ़ाई के लिए मैं कहाँ जाऊँ। और रीतियाँ तब बदलती हैं जब कोई खड़ा होता है। हम सब औरतें हमेशा डर के साए में नहीं जी सकती हैं।
2: रवि, सरकार ने महिला हेल्पलाइन 1090 क्यों बनाई है, ताकि ऐसी बदतमीजी और दबाव से महिलाएं सुरक्षित रह सके।
3: सीमा जैसी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, पीछा करना और दबाव डालना, ये सब अपराध है, ईव टीजिंग के केस बनते हैं।
4: तुम लोग मुझे ही गलत बना रहे हो।
3: हर दिन ये सब झेलते झेलते मेरा आत्मसम्मान टूटता जा रहा है। ये भी तो सम्मान का हनन है ना, अब सहा नहीं जाता। रोज की मारपीट, गाली, धमकी, मेरी

0: इज्जत मेरे घर में है ही नहीं।
1: दीदी ये घरेलू हिंसा है। महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इससे आपको कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
2: आज ही हम 181 पर कॉल करते हैं और वन स्टॉप सेंटर में आपको काउंसलिंग, मेडिकल और लीगल मदद मुफ्त मिलेगी।
0: क्या सच में सरकार मदद करेगी? दीदी सब सहने का समय खत्म। अब आप चाहो तो हम पंचायत में भी शिकायत कर सकते हैं।
1: दीदी कानून और पंचायत आपके साथ है, बस एक कदम आपको उठाना होगा।
0: पंचायत? लोग क्या कहेंगे?
2: लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, पर अगर तुम चुप रही ना तो तुम्हारा दर्द कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा।
1: सही कहा गौरी ने, हम सब साथ हैं।
3: बेटा घर की बातें बाहर लाना ठीक नहीं, औरतें ऐसे फैसले नहीं लेती।
2: औरतें इंसान हैं, सामान नहीं हैं। सम्मान चाहिए, खैरात नहीं। और अगर आप हमारा साथ नहीं देते हो ना तो हम सरकार से मदद ले लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि सरकार ने भी बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं जो कि महिलाओं के हित के लिए हैं। सरकार ने महिला अधिकार के लिए कानून बनाए हैं, महिला हेल्पलाइन, घरेलू हिंसा अधिनियम, वन स्टॉप सेंटर, ये सब इसलिए हैं कि औरतों को सुरक्षा मिल सके, ना कि वे चुप रहें।
1: औरतें अगर सम्मान मांगे तो उसे विद्रोही कहा जाता है, पर पुरुष गलत करें तो घर की बात कहकर ढक दिया जाता है। अगर कोई औरत सम्मान के लिए आवाज उठाती है तो वो नियम नहीं तोड़ती है, बल्कि समाज के पुराने जंजीरों को तोड़ती है।
4: सीमा तुम सही कह रही थी। सीमा आज मुझे समझ आया मैं ही गलत था। सम्मान किसी को दिया नहीं जाता, कमाया नहीं जाता, बस स्वीकार किया जाता है। मैंने तुम्हें अपनी सोच से परेशान किया, दबाव डालकर गलत किया, मुझे माफ कर दो।
1: रवि गलतियां सबसे होती है, बात यह है कि उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत कितनों में होती है। अपनी सोच बदलना ही सबसे बड़ी बहादुरी है।
4: मुझे भी बदलना है। मैं तुम्हारे फैसलों की इज्जत करूंगा और गांव में महिलाओं के सम्मान की बात आगे बढ़ाऊंगा। सुरक्षा योजनाएं, हेल्पलाइन, सबका प्रचार करूंगा।
2: आज का दिन साबित करता है जब औरतें साथ खड़ी होती है तो उनकी आवाज दब नहीं सकती। जब सरकार सुविधाएं देती है और महिलाएं मिलकर उनका उपयोग करती है तो डर टूटता है और सम्मान की नींव बनती है।
0: अब मैं भी अपने सम्मान के लिए बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चों का भविष्य डर में नहीं, सम्मान में बनाऊंगी।
1: सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सम्मान कभी दिया नहीं जाता, उसे छीनना नहीं बस पहचानना पड़ता है।
5: तो दोस्तों आज आपने तीन महिलाओं की कहानी सुनी, पर सच कहें ये कहानी सिर्फ तीन चेहरों की नहीं थी, ये कहानी उन लाखों महिलाओं की थी जो दुनिया के हर कोने में अपने हक, अपनी जगह और अपने सम्मान के लिए खड़ी है। सम्मान कोई इनाम नहीं होता कि किसी दिन किसी को दिया जाए। सम्मान एक हक है जिसके साथ हर स्त्री जन्म लेती है, लेकिन समाज बदलता नहीं, उसे बदलना पड़ता है। और बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक स्त्री कहती है अब बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज सीमा ने अपने सपनों की रक्षा की, गौरी ने सच का साथ दिया और लक्ष्मी ने सालों की चुप्पी तोड़ी, और रवि उसने साबित किया कि पुरुष बदले तो समाज बदलता है। ये नाटक सिर्फ एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। एक शुरुआत नई सोच की, नई आवाज की और नई दुनिया की, जहां स्त्री को डर नहीं सम्मान मिले। महिलाएं चाहे किसी भी देश की हो, किसी भी भाषा की, एक सच्चाई सब जगह बराबर है। जब महिला महफूज है तभी समाज सभ्य है। इसलिए आज आपसे एक निवेदन है, अपने घर से, अपने मोहल्ले से और अपनी सोच से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सम्मान तभी गूंजता है जब हर कोई उसके साथ खड़ा हो। आज की इस कहानी का संदेश वही है जो दुनिया बरसों से कह रही है, महिला की गरिमा मानवता की गरिमा है। आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी से नहीं आवाजों से इतिहास बदला है। श्रोता, आशा करती हूँ आपको आज का हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े सवाल और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। हमारा फोन नंबर और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है
6: 8527449955। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
5: इसी के साथ हमारा पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे कुछ श्रोताओं के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: भोला शंकर जी जो कि बूंदी के रहने वाले हैं, फसवान जी जो कि कोटपुतली के रहने वाले हैं, घनश्याम जी कोटपुतली से और सत्यनारायण जी जयपुर से। श्रोता, आपका प्रेम और स्नेह हमसे यूं ही बनाए रखिए। अब इसी के साथ मैं राखी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित योगराज नायक का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग, जिसकी विलंबित अदा चौताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित योगराज नायक का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। इसकी विलंबित अदा चौताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म विकी डोनर से। गायक कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, संगीत निर्देशन और शब्द रचना आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली की है। आइए सुनते हैं वो कौन सा गीत है।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाज है आतिफ असलम की, संगीत से सवारा है प्रीतम ने और गीतकार हैं आशीष पांडे।

0: Shining sun like a pearl upon the ocean, come and feel me.
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म आशिकी 2 से। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशक हैं और गीतकार हैं मिथुन।

श्रोता दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम जो हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हो रहे हैं, फिल्मी गीतों का और संगीत से भरपूर कार्यक्रम आप जो सुन रहे हैं मिड डे मेलोडी, बहुत पसंद आ रहा होगा। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप ये कार्यक्रम इसी प्रकार प्यार के साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म सिंग इज किंग से। युगल आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की, संगीत से सवारा है प्रीतम ने और गीत को बोल दिए हैं मयूर पुरी ने। आइए सुनते हैं ये सुमधुर गीत।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यंगिस्तान से लिया गया ये गीत। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीत दिया है जीत गांगुली ने और गीत को बोल दी है कोसर मुनीर ने।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। आवाज है राहत फतेह अली खान की, संगीत दिया है सोहेल सेन ने और गीत लिखा है इशाद कामिल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी

महासचिव तोलाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तक मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वजीर आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
1: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जलभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
2: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
0: वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जरायम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज्जम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्ट पेड मोड में चलाने के अहकाम जारी किए। वजीर तवानाई ए के शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्ट पेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन के बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायत के तस्फीये के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूसी कैंप और इमदादी मराकिज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 15,75,760 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेड क्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेड क्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत, खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है।

कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को राम राम। मैं नीतू अपनी सभी बहनों का थारे पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में खूब स्वागत करूं। भी कैसी है मेरी बहनें? अभी सबसे पहले तो मेरी बहनों को भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने की सभी श्रोता बहनों को ढेर सारी बधाई। बहनों, आज आकाशवाणी नजीबाबाद की ओर से एक वाकेथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी ने कदम से कदम मिलाकर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। और हमारी सभी श्रोता बहनों का भाई ये प्यार है कि रेडियो का ये सफर पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ता जा रहा। बहनों, इसी प्रकार आप हमेशा हम सबसे जुड़े रहो और हमारा सफर खूब आगे तक ये बढ़ता जाएगा। और अब बताओ बहनों पहले कि मेरी जो थारे घर परिवार आस पास मोहल्ले पड़ोस भी सब राजी खुशी? ए भाई, आज तो मेरी बहनें सोच रही होंगी कि मैं बड़ी सबके बारे में पूछताछ कर रही। ए बहनों, पूछताछ क्या भाई, हम तो यो चाहे कि सब खुश हों, स्वस्थ रहें। भाई, हमें अपने साथ साथ बाकी सबका भी तो अपने आस पास अपनी जानकारी अपने रिश्तेदार घर परिवार सबके बारे में सोचना पड़े। भाई, जरूरतमंद की हमें मदद भी करनी चाहिए, सबके सबके बारे में सोचना भी चाहिए। बहनों, असहाय पीड़ित लोगों की मदद करना ही तो इंसानियत होवे। भाई, बिना भेदभाव पीड़ितों की सेवा करना मानवता हो। ऐसे विचार बहनों, ऐसे जो विचार थे ना, वो थे बहनों जीन हेनरी ड्यूनेंट के। उनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्म दिवस को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जावे। तो बहनों, आज हम थारे से ढेर सारी बातें करेंगे, आज का क्रम भी सुनवाएंगे। आज का क्रम होगा माटी मारे देश की। बहनों, कार्यक्रम में ना जुड़े रहना। और अभी पहले सुने यो जरूरी संदेश।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: संदेश के बाद वापस मैं अपनी बहनों का कार्यक्रम में स्वागत करूं। बहनों, हेनरी ड्यूनेंट के प्रयासों से 1864 में जेनेवा समझौते के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस मूवमेंट की स्थापना हुई थी। बहनों, हेनरी ड्यूनेंट को पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। रेड क्रॉस जो है ना बहनों, ये एक स्वयंसेवी संस्था हो गए। ये देश के किसी भी कोने में प्राकृतिक या मानवीय आपदा के शिकार लोगों को बचाने, राहत देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। इस तरह की संस्थाओं में जो लोग हों ना बहनों, उनसे हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्तमान समय और परिस्थितियों में बहनों, रेड क्रॉस की भूमिका केवल युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों या युद्ध करने वाले युद्ध बंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उचित व्यवहार, उनका जो है उचित उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाना, यो ही ना रह गया खाली, बल्कि उनके जो दायित्व का दायरा ना, वो तो और अधिक बढ़ गया। बहनों, पिछले कुछ सालों

0: आई भयंकर बाढ़, प्राकृतिक आपदा, सुनामी, तूफानों में रेड क्रॉस ने जो भूमिका निभाई ना, उससे तो उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। दुनिया भरे में हर साल आज का दिन ना रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जावे। और जहां तक बहनों भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बात है ना, ये 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई थी। बहनों दुनिया भरे में अपने शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में अपने कर्मठ, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ सैनिकों के माध्यम से इसने अपनी एक अलग ही पहचान और छवि बनाई है। भाई बहनों वैसे भी देखो हर किसी की मदद करके चलना चाहिए, इंसान को सबके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जावे तो हमेशा सभी को तत्पर रहना चाहिए, है कि ना है? और बहनों अब हम चलेंगे हमारे आज के क्रम, और आज का जो हमारा क्रम है वो का है माटी मारे देश की।
1: माटी मारे

बहनों, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में ना जब गर्मी अपने चरम पे होवे, हमारे किसान जो हमें वो गेहूं की कटाई में व्यस्त हो जावे और हमारी बहुत सी ग्रामीण बहनें जो हमें ना वो तो बराबर का हाथ बटावे। भाई बहनें कोई कम है क्या किसी से? औरत मर्दों से कम ना आए होवे, सारे काम घर के भी बाहर के भी सारे काम संभाले। बहनों देश भर में खेतों में सोने जैसी गेहूं की बालियां पक चुकी होवे और यो जो समय ना मेहनत का, उत्साह का और खुशहाली का होवे, भाई अनाज जो है ऐसी थोड़ी पैदा हो जाए बहनों। और जब वो रंग लावे है ना फसल, तो उस समय बड़ी खुशी हो वे, बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग। तो बहनों इसी उमंग के साथ सुने यो मधुर गीत, यो हमारे जो अन्नदाता के मेहनत के जज्बे को समर्पित होवे।

ना वो दिन रात लगती हैं तब जाके कहीं हमें अनाज मिले। अच्छा बहनों का हो बे ना, जैसे जब मिलके सखियों के साथ काम कर रहे हैं तो भारी से भारी काम भी जो हो बे ना वो भी फिर इतना

थोड़ा घर से टाइम से निकल जाओ और जरा सी देर हो जाएगी कहीं को। अरे वही वाली बात है बहनों, हमेशा जान की पहले परवाह करनी चाहिए, अपनी भी और सामने वाले की भी। और बहनों देखो, गर्मी चल रही है इस समय, सबसे जरूरी कहा हुआ है ऐसे में जल। अब हमारे पास तो देखो घर में पानी की उपलब्ध, जो पानी की उपलब्धता हो गए इसके समस्त साधन हो गए, पर पहले लोग कुओं तालाबों इस पर जाया करें थे। और बहनों अभी भी कुछ जगह महिलाएं घर से बहुत दूर जाके पानी घड़ों में बड़े बड़े बर्तनों में भर भर के लावे। बहनों बहुत सी जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पानी आसानी से नहीं मिलता, तो पानी जो है ना बहनों बचा के चलना चाहिए, कह में बूंद बूंद से सागर भर है। तो बहनों पानी को जरा सी बर्बादी ना करो, कहीं खुला नल देखो, कुछ हो सब बंद करके चलने चाहिए। और बहनों इसीलिए अब सुने हम पानी पे, एक जल पे ही बहुत प्यारा सा एक लोकगीत, कैसे हंसती हंसती सारी सखियां जल भर के ला रही हैं।

सच में बहनों, कोयल की मीठी मीठी कूक के बिना तो बगिया सूनी होवे। बहनों, हमारे देश की जो माटी होवे ना, ये हमें कितना कुछ देवे। मौसम के हिसाब से खाने पीने की भी कितनी वस्तु हमें मिले, और मौसम के हिसाब से ही जो है बागों में पक्षी चहचहावे। भाई, कोयल की मीठी मीठी कूक होवे तभी बगिया खिले। और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हुए ना फिर से सुने एक प्यारा सा लोकगीत।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी लोक गीतों पर आधारित आज का क्रम माटी मारे देश की।
1: माटी मारे देश।

भाई बहनों, थारे से बात करते करते मेरा तो मन भरता ना है, का करूं। पर जो समय है ना, अभी आगे बढ़ने की इजाजत ना आए दे रिया। तो बहनों, हमें लिख के बताना आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है, कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन 2467763। व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। एक बार फिर से 9457078288। और बहनों, हमारी ईमेल आईडी है akashvaninajibabad@gmail.com। इसी के साथ अपनी बहन नीतू को दो अनुमति। राम राम बहनों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरीश सिंह मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। आइए सुनते हैं पहला लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हरीश सिंह मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आइए आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज शाम 5:15 पर युवा दोस्तों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आज आप सुनेंगे बूझो तो जाने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ

0: की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज

0: विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
5: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
6: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
3: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचक

0: अंक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है गीत संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। श्रोता दोस्तों, आज आपके साथ हूं मैं, आपकी साथी पारुल गोयल। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, उस प्रभु के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि तेरे दर पर जो भी आया खाली हाथ कब लौटा है। कर्म की बारिश हो ऐसी, दिल का हर कोना महका है। तो आइए सुनते हैं फिल्म वीर ज़ारा से ली गई ये खूबसूरत कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा से ली गई ये खूबसूरत कव्वाली। युगल आवाज़ें थी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की, संगीत से सवारा था मदन मोहन ने और कव्वाली के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। आइए अब सुनते हैं एक ज़रूरी संदेश।

नाम तेरा लेते लेते आँखों में नूर उतर आए, नाम तेरा लेते लेते आँखों में नूर उतर आए, झोलियाँ भर जाएं, तेरी याद की लौ जलती रहे, हर अंधेरा खुद बिखर जाए। तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाज़ है अदनान सामी की, संगीत से सवारा है प्रीतम ने और शब्द रचना है कौसर मुनीर की।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का?
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
5: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम कव्वाली फिल्म हेना से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, सुरेश बाडेकर और साथियों की। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। हमारी दूसरी सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे नित्य चर्चाएं करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में। तो आज इसी क्रम में हम आपसे जिक्र करेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान के विषय में। समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो पूर्व विद्यालय से लेकर कक्षा 12वीं तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती है। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है। ये योजना न केवल बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप भी है। इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी

कक्षा वातावरण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। इस योजना को 5 वर्षों के लिए यानी 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इसमें कहा गया है कि 2030 तक यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लड़के और लड़कियां मुफ्त समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें, जिसमें प्रासंगिक और प्रभावी शिक्षण परिणाम प्राप्त हों। इसके अलावा 2030 तक शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना और विकलांग व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों और कमजोर परिस्थिति में रहने वाले बच्चों सहित कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो ये तो बात हुई समग्र शिक्षा अभियान के विषय में, और अब आइए बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के विषय में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं पर केंद्रित है और रोजगार प्राप्ति के लिए रोजगार के बाद उनकी निगरानी, उन्हें बनाए रखने और करियर में प्रगति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को बेहतर भविष्य सुरक्षित करने में सहायता करने वाला एक व्यापक तंत्र स्थापित करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का लक्ष्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना, उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम लाभार्थियों को कृषि, निर्माण, खुदरा, आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण को उद्योग संबंधी बनाया गया है और इसका उद्देश्य लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। यह कार्यक्रम लाभार्थियों को संभावित नियोक्ताओं से जोड़कर रोजगार सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम नौकरी की तलाश के दौरान लाभार्थियों को रिज्यूमे लिखने और साक्षात्कार की तैयारी जैसी सहायता भी प्रदान करता है। यह कार्यक्रम लाभार्थियों को उनकी नई नौकरियों में समायोजित होने में सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में मार्गदर्शन, परामर्श और संसाधनों तक पहुंच शामिल हो सकती है। यह कार्यक्रम लाभार्थियों को उनके करियर में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर शामिल हो सकते हैं। ये कार्यक्रम लाभार्थियों को उच्च वेतन वाली नौकरियों में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन करता है। इस प्रोत्साहन का उद्देश्य लाभार्थियों को उनकी कौशल और अनुभव के अनुरूप नौकरियों में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का लक्षित समूह 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं। महिला उम्मीदवारों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, मानव तस्करी के शिकार, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति आदि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी। तो ये तो बात हुई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के विषय में, और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर शाम के 5:10 होने को हैं। प्रस्तुत जानकारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम में युवावाणी सुनिएगा आज शाम 5:15 पर। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर। किसान भाइयों की खेती और पशुपालन संबंधित पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री सुनवाया जाएगा। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर एडवोकेट मुकेश कुमार त्यागी से आलोक कुमार की बातचीत का विषय होगा रिट याचिका और आम आदमी पर उसका प्रभाव। छाया गीत होंगे शाम 6:55 पर। आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत में विविध कलाकारों के गाए नाथ सुनिएगा। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 8 बजे और आज रात्रि 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्मी गीतों का फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद हम आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 9:30 पर और आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात के हम सफर।

ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और अब एक नजर कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुनिएगा कल सवेरे 6:05 पर। कल सवेरे 6:45 पर काव्य धाराक्रम में श्री सुधीर कुमार शर्मा का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सवेरे 7:31 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर अपर्णा श्रीवास्तव के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। बात आसपास की, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सवेरे 9:50 पर। कल सवेरे 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुहाना सफर। गोल्डन हिट्स होंगे कल सवेरे 8:45 पर और कल सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम जिंदगी लाइव का समय रहेगा कल दोपहर 12:05 पर। कल दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर बालेश्वर और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। एक ही गीतकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:00। कल शाम 5:15 पर होगा युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर लोकगीतों और रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी सुनवाया जाएगा।

विविधा क्रम में कल शाम 6:45 पर डॉक्टर सुष्मिता शर्मा की वार्ता का विषय होगा समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका। छायागीत होंगे कल शाम 6:55 पर। कल शाम 7:32 पर सुगम संगीत में मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनिएगा कल रात्रि 8:00 और कल रात्रि 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:15 होने को है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: आकाशवाणी के 90 साल मुबारक हो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल मुबारक हो। हाँ अब ठीक है।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, तो मैं हूँ आपके रेडियो पार्टनर मरियम जैदी,
0: लाइक सनफ्लावर एनर्जी। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ जैदी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी।
1: तो देखिए एनर्जी तो बनी रहेगी, हल्की हल्की शाम होगी और धीमी धीमी गजलें, ऊपर से ये 90 साल का सफर, बाय गॉड रंग ही जम गया है ना।
0: है ना?
1: और आपने देखी हमारी ये वॉकथॉन, ये समझे जोश और मोहब्बत के गमले सज रहे थे सड़कों पर। आहा हा, अगर मिस कर दिया तो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम है, देख लीजिए।
0: देखिए ध्यान आपका पूरा पूरा रख गया है, चाहे इवेंट हो या प्रोग्राम, तो ऐसे ही राष्ट्रपति भी पूरे देश का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं।
1: और क्या, सोचो देश में कार्यवाही की जरूरत है और उस वक्त में संसद सत्र भी नहीं चल रहे।
0: तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, मगर

0: मंत्री परिषद की सलाह पर।
1: जी, तो मोटी मोटी बात ये है कि हमने आपको बता दिया कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता तब राष्ट्रपति एक नियम के तहत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कानून है।
0: तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की किस अनुच्छेद में है?
1: सवाल बूझो तो जाने का है, और जवाब आपको हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद में देना है।
0: तो बस जवाब देते जाइए, और हाँ, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं, ये बात सोचकर जरा मुस्कुराइए। मुस्कुरा रहे हैं आप? वेरी गुड, गुड जॉब।
1: तो गुनगुनाइए भी ये शाम गजलों के नाम।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: अरे ओ चुनमुन, ओ ओ ओ, ये तो क्या कर रही है?
3: मैं बैठ के ब्लैक कॉफी पी रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मैं समोसा खा रही हूँ यार।
2: तो समोसे की पापड़ी ही क्यों खा रही है?
3: अरे यार, वो क्या है ना कि डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से मना किया है,
2: तो
3: इसलिए सिर्फ बाहर का छिलका फेंक कर अंदर का मसाला खा रही हूँ, और क्या। अब डॉक्टर साहब की बात भी तो माननी पड़ती है ना।
2: चुनमुन।
1: जी हाँ, मजा आ गया।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो चलो यूसुफा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
4: जी जी बिल्कुल मरियम, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है।
3: तो यूसुफा, हम अपने दोस्तों से खास जानकारी साझा करने जा रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में, है ना?
4: जी, और हर साल 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन मानवता, सेवा और मदद की जो भावना होती है ना, उसको समर्पित है।
3: और इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है।
4: जी बिल्कुल सही बात मरियम, तुमने जो ये बात कही ना, वाकई में 100% ठीक है। जब कहीं बार भूकंप, युद्ध या कोई भी बीमारी फैलती है, कोई भी ऐसी परेशानी फैलती है, तब क्या होता है? तब सिर्फ हमारे पास होता है रेड क्रॉस संस्था के लोगों की मदद।
3: बिल्कुल यूसुफा। अच्छा, तो मुझे तुम ये बताओ कि रेड क्रॉस की शुरुआत किसने की थी?
4: ओफ, यही तो बताने वाली थी, रुको तो जरा, समझो भी हमारी बात को। तो मैं कहने वाली थी कि रेड क्रॉस की शुरुआत हेनरी ड्यूनॉट नाम के एक शख्स ने की थी, और उन्होंने युद्ध में घायल लोगों की हालत देखी और सोचा कि बिना भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद की जाए। और इसी सोच से शुरू हुआ रेड क्रॉस आंदोलन, और आज ये संस्था दुनिया के कई देशों में काम कर रही है और लाखों लोगों की मदद कर रही है।
3: तो दोस्तों, रेड क्रॉस सिर्फ आपदा यानी डिजास्टर के वक्त ही नहीं, बल्कि रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड, और लोगों को जागरूक करने का काम भी करती है।
4: और दोस्तों, सबसे खास बात ये है कि रेड क्रॉस का संदेश जो है वो मैसेज है, ये बहुत ही सिंपल है कि जहां इंसानियत की जरूरत है वहां मदद के लिए आगे बढ़ो।
3: तो आइए दोस्तों, इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हम भी संकल्प लेते हैं कि जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और समाज में प्यार और मानवता का संदेश फैलाएंगे,
4: क्योंकि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी के लिए खुशहाली का बायस बन सकती है।
3: बिल्कुल यूसुफा, और अब क्यों ना इसी खुशी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, है ना?
4: तो तुम क्या कहना चाहती हो?
3: मैं कहना चाहती हूँ कि माहौल को थोड़ा बदला जाए।
4: ओहो, माहौल को थोड़ा बदला जाए, यू मीन कि हमें हमारी अगली गजल पेश कर देनी चाहिए अपने दोस्तों के लिए?
3: बिल्कुल पेश कर देनी चाहिए।
4: तो फिर तो ये खूबसूरत सी गजल आप जरूर सुने, और सुन के जरा अपने कानों में ये समझिए कि आखिर इसका जायका आपको कैसा लगा।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: आय हाय हाय, मेरे तो पैर इतने दुख रहे हैं भाई, क्या हो गया? और ऊपर से इतनी भूख लगी है, काम करके तो भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। अरे सुनती हो क्या?
2: जी कहिए।
3: अरे कहना सुनना छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज खाने में क्या है?
2: खाने में जो कल था।
3: अरे पर खाने में तो कल कुछ था ही नहीं।
2: तो आज भी वही है।
3: हे प्रभु, ये कैसी औरत है?
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: हमारी सास सोब में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। और ये खुशबू कब महकती है? जब इंसानियत का ताल्लुक इंसानियत से होता है। और इंसानियत का ताल्लुक कब इंसानियत से होता है? जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये मदद कौन करता है? ये करते हैं रेड क्रॉस संस्था के लोग, जो कभी ब्लड मिलने पर भी अपना ब्लड निकाल कर एकदम आसानी से दे देते हैं, है ना? और यह जानकारी हमने आपको दे दी। इसी के साथ एक और जानकारी का दिन भी है आज, और वो समझ रही हूँ मरियम क्या हो सकता है?
3: बिल्कुल योसिफा, आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस।
2: और इस दिवस के बारे में हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे प्लीज?
3: क्यों नहीं भाई, इतना खास दिन है तो डिटेल्स भी खास ही होनी चाहिए ना। तो देखो इस वक्त मुझे तो पता है, और जो हमारे सभी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उन्हें बता देते हैं कि आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो हर साल 8 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है।
2: दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि थैलेसीमिया आखिर क्या है? तो हमने आपसे भी कहा था कि जब इंसानियत का रिश्ता इंसानियत से जुड़ता है तो एक रिश्ता होता है ब्लड का, है ना? असल में होता ये है इस बीमारी में, जिसमें शरीर में खून सही तरीके से बन नहीं पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बीमार जो होता है उसे बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है।
3: और ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, और ये पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंच सकती है, तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों
2: बात करें इसके सिम्टम्स की, तो ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि इलाज तो जब ही करेंगे ना जब हमें किसी चीज का सिम्टम पता होगा। तो दोस्तों जैसे कि ज्यादा थकान होना, कमजोरी महसूस होना, इसमें बार बार क्या होता है आपको बेहोश से हो जाते हैं आप,
3: और यूसुफा हॉस्पिटल भी तो जाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों सही इलाज और समय पर जांच और फैमिली के सपोर्ट से मरीज नॉर्मल जिंदगी भी जी सकते हैं।
2: और सबसे जरूरी बात ये कि थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी होता है। आपका एक यूनिट खून किसी के बच्चे की जान बचा सकता है।
3: बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसे मरीजों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, बल्कि उनका हौसला बढ़ाना चाहिए दोस्तों,
2: क्योंकि प्यार साथ और हिम्मत भी दवाई की तरह काम करती है, क्योंकि छोटे

0: छोटी सी जागरूकता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।
1: तो दोस्तों, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों की मदद करते रहें।
0: और इस मैसेज के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है यंग अचीवर्स। तो आइए सुनते हैं केशव से शिवानी की बातचीत।
2: यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेगमेंट यंग अचीवर्स और मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी साथी शिवानी। दोस्तों, आज का यंग अचीवर्स बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में अपनी जगह बनाई है। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, IIT की लाइफ का सच और वो सारी बातें जो हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं एक बहुत ही प्यारे युवा साथी का। स्वागत है आपका।
3: हेलो, माई सेल्फ केशव कुमार। आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज नियर कोतवाली, हसन अलीपुर हीरा, जो कि एक कोतवाली कस्बे से जुड़ा हुआ है।
2: तो केशव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवाणी प्रोग्राम में। केशव, आप हमें अपने बारे में थोड़ा और बताइए, जिससे हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं वो आपसे कनेक्ट हो सके।
3: मैं केशव कुमार हूँ। मेरी जो 12th हुई है वो बहुत ही नॉर्मल CBSE स्कूल से हुई है, हालांकि ज्यादा हाई प्रोफाइल स्कूल नहीं है। बट आफ्टर जो 12th के बाद, मतलब 12th कम्प्लीट करने के बाद, हमें रुझाव हुआ कि हमें BTech करना है कंप्यूटर साइंस से। बट एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, एक अच्छी दिशा ना होने की वजह से, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि करना कैसे और कहाँ से है। तो मेरे ही बहुत ही प्रिय मेरे चाचा मानसिंह चाचा, जिन्होंने मुझे गाइड किया, समझाया और बताया कि अगर मुझे इस चीज़ के लिए करना ही है तो मैं क्यों ना प्राइवेट कॉलेज को छोड़ करके गवर्नमेंट से करूँ। एक एग्ज़ाम जो उस चीज़ के लिए होता है, जिसको हम JEE मेंस भी बोलते हैं, वो दिलवाया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। उसमें हर साल करीब करीब 15 लाख बच्चे अपीयर करते हैं। तो उसमें हमें बताया गया कि उसमें हम अप्लाई करें जिसमें हमें भी फ़ायदा हो आगे चलकर। तो इस वजह से हमने वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम दिए, सिलेक्ट हुए और आज हम आपके सामने हैं एक IITian के रूप में।
2: जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। केशव, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके स्कूल से लेकर IIT तक का सफर।
3: स्कूल से लेकर IIT तक का सफर कुछ ऐसा रहा, हमारे कोविड के बाद का टाइम था तो इतना कुछ ज्यादा हमने फोकस नहीं कर पाए, तो वो नॉर्मल 80+ मार्क्स थे, 80%। तो फिर उसके बाद हमने 11th किया। 11th में इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा नहीं, वो थ्रू बिकॉज ऑफ आई थिंक कोविड इश्यूज थे। तो थोड़ा उस जब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया उस टाइम पे, पढ़ाई नहीं हो पाई ऑनलाइन इतना ज़्यादा, वो आपको पता है ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें अटैच नहीं हो पाती इतना प्रॉपरली जितना फेस टू फेस हो पाती हैं। तो उसके बाद हमारे 12th पर भी इस चीज़ का असर हुआ। 12th में भी हमारे करीब करीब 80 अराउंड ही मार्क्स आ पाए। तो उस चीज़ को देखते हुए हम, यही कोशिश थी कि हमें BTech तो करना ही है पहले से ही। 10th के बाद से हमारा डिसाइड था कि BTech करना है और एक CS प्लेटफॉर्म से करना है। तो फर्स्ट ईयर जो हमने मतलब तैयारी की उस IIT की, तो वो इतना अच्छा नहीं गया हमारा। एग्ज़ाम दिए हमने पेरिंग में, वो इतने अच्छे नहीं गए। हम मेंस में सेलेक्ट हो गए लेकिन एडवांस में हम फेल हो गए। तो उसके बाद जब हमने फिर से मानसिंह चाचा से कांटेक्ट किया, उनसे पूछा, उन्होंने हमें फिर मोटिवेट किया कि अगर आप में पोटेंशियल है तो एक बार और आप ट्राई करो, कोशिश करो, अगर हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि फेलियर तो एक ऐसी चीज़ है जो हर कदम पर जिंदगी में आना ही आना है। अगर उसे सीख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाली चीज़ों में भी हम बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे और मोस्ट पॉसिबली ये भी हो सकता है कि हम उनसे जीत जाएं।
2: बिल्कुल सही कहा। और सबसे अच्छी बात पता है केशव ये लगी कि आपको 10th में ही पता था कि मुझे करना क्या है ना।
3: जी बिल्कुल।
2: आपका एम जो है वो बहुत क्लियर था कि मुझे कहाँ जाना है।
3: जी बिल्कुल।
2: तो का एम पहले से क्लियर था। हाँ, इसमें जाना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE की तैयारी आपने कैसे की।
3: जी, JEE की तैयारी हमने देहरादून रह के की है एक प्लेटफॉर्म से, जो कि
2: ऑनलाइन या ऑफलाइन।
3: ऑफलाइन की है, मतलब ऐसा कोई नहीं रहा कि प्रेशराइज था। हालांकि हाँ, कुछ महीने वहाँ पर स्टार्टिंग के कुछ महीने हम पे थोड़े कष्ट के रूप में गुजरे, क्योंकि ये इजी नहीं होता है फैमिली से दूर रह करके पढ़ाई करना। बट जब आपके माइंड में पता हो कि हाँ हमें कुछ करना है, तो इस सब चीज़ों से निकल के आपको करना ही पड़ता है, बाहर आके आपको परफॉर्म करना ही पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो, आपका स्पोर्ट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप अपने फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने ट्राई किया, पढ़ना स्टार्ट किया। हम नॉर्मली तो क्लास 12th में यही कोई 2 से 3, 3 से 4 घंटे पढ़ते थे, बट जब वहाँ पे गए वहाँ पे देखा कि स्टडी का लेवल थोड़ा चेंज है, पूरा चेंज है। तो वहाँ जाके समझ आया कि एक दो घंटे, तीन घंटे या चार घंटे से काम नहीं चलेगा, जो मतलब रेगुलर है एक टाइम टेबल से हमें पढ़ाई के लिए समय देना पड़ेगा, और वो भी करीब करीब 10 से 11 घंटे, तो 10 से 11 या 12 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, वो मतलब क्लासेस से अलग जो वहाँ पे क्लासेस लगती हैं।
2: जी, ने कहाँ पर तैयारी करी?
3: आकाश इंस्टीट्यूट से,
2: देहरादून में।
3: जी,
2: तो आपका डेली रूटीन कैसा होता है?
3: एक प्रॉपर बहुत ही सुंदर रूटीन होता है। कॉलेज में पहुंचने के बाद आप उठते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है कि हाँ, मेरे को IIT में क्लास अटेंड करने के लिए जाना है। और उसी दौरान मॉर्निंग का जो 3-4 घंटे की क्लासेस लगती हैं हमारी, वो होता है। उसके बाद कैफेटेरियाज में खाना होता है जो कि फ्रेश होता है, लाइक होम मेड है। लाइफ साइकिल, आपको हर एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में इतनी शांति होती है कि आप जा करके अगर 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, तो आपका मन करेगा कि वहाँ पर आप मैक्सिमम आर ही दे दें कि सारी चीज़ों को कवर कर लें। और रही प्लेग्राउंड्स के बाद, तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के एरिया में हमारा कॉलेज है, तो इतनी तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि प्लेग्राउंड की कोई दिक्कत हो। हर एक चीज मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन गेमिंग जो चलते हैं, ऑनलाइन गेम चल रही है, जिनके भी टूर्नामेंट्स वहाँ पर होते रहते हैं।
2: ओके, तो आप हॉस्टल में रहते हैं?
3: जी बिल्कुल।
2: तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस तरह से रोज का, कि मुझे इस टाइम तक पढ़ाई करनी है, और कितनी मेहनत है आपकी इसके पीछे?
3: नॉर्मली तो IITs में रहकर के आपको पता ही है, लेक्चरर्स और जो वर्क होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता ही है। पढ़ाई का तो सीरियसनेस होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप इस लेक्चर्स को अटेंड ना करें और उसके बाद सिर्फ एग्जाम दे दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सारी प्रॉपर चीज वहाँ पर मेंशन करनी होती है और खुद को भी प्रेजेंट करना होता है हर चीज के लिए। एवरी वीक हमारे क्विज होते हैं जिनमें हमारा प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है, और उन चीज के, उन क्विज के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे जो सेमेस्टर के एंड में जो रिजल्ट आता है उसमें मेंशन होते हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट।
2: IIT में आने के बाद आपके अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या आया?
3: सबसे बड़ा बदलाव जो मेरे अंदर आया है वो ये है कि मैं इस काबिल बन चुका हूँ कि अगर मेरे जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, मैं उनको समझा पा रहा हूँ कि उनको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मेरी ये है कि मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ कि हाँ, मेरा ये कदम कहाँ जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है।
2: बिल्कुल, और जानना भी जरूरी है।
3: जी बिल्कुल।
2: तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ पढ़ाई जरूरी है या स्किल भी?
3: नहीं, जरूरी तो देखिए, पढ़ाई के साथ साथ स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि AI में इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है कि जो वर्कलोड है, जो हाथों का काम है, वो बहुत कम हो गया है। मशीन्स इतनी एडवांस हो गई हैं कि उन्होंने जो इंसानी रूप में जो वर्क काम होता है वो बहुत कम कर दिया है। इनफैक्ट ऑफ पेपर वाइज अगर आपकी स्किल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा इंप्रूव है और हाई है, तो ये आपके पास बहुत प्लस पॉइंट है कि आप बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छे प्लेसमेंट पे लग जाएं।
2: यानी सिर्फ किताबों से नहीं, स्किल से ही असली ग्रोथ होती है।
3: जी बिल्कुल, स्किल से। आज इस समय को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि स्किल का समय ही है, और वर्तमान में भी शायद स्किल का ही रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल के टाइम का AI का बहुत बड़ा जमाना है।
2: हमें स्किल्स तो बहुत जरूरी है, कि स्किल्स हमें आनी चाहिए।
3: जी बिल्कुल,
2: डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी बहुत जरूरी है।
3: जी बिल्कुल,
2: तो ये तो सही बात है कि देखो, एक डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें कौन सा काम किस तरह से करना है और किस समय तक करना है।
3: जी बिल्कुल, ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है।
2: तो जो स्टूडेंट IIT का सपना देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप?
3: उनको यही कहना चाहूंगा कि मैं भी एक बार हार के यहाँ पे बैठ के फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया एग्जाम देने के, तो ये चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी कि हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस फेलियर को लर्निंग की तरह लें, एक फेलियर को फेलियर की तरह ना लें। अगर हम उस फेलियर को लर्निंग की तरह लेंगे तो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी रहेगी कि हम फाइट बैक कर सकते हैं, स्टैंड दोबारा होकर के उस चीज को फाइट कर सकते हैं और अच्छी जगह पहुंच सकते हैं कहीं ना कहीं।
2: बिल्कुल, देखो जीत हार, फेलियर सक्सेस, ये आती रहती है ना।
3: बिल्कुल, ये जिंदगी के वो चीजें हैं जो हर किसी के जीवन में आनी जरूरी है, और अगर कोई भी इंसान इन चीजों से गुजरा नहीं है तो इंसान इतना मजबूत या कह सकते हैं इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाएगा अपने फ्यूचर में।
2: दोस्तों, आज की बातचीत से हमें ये समझ में आया कि IIT तक पहुंचना सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना होता है। आप हमें, कोई जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: मैसेज यही देना चाहूंगा कि जिंदगी में दो पहलू हमेशा होते हैं, एक अच्छे का और एक गलत का, और एक हार का और एक जीत का। और ये हमें, हर किसी इंसान को ये चीज़ों का पता होता है कि हमारे लिए फ्यूचर में जा करके क्या चीज़ सही होने वाली है। तो कभी भी अपने आप का सच्चाई से साथ ना छोड़ें, क्योंकि हम आज भागदौड़ की जिंदगी में ये चीज़ भूल जाते हैं। कभी कभी इतने बिजी भी हो जाते हैं कि ना जानते हुए हम गलत का साथ दे देते हैं। तो अपने लिए रियल होना और दुनिया के लिए रियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: जी, खुद के लिए ऑनेस्ट होना बहुत
3: जरूरी बिल्कुल
2: है।
3: जी बिल्कुल, अपने लिए ऑनेस्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए ऑनेस्ट रहें, इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
2: जी, तो केशव, हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा।
3: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
2: आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
4: सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

0: सो गाइस, अब वक्त है हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट का। तो यूसुफ, आप बताओ हमारे नेक्स्ट सेगमेंट है क्या?
1: कहानी के उस पार, जिसमें आज आप सुनेंगे कहानी बोला राम का जीव, एपिसोड नंबर 5। और इस कहानी में अब तक क्या हुआ है, क्या आपको उसकी खबर है? तो सोचिए, क्या आज उन पेंशन की फाइल में से वो मिल पाएंगे या नहीं, ये तो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। हमारा सेगमेंट कहानी के उस पार।

दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने सुना था नारद ने अपनी वीणा देकर भोला राम की फाइल खुलवाई। अब आगे सुनते हैं कि बड़े साहब के सामने भोला राम की फाइल खुली हुई थी। कागजों का ढेर हर पन्ना जैसे किसी अधूरी उम्मीद का सबूत था। नारद मुनि ध्यान से उस फाइल को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था ये सिर्फ फाइल नहीं किसी की पूरी जिंदगी है। जैसे ही साहब ने फाइल खुलवाई अचानक अंदर से आवाज आई, क्या मेरी पेंशन आ गई? साहब घबरा गए, ये आवाज ये कहां से आई? नारद हल्के से मुस्कुराए, भोला राम ये तुम हो? हाँ महाराज मैं यही हूँ अपने दरखास्तों में, धीमे से आवाज आई। नारद ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ भोला राम, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। भोला राम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महाराज मैं नहीं जा सकता। क्यों? नारद ने पूछा। भोला राम बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं कागजों में लगा दी महाराज, हर दिन यही सोचता रहा कि आज पेंशन मिल ही जाएगी, लेकिन देखो मैं मर गया, पर मेरा मन मेरी उम्मीद यही रह गई। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। नारद ने समझाया, अब तुम्हें इससे मुक्त हो जाना चाहिए भोला राम। भोला राम ने धीरे से कहा, महाराज जब तक ये काम पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जा सकता। नारद ने तुरंत साहब की ओर देखा और बोला, इसकी पेंशन अभी पास कीजिए। साहब ने वीणा की ओर नजर डाली, फिर आदेश दिया, चपरासी फाइल क्लियर करो। कुछ देर में कागजों पर साइन हो गए और भोला राम की पेंशन स्वीकृति पर चेक लग गया। जैसे ही आखिरी मोहर लगी फाइल के अंदर से आवाज आई, अब हल्की और शांत, और वो आवाज थी, महाराज अब मैं चल सकता हूँ। नारद मुस्कुराए। उसी समय यमदूत प्रकट हुआ और इस बार भोला राम का जीव बिना किसी विरोध के उसके साथ चल पड़ा। दोस्तों कभी कभी इंसान सिर्फ शरीर से नहीं मरता, वो मरता है इंतजार और व्यवस्था के बोझ से, और कभी कभी उसका जीव भी वहीं अटक जाता है जहाँ उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है।

0: इसलिए तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं तोड़नी चाहिए, हर उम्मीद के दामन को भर देना चाहिए, है ना। जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि हमने आपसे पूछा था बूझो तो जाने का सवाल कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है, और जिसका सही जवाब आपने दिया है, और सही जवाब है अनुच्छेद 123 में।
1: और उस पर जान लेते कि हमारे किन दोस्तों ने हमें दिया है हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो उनके नाम है मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, शाहरुख नूर अंसारी, अफजल ताज, धीरज भाई राबड़ी, परवीन चौहान, शाहजी, राजेश वर्मा, इरशाद अहमद, मोहम्मद रफीक पवार, गुरमीत सिंह मेटा, सुरेश गगनेजा, महेंद्र मोदी, गजानन येले, जाकिर मंसूरी, राजकुमार डूडी,

0: कुमार वर्मा, लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद जाहिद अली, संजय ढींगिया, मुकेश कश्यप, फागुराम यादव, दिलशाद हुसैन, सिद्धार्थ, नवी हसन अब्बासी, दिग्दर्शन गौड़, सुरेश खुराना, विठल सुरोशे, आसिफ चौधरी, ताज अंसारी, सुदर्शन शाह, मिसबा शमसी, जॉन डी कैस्ट्रो, देव शंकर तामूरिया, रवि कुमार राहुल, अरविंद कुमार, धर्मेंद्र छिपा, अनिल विनोचा, नजमुल हुदा, बी कमल और नंद कुमार ठाकुर।
1: तो आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब और इसी बात पर आपके लिए बनता है एक इनाम। तो इनाम के तौर पर आपके लिए पेश है ये गजल जिसके बोल है, होश वालों को खबर क्या।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। और खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारा पिन कोड है 2467।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक। अकाउंट का नाम है हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद। तो आपको कैसे लग रहे हैं हमारे प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे यूसुफ़ा जैदी को
0: और मरियम जैदी को
1: दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। और हम छोड़ जाते हैं आपको इस खूबसूरत सी गज़ल के साथ, क्योंकि ये शाम है गज़लों के नाम।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ

0: मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह
1: और आपके भैया हिमांशु रंजन की
0: राम
1: राम।
0: और सुनाओ हिमांशु भैया, कैसे हैं आप?
1: बस भैया सब राज्य खुशी। और तुम बताओ भैया, थारे कैसे हाल चाल है?
0: भैया हालचाल तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया यूं है कि अब जो है कई दिनों से मौसम सुहावना हो रहा है, गर्मी भी ना लग रही।
1: बिल्कुल भैया, गर्मी भी ना लग रही। और देखो भैया, अभी जो एक दो दिन पहले भैया बारिश हुई थी,
0: हाँ
1: तो भैया खेतों में थोड़ी सी नमी तो आ गई।
0: बिल्कुल
1: लेकिन नरेश पाल भैया, इस नमी के साथ साथ कुछ और आया है खेतों में भैया।
0: भैया, वो क्या आ गया?
1: भैया वो यो है कि जब भैया खेतों में नमी आए करे, तो ये तो साथ साथ भैया खरपतवार भी उग जाए करे हैं।
0: बिल्कुल। तो भैया देखिए, अभी गर्मी का सीजन है,
1: हाँ,
0: अभी तो भैया मई का महीना पड़ा है, जून का महीना है, तो खरपतवार की तो हमारे किसान भाइयों को इतनी चिंता भी है ना, क्योंकि किसान भाई जो है अब जैसे 2-4 दिन की धूप हुई ना, तो इन खरपतवारों को तो फावड़े सर खुरपी से निकाल दें और भैया हमारी फसल में गुरब भी निकल जाएगी, और हमारी जो वैसी फसल है ना जैसे गन्ने की फसल, तो
1: हाँ,
0: उसमें मेढ़ा भी हो जाएगा और बढ़िया पैदावार होगी।
1: बिल्कुल। और भैया तुम बात कर रहे थे खुरपी और फावड़े की, तो
0: हाँ
1: भैया बिल्कुल जरूरी यही है कि जो वैज्ञानिक यूँ कहते हैं कि भैया जैविक तरीके से ही अपने खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए। भैया
0: हाँ
1: रसायनों का कम से

0: कम अपने खेतों में उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और भाई बिल्कुल, हमारे किसान भाई ये जानते होंगे क्योंकि पढ़े लिखे किसान भाई हैं आजकल,
0: बिल्कुल।
1: कि भैया जब खरपतवार का नियंत्रण वे रासायनिक विधि से करो ना, तो जैसे हमारे खरपतवार तो मर जाएं,
0: हाँ
1: लेकिन हमारी फसल की बढ़वार भी कहीं ना कहीं रुक जाती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो, बढ़वा रुक जाती है। तो भैया खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि यूं वैज्ञानिक यूं बताया करें कि जब खरपतवार खेत में उगते हैं तो भैया वो फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
1: बिल्कुल। और जो पोषक तत्व हैं, हवा है, धूप है, सबके साथ प्रतिस्पर्धा होती है। और भैया हमारी मिट्टी वही तकड़ी फसल देगी जो मिट्टी जानदार होगी।
0: बिल्कुल। अब देखो तुम
1: और मिट्टी
0: भैया,
1: जानदार है या नहीं वो कैसे पता लगेगा ये बताओ।
0: देखो जानदार का तो ऐसा पता लगेगा कि हमारे पास उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए, जिसे भैया सॉइल हेल्थ कार्ड कह दें।
1: बिल्कुल। यानी कि मिट्टी की जांच कराने के बाद जो उसकी रिपोर्ट मिलेगी ना,
0: हाँ
1: उसे कह रहे हो तुम सोयल हेल्थ कार्ड।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया मिट्टी की जांच हमारे किसान भाई कैसे कराम, तो जरा कुछ तरीका बता दो किसान भाइयों को, मिट्टी की जांच कैसे हो।
0: बिल्कुल भैया, ये तरीका भी बता देंगे, लेकिन किसान भाइयों को यो बताना जरूरी है कि भैया अभी उनकी जो रबी की फसल थी भैया वो घर आ गई, अब उनके भैया खेत खाली है,
1: और क्या।
0: तो यो पर्याप्त समय है कि वो मिट्टी की जांच करा सकें।
1: बिल्कुल। और मिट्टी की जांच तो भैया हम बता ही रहे थे कि मिट्टी की जांच हम जब करते हैं तो जिस खेत की मिट्टी की हमें जांच करवानी होती है, उस खेत में हम 3-4 जगह से मिट्टी का नमूना लें।
0: बिल्कुल।
1: और भैया ऊपर से 6-7 इंच की जो मिट्टी है ना,
0: हाँ
1: उसका ही नमूना लें।
0: अच्छा।
1: और उसमें 2-3 शर्तें होनी चाहिए। एक तो ये कि फसल की जड़, ठूंठ या पत्ती, कोई भी फसल अवशेष उस मिट्टी में ना हो,
0: बिल्कुल
1: सिंचाई के नाली के पास की मिट्टी ना हो,
0: बिल्कुल
1: कोई बड़ा वृक्ष खड़ा हो तो भैया उसके नीचे की मिट्टी ना हो,
0: बिल्कुल
1: और जो हमारे किसान भाई खाद कूड़ा डालते हैं, जैसे कहीं आपने गोबर की खाद डाल रखी है, या आपने केचुई खाद डाल रखी है, या आपने वर्मी कंपोस्ट डाल रखा है, तो वहां की मिट्टी ना लें।
0: बिल्कुल। और भैया अगर हमारा खेत जो है ढलावदार है, तो जिस तरफ भैया ढलान होगी, झुकाव होगा, उस तरफ से भी भैया हमें मिट्टी का नमूना नहीं लेना।
1: नहीं लेना, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो उधर ही चले जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई उसको 2-3 बार मिला के जब लगभग 250 ग्राम मिट्टी बच जाए ना, तो 250 ग्राम मिट्टी बहुत है किसान भाइयों के लिए जो उसका परीक्षण भी करा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: अपने
0: बिल्कुल
1: नजदीक के ब्लॉक में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होती है,
0: बिल्कुल
1: भैया वे वहां ले जाएं और इस मिट्टी के नमूने के साथ में एक पर्ची डाल दें कि हमारा कौन सा खेत है,
0: जी
1: कौन सी उसमें फसल थी और आगे कौन सी फसल बोई जाएगी।
0: हाँ
1: तो भैया ये सब किसान का नाम, नंबर और खसरा नंबर डाल कर आप जो है वहां पहुंचा दें, और लगभग 15 दिन के बाद आपको मिट्टी की रिपोर्ट मिल जाएगी।
0: बिल्कुल। और भैया साथ में उसमें मोबाइल नंबर भी जरूर लिख दे मैं
1: जी
0: अपना।
1: मोबाइल नंबर लिख दिया तो वो लैब वाले बिल्कुल फोन कर देंगे भैया कि आपके मिट्टी का नमूना जो है हमने तैयार कर दिया है उसका परिणाम, और आप जो है उसकी रिपोर्ट ले जाओ।
0: बिल्कुल। अब नरेश पाल भैया ये तो बता दो, ये मिट्टी की जांच हमें कितने साल में करानी चाहिए, ये तो बताओ जरा किसान
1: भाई
0: भाइयों को।
1: देखियो मिट्टी की जांच कुछ किसान भाई तो कराते नहीं, जो ज्यादा खाद कूड़ा डाल रहे ना, इनके पास पशु बहुत हैं और खरी खाद भी डालते रहे, तो ऐसे किसानों को मिट्टी की जांच करवाने की जरूरत भी कम रहे। लेकिन जो किसान भाई पशु नहीं रखते उतने और DAP और यानी कि रासायनिक उर्वरकों के द्वारा खेती करें ज्यादातर, तो भैया उन्हें भी कम से कम 3 साल में एक बार तो जांच कराई लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल। मिट्टी की जांच जरूर करावें, जिससे भैया आगे को वो कौन सी फसल बो रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में उर्वरक डालना है, कितनी मात्रा में पोषक तत्व तो डालना है भैया, उससे वो पता लग जाता है हमें।
1: बिल्कुल। तो भैया देखिए अब ये तो थी थोड़ी सी चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मिट्टी की जांच की, और जला अब किसान भाइयों को ये तो बता दो आज कौन सा दिन है, और भैया कौन से दिन में कौन महीने का कौन सा दिन है, और इस दिन किसान भाई क्या सुनेंगे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताओ।
0: भैया देखो किसान भाई बहुत होशियार है। अब भैया तुम दिन पूछ रहे हो, तो भैया आज है शुक्रवार, वो भी भैया माह का दूसरा शुक्रवार है।
1: बिल्कुल। और माह के दूसरे शुक्रवार को हमारे किसान भाई सुनते हैं अपनी समस्या, अपने जो चिट्ठी पत्री होती है ना
0: हाँ।
1: उनके उत्तर सुनते हैं कि भाई वो हमें क्या सुझाव भेज रहे हैं, अपनी क्या समस्या लिख रहे हैं, और हम भाई ये प्रयास करते हैं कि अपने किसान भाइयों को सटीक उत्तर दें।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो भैया आज है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री, और चिट्ठी पत्री कार्यक्रम जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले जरा किसान भाइयों को यहाँ पर थोड़े से विज्ञापन

0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तो किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश हिमांशु भाई।
3: बिल्कुल भैया।
2: और देखिए अब हम अपने किसान भाइयों के पत्रों के उत्तर देंगे। तो ये बताओ पहला पत्र आप किसका पढ़ रहे हैं?
3: बिल्कुल भैया, देखो ये पहला पत्र हमें प्राप्त हुआ है, ये हुआ है ग्राम कुआखेड़ा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार से। और भैया भेजने वाले हमारे भाई हैं सुभाष चंद्र, तेलुराम पुंडीर, राजेश महाशय और उनके परिवार के समस्त सदस्य।
2: भाई देखिए ये हमारे बहुत ही नियमित और पुराने श्रोता हैं। तो इन्होंने जो है क्या समस्या लिखी
3: भैया? सबसे पहले तो ये राम राम बोल रहे हैं।
2: राम राम जी,
3: इनको भी राम राम। और भाई देखो इन्होंने एक समस्या लिखी है कि इन्होंने गन्ने की फसल लगाई है और इस समय गन्ने की फसल में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुंडी लगी है।
2: अच्छा।
3: और गन्ने की पत्तियां कड़ी होकर एक दूसरे से चिपक रही हैं। तो भैया ये पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या रोग हो सके है और इसका निवारण कैसे कर सके हैं ये?
2: देखिए ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बहुत ही समसामयिक बिल्कुल बात लिखी है। और गन्ने की फसल में इस समय देखिए पूर्वा हवा चल रही है, मौसम नम है, तो सुंडी वाकई में गन्ने की फसल में आ रही है।
3: बिल्कुल।
2: और जो ये दूसरी परेशानी लिख रहे हैं कि इनकी पत्तियां जो हैं गन्ने की कड़ी होकर एक दूसरे से चिपक रही हैं, तो ये भैया एक फंगस रोग होता है।
3: जी जी जी।
2: तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि सुंडी का निदान तो ये कोई सी भी साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनाफोस वाली दवाई, इसमें 40% प्रोफेनाफोस का साल्ट होता है और भैया इसमें 10% साइपरमेथ्रिन होती है।
3: बिल्कुल।
2: तो ऐसी कोई सी भी दवाई ले लें जो बाजार में बहुत से नामों से आती है, तो जिसमें एक विशेष गंध सी भी आती है। तो भाई ये अपनी जो 15 लीटर की टंकी होती है जैसे कमर पे जो है स्प्रे करते हैं लाद के,
3: बैटरी
2: तो,
3: वाली।
2: हाँ हाँ, बैटरी वाली। तो भैया उस टंकी में ये 35 मिलीलीटर 35 ml दवाई डाल लें
3: जी,
2: और उस टंकी को पानी से भर लें।
3: बिल्कुल।
2: और अपने जो गन्ने की पत्तियों छिड़काव कर दें, सुंडी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
3: बिल्कुल भैया।
2: और भाई ये गन्ने की पत्तियां बता रहे थे कड़ी होकर एक दूसरे चिपट जाती हैं, तो इसी टंकी में ये कार्बंडाजिम और मैंकोजेब का जो पाउडर आता है ना।
3: जी जी जी
2: भैया, वो आधा किलो पाउडर 5 बीघे के हिसाब से उसका पाउडर बनाकर 5 बीघे में छिड़क दें। आधा लीटर पाउडर जो हरी हरी से पाउडर होता है कार्बन डाइम और मैंकोजेब का।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो भैया हमारे किसान भाई उसी हिसाब से 4 या 5 ग्राम आप अपनी टंकी में डाल सकते हैं वाला, और दोनों को मिला के कर दें तो इनकी समस्या का जाहिर सी बात है निदान हो जाएगा।
3: बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो उम्मीद है भैया इन्होंने अपनी जो इन्होंने पत्र भेजा था इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और भैया अब कहो तो एक पत्र और शामिल कर ले।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: भैया। अगला पत्र हमें मिला है ग्राम सिजोली पोस्ट हरगनपुर बिजनौर से। लिखने वाले भैया हमारे श्रोता हैं मास्टर बलवीर सिंह गुज्जर और इनके परिवार के समस्त सदस्य
2: हैं। जी क्या लिखते हैं
3: भैया? सबसे पहले तो ये हमें राम राम बोल रहे हैं।
2: राम राम जी इनको भी।
3: और इन्होंने भैया ये जानना चाहा है कि इन्होंने हरी खाद की फसल लगाई है।
2: अच्छा।
3: और हरी खाद की फसल भैया इन्होंने लिखा है कि ढेंचा और सनई को कब मिट्टी में मिलाएं ताकि अच्छा लाभ इन्हें मिल सके।
2: तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है इनका। हमारे किसान भाई जो धान की फसल पैदा करते हैं, तो गेहूं काटने के बाद कुछ किसान भाई सनई और ढेंचा को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और हरी खाद की फसलें जो होती है ना, तो भैया ये जब इनका रेशा पकने से पहले पहले जब लगभग 45 दिन का हो जाता है, तो 45 दिन की फसल 50 दिन की फसल ये जो है कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि भाई 40 दिन की भी अपनी फसल पलटाई कर सकते हैं खेत में, तो ये 40 से 45 दिन की फसल जब इनकी हो जाए तो भाई ये अपनी फसल को सही ढांचा खेत में जुताई करके अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। और अच्छा लाभ ये कह रहे हैं कब मिलता है? अच्छा लाभ तब मिलता है कि जैसे इन्होंने फसल जोत दी हरी खाद की।
3: बिल्कुल।
2: तो भाई ये तुरंत उसमें फिर पानी लगा दें।
3: अच्छा।
2: यदि पानी की थोड़ी बहुत भी कमी हो गई तो खेत में दीमक लगना खतरा होता है, और दीमक जो है बहुत से कार्बनिक पदार्थ का नुकसान कर देती है। जो हरी खाद जो है हम लगा रहे हैं ना, वो खाद को खा लेगी, तो पानी लग जाएगा तो दीमक नहीं लगेगी और हमारी जो है हरी खाद का पूर्ण रूप से उपयोग हो जाएगा और हमारी मिट्टी जो है उर्वरक बन जाएगी।
3: बिल्कुल भैया। तो उम्मीद है भैया इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो गया होगा।
2: बिल्कुल।
3: अब भैया एक पत्र और हमें प्राप्त हुआ है।
2: नहीं, उससे पहले देखो ये हमें व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है।
3: अच्छा अच्छा भैया। तो, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल।
2: तो ये व्हाट्सएप संदेश जो है जरा भेजने वाले भाई कौन है?
3: भैया ये व्हाट्सएप संदेश हमें मिला है ग्राम टिकोला कला जिला हरिद्वार से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मास्टर रमेश चंद नामदेव
2: जी,
3: ज्योति रामदेव, डॉक्टर राजन नामदेव, संजय नामदेव और निकुंज नामदेव।
2: देखिए ये भी हमारे नियमित और पुराने श्रोता हैं और लगातार हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, तो ये क्या सवाल पूछ रहे हैं?
3: भैया इनका एक सवाल है, इन्होंने कुछ पॉपुलर के वृक्ष लगाए हैं जो कि एक बार इन्होंने कटवा दिए हैं और अब पॉपुलर के पौधों की जो पेड़ी है भैया वो खड़ी है जिसमें कई पौधे एक जगह से बढ़ रहे हैं।
2: अच्छा,
3: और ये जानना चाह रहे हैं क्या हम इन सभी पौधों को बढ़ने दें और इसमें खाद व उर्वरक का प्रबंध कैसे करें?
2: देखिए इनका भी बहुत अच्छा सवाल है। हमारे किसान भाई जो है पॉपुलर की खेती जो करते हैं तो वो भी गन्ने की तरह एक बार कटवा के पॉपुलर को फिर उसकी पेड़ी भी ले लेते हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि एक एक जगह कई कई इनके पौधे उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये जो बड़ा पौधा है इनका पेड़ी का उसको रोककर बाकी पौधों की छटाई करा देना तो ये बेहतर होगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और यदि ज्यादा ये चाहें तो दो पेड़ भी रोक सकते हैं, और बेहतर रहेगा कि ये एक ही पेड़ रोकें और बाकी कटाई छटाई करके और अपने जो इनका बगीचा है,
3: बिल्कुल
2: मैं उसे बगीचा ही कहूंगा, तो उसमें ये डीएपी और जो पोटास होता है उसका भी इस्तेमाल करें और सूक्ष्म पोषक तत्व भी अपने खेतों में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान रहे कि जब डीएपी, हमारे किसान भाई जिसे डाई बोलते हैं
3: जी,
2: जब डाई का इस्तेमाल करें तो उसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिन बाद ये पोटास और डाया एक साथ मिलाकर और उसके कुछ दिन बाद आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका भी अपने पेड़ के चारों ओर डाल दें और सिंचाई कर दें तो अच्छी बढ़वार हमारे पौधे करेंगे। और एक बात का ध्यान और कर लें, सोने पे सुहागा रहेगा।
3: वो क्या भैया?
2: भैया इसमें ये कोई कवकनाशी मिला लें जैसे कार्बन डाइजिम है या मेनकोजेब है, बावेस्टीन है
3: जी,
2: या कैप्टान थीरम है, तो भैया वो सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि जो फंगस से लगने वाला कोई रोग है पॉपुलर में वो भी नहीं आएगा। और ध्यान रहे कि ज्यादा जल भराव हमारे खेतों में ना रहे।
3: बिल्कुल भैया, उम्मीद है कि भैया इनकी जो समस्या थी पशुपालन या खेती किसानी से संबंधित भैया उसका समाधान हो गया होगा। अब भैया आपका हो तो एक पत्र और शामिल कर लें भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अगला पत्र किसका है?
3: भैया ये हमें प्राप्त हुआ है ग्राम सैंदीकाल पोस्ट दुगड्डा उत्तराखंड से, और भैया ये भी हमारे नियमित श्रोता है प्रकाश चंद जी और इनके परिवार के समस्त सदस्य
2: जी जी जी।
3: भैया ये भी हमें लिख रहे हैं कि इन्हें कृषिगत कार्यक्रम बहुत पसंद है
2: जी,
3: और जो भैया कार्यक्रम में अभी आपने जो लोक मंजरी कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए भैया धन्यवाद भेज रहे हैं ये।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
3: और भैया देखो इनकी समस्या है, वो समस्या यो है कि इन्होंने लौकी और तोरी की खेती कर रखी है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी फसल में तितली जैसे कीट दिखाई दे रहे हैं और जो पत्तियां हैं वह फलों पर भी निशान हो रहे हैं, पत्तियों में सुराख हो गए हैं और लौकी के फलों में भी सुराख हो गए हैं।
2: अच्छा,
3: ये जानना चाह रहे हैं कि भैया इसका समाधान वो किस प्रकार से करें?
2: देखिए ये लौकी की जो ये बता रहे तितली जैसा जो कीट है तो ये आजकल लौकी की फसल में नुकसान पहुंचाता है
3: जी जी जी,
2: और लौकी की पत्तियां उनका रस भी चूसता है और जो फल बनते हैं उसमें भी ये छेद करके घुस जाता है। तो किसान भाई इसके लिए प्रातःकाल मिथाइल पैराथान का एक पाउडर होता है
3: जी,
2: तो मिथाइल पैराथान का पाउडर लेकर सुबह सुबह जब ओस होती है ना तो उसका बुरकाव अपनी फसल पे कर दें।
3: बिल्कुल,
2: तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ज़्यादा करें तो जैसे इनके फलों में ज़्यादा समस्या हो रही है तो ये कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ले लें।
3: अच्छा,
2: कारटाप हाइड्रोक्लोराइड
3: जी,
2: तो ये उसकी अति सूक्ष्म मात्रा को यूरिया में मिला के अपने जो है थामले होते हैं पेड़ के उसमें डाल के और हल्का हल्का हजारा से सिंचाई कर दें।
3: बिल्कुल,
2: तो ये समस्या इनकी दूर हो जाएगी कीटों वाली। इसी प्रकार तोरी के लिए भी जो कीट है वो उसका निदान भी इसी प्रकार हो जाएगा।
3: अच्छा भैया,
2: अच्छा एक और ये पत्र है, ये अगला पत्र बड़ा रंगीन है, ये देखिए भेजने वाले कहाँ के हैं।
3: बिल्कुल भैया, हमें ये पत्र मिला है ग्राम गधरोना पोस्ट लंडोरा जिला हरिद्वार से, और भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं मदन गिरी जी और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
2: देखिए मदन गिरी जी, हमारा कोई सा कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जिसमें जैसे चाहे वो फोन इन कार्यक्रम हो या भैया हमें व्हाट्सएप संदेश हो या पत्रोत्तर कार्यक्रम हो जिसमें इनकी कोई चर्चा ना हो, ये अपनी जो है चर्चा यानी कि हमारे कार्यक्रम में शामिल जरूर होते हैं,
3: बिल्कुल
2: पत्र जरूर भेजते हैं। तो आज ये अपनी क्या समस्या लिख के भेज रहे हैं?
3: भैया इन्होंने पशु पाल रखे हैं।
2: अच्छा।
3: भैया जैसे किसान भाई पालते ही हैं अपने पशु।
2: हाँ हाँ।
3: तो इन्होंने भैया समस्या लिखी है कि इनकी पशुओं को जो है चीचड़ी कलीली हो गई है, तो ये उसका समाधान जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये चीचड़ी कलीलियों का भैया जो है निदान कर सकते हैं, अपने पशु को सही रख सकते हैं।
2: जी तो देखिए चीचड़ी कलीली के लिए बहुत सबसे पहले जो है पशुशाला और हमारे पशु की साफ सफाई होनी चाहिए,
3: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
2: हाँ, पशु के शरीर पर गोबर नहीं होना चाहिए, उसे नहलाना चाहिए, पशुशाला भी साफ सफाई रखनी चाहिए, गोबर और मूत्र का जो निस्तारण है उसका फर्श का ढाल भी सही होना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे पशु के शरीर पर चीचड़ी कलीली हो गई है, तो भाई कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिससे खिलाने से चीचड़ी कलीली समाप्त हो जाती है यानी कि झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं।
3: बिल्कुल।
2: और कुछ इंजेक्शन भी आता है, वो खाल में लगता है, तो वो इंजेक्शन भी ये लगा सकते हैं। और एक तरीका ये है कि एक बुटॉक्स नाम की दवाई होती है।
3: जी जी बिल्कुल।
2: उसको 1 लीटर पानी में लें आप और उसकी

0: अपने पशु के शरीर पर घुमा दें, और इस बात का ध्यान रहे कि इनकी गाय या भैंस या बच्चे
1: और जो इनके छोटे पशु हैं उनकी जल्दी वृद्धि के लिए पूछना चाह रहे हैं कि उनकी वृद्धि कैसे तेज हो।
0: ओहो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, कृषि के साथ साथ जो किसान भाई पशु पालते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और हमारे देश की ये परंपरा है कि कृषि और पशुपालन एक साथ चलता है, तो उन्हें किसानों की जो खेत भी अच्छे होते हैं क्योंकि खाद मिलता है, और किसान भाई दूध घी का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और किसान भाई जो है चाव से काम भी करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो दूध उत्पादन कैसे बढ़ा जाए, तो सबसे पहली बात है कि अच्छी नस्ल के पशु पाले जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। गाय जैसे जर्सी है और होलिस्टीन फ्रीजियन है जिसे HF कहे हैं, और भैंसों में तो भैया मुर्रा नस्ल की भैंस का जवाब नहीं, बहुत ही बढ़िया भैंस है। तो आप मुर्रा नस्ल की भैंस और हरियाणा भैंस पाल सकते हैं। अब आप दूध बढ़ाने वाली बात करें तो दूध, भैया देखिए, हरा चारा एक ऐसी चीज है सबसे ज्यादा सहायक होता है दूध बढ़ाने में। अब भाई हम मान लिया पशु को अपने खिला रहे हैं तो गेहूं का सूखा भूसा, चाहे उसमें रात तब कितना ही डाल रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो और जिस पशु को हरा चारा मिल रहा वो बिना रात तब के भी बढ़िया दूध देगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा चक्र बना के रखें कि वर्ष भर हमारे पशु को हरा चारा मिलता रहे, और भैया दूध उत्पादन ऐसे बढ़ा जाए कि आपका जो रातब मिश्रण है वो आप अपने घर ही बनाए तो बहुत अच्छा।
1: बिल्कुल।
0: उसमें आप भाई सरसों की खली है, आप जो कुछ कुछ अनाज है जैसे मक्का है, जौ है, जई है और गेहूं है, उसका उचित मिश्रण बना सकते हैं। लगभग 70 किलो आप अनाज मिश्रण डाल सकते हैं उसमें, और भाई उसमें कम से कम 2 किलो नमक डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: 1 किलो गुड़ डाल सकते हैं, और बाकी 10 किलो आप सरसों की खल डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: या बिनौले की खल डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से घर का बनाया हुआ जो रातब होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, और घर पे आप इस तरह का रातब बना लें और उसमें एक चीज और डाल दे तो भैया सोने में सुहागा हो जाएगा।
1: वो क्या भैया?
0: वो भैया बाजार में आता है खनिज लवण का मिश्रण।
1: अच्छा भैया।
0: हाँ, जिसे जो है खनिज लवण हमारे पशु खाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छा दूध दें। और छोटे पशु जो जल्दी वृद्धि, ये आप पूछ रहे थे ना, तो छोटे पशु भी इससे बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं।
1: बिल्कुल नरेश पाल भैया, देखो इस बात से हम दूध उत्पादन को तो बढ़ा ही सके हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन साथ ही साथ भैया हमें एक दो काम और करने हैं इसके साथ।
0: बिल्कुल
1: भैया, वो ये करना है कि अपने पशु को एक तो सुबह शाम हमें नहलाना।
0: हाँ।
1: क्योंकि गर्मी का समय आ गया।
0: बिल्कुल।
1: और पशु को भैया कोशिश करें कि ताजा पानी ही पिला मैं अपने पशु को।
0: बिल्कुल भैया, ताजा पानी पिलाएं और ठंडा पानी पिलाएं।
1: बिल्कुल,
0: गर्मी का मौसम चल रहा है। और भाई छोटे पशु की वृद्धि एक चीज से और ज्यादा हो।
1: वो कैसे भैया?
0: वो मुख्य बात यह है कि भाई अपने पशु को दूध पर्याप्त मात्रा में पिलाएं अपनी माँ का।
1: हाँ बिल्कुल,
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: जिस पशु को शुरू से ही दूध मिल जाए ना तो उस पशु की वृद्धि ऐसी हो कि भाई पशु साल दो साल में जवान हो जा।
1: बिल्कुल, यानी कि भैया कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी।
0: हाँ।
1: अपने पशु को जो है भैया, जो पशु का बच्चा है उसे भैया दूध जरूर दे। में
0: बहुत से किसान भाई क्या कर रहे हैं कि सारा दूध निकाल लें।
1: हाँ।
0: और भैया उसके जो बच्चे को लवारे को ऐसे थोड़ी बहुत देर चुंघाया इधर को बांध दिया तो भैया उसमें दुनिया भर के तो उसे रोग लग जा, चींचड़ कलिल्ली भी नहीं लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जिस पशु के बच्चे को दूध ज्यादा मिलता है उसे चींचड़ कलिल्ली ना लगती, ये भी हमने देखा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
0: तो भैया अपने पशुओं को पर्याप्त पोषण दें और अच्छी आमदनी लें।
1: बिल्कुल। और भैया नरेश पाल भैया, देखो अब कार्यक्रम तो चल ही रहा है हमारा चिट्ठी पत्री।
0: हाँ।
1: है ना, लेकिन भैया इसके बीच में कुछ मारा तो जी सा कर रहा है भैया, देखो गीत संगीत का।
0: अच्छा अच्छा, मतलब आप जो है थोड़ी सी थकान दूर करना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल, थकान दूर करना चाह
0: रहे हैं। भैया किसान भाइयों की थकान भी दूर करवा दें।
1: ठीक है भैया,
0: वे भी भाई काम करते हैं दिन भर का और हमारी बात भी सुन रहे हैं और बीच में उनका मनोरंजन हो जाएगा बीच में।
1: बिल्कुल,
0: तो वे भी खुश होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया उनका मनोरंजन भी करा रहे हैं, लेकिन मनोरंजन अब रागनी सुनवा के करवाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक जरूरी संदेश भी सुनवा दें।
1: ठीक है भैया,
0: साथ के साथ।
1: ठीक है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: तो हिमांशु भाई
1: जी भैया,
0: अरे रागनी आपको कैसी लगी है बताओ।
1: बिल्कुल भैया, रागनी बहुत हमें पसंद आई और भैया हमारे किसान भाइयों को भी पसंद आई होगी।
0: बिल्कुल आई होगी, और इसमें एक रागनी संदेश छुपा था कि ब्याह शादी का आप रोजगार बढ़ा रहे हैं मस्त लोग कि भैया अच्छा कहीं कहीं से दहेज मांगो और बहुत बुरी बात है, लेकिन ये नहीं सोचते जब उनकी लड़की कहीं को जावे ब्याह शादी हो गए और उनसे कोई दहेज मांगा जावे जो दहेज की इच्छा करें लोभ भी हो तो उन पर क्या बीतते।
1: बिल्कुल, तो नरेश पाल भैया देखो इस रागनी में जो संदेश छुपा था भैया वो यो था कि ना तो हमें दहेज देना चाहिए
0: और ना लेना चाहिए
1: और ना ही भैया लेना चाहिए।
0: अरे भैया जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो,
0: है ना। तो अब जो है इस मनोरंजन के बाद पत्रों का सिलसिला फिर से शुरू करो।
1: बिल्कुल भैया, देखो पत्रों की पोटली हमारे पास रखी,
0: हाँ,
1: उसमें से भैया एक पत्र और हमने उठा लिया।
0: बिल्कुल उठाओ भैया, क्या है।
1: भैया देखो ये पत्र हमें मिला है ग्राम दूल्हापुर तहसील ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से, और भेजने वाले हमारे भैया हैं नियमित श्रोता मुकेश कश्यप और महबूब दुकानदार और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
0: तो भाई ये क्या लिखते हैं
1: भैया, सबसे पहले तो ये हमें नमस्कार भेज रहे हैं।
0: नमस्कार भैया इनके।
1: और भैया इन ये जो है आने वाले सीजन में धान की बुआई करना चाहते हैं, तो ये पता करना चाह रहे हैं कि धान की कौन कौन सी उन्नत किस्मों के बीज ये बो सकते हैं और उसकी बुआई ये किस प्रकार से करें।
0: अच्छा देखिए, यदि ये खुशबूदार धान लगाना चाहें जिसे जो है हम बासमती की श्रेणी में रखते हैं, तो 11-21 एक बहुत ही बढ़िया इनके क्षेत्र के लिए प्रजाति है।
1: जी जी,
0: 11-21। और इसके साथ साथ कस्तूरी, पूसा बासमती 1, और भैया जो हमारे क्षेत्र में प्रचलित है शरबती नाम से आती है, तो शरबती ये प्राइवेट दुकानों पे भी काफी बिकता है शरबती के नाम से, लेकिन ये ऐसी दुकान से लें जो पंजीकृत दुकान है और विश्वसनीय दुकान है।
1: जी जी जी,
0: तो ये बो सकते हैं। और बुआई की विधि वही है भाई, अपने खेत को ये अच्छी प्रकार इस समय जुताई कर लें और उसको खुलकर डाल लें, उसके जो है खरपतवार के ठूंठ वगैरह चुग लें, साफ सफाई कर लें, और जब साफ इनकी मिट्टी हो जाएगी फिर उसमें ये पानी भर के भैया उसमें या तो गहन फेर दें या ऐसी किसी चीज से गाद उठा के और बीज बखेर दें ये अपना मुंजी का, तो इसी प्रकार इनका बीज बढ़िया जम जाएगा। लेकिन एक ये ध्यान रखें, लगभग 2-4 दिन उसे पंछी ना चुगें।
1: अच्छा,
0: और दूसरी विधि ये भैया, पलेवा कर दें अपने खेत का, और जब वो उसमें फावड़ा वगैरह चल जाए या कल्टीवेटर चल जाए हल चल जाए तो उसको भैया बीज बिखेर के उसमें हल्की हल्की गुड़ाई उसकी कर दें, चाहे कल्टीवेटर से कर दें या टीलर से कर दें।
1: बिल्कुल,
0: और उस पर हल्का सा पाटा लगा दें, तो इस प्रकार से भी ये जो है इनका बीज बहुत अच्छा जमेगा और इसमें पक्षी भी कम चुगते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यानी कि पक्षियों का नुकसान भी कम होता है, तो इस प्रकार से इसको बो सकते हैं।
1: और भैया तम कहो तो भैया एक पत्र और ले ले मैं।
0: बिल्कुल ले लो
1: भैया, ये पत्र हमें मिला है ग्राम छजूपुरा तगा तहसील मंडी धरोहरा और जिला है भैया अमरोहा से, और लिखने वाले हमारे श्रोता है आलोक कुमार, प्रशांत कुमार, विक्रांत कुमार, दिवेश चौधरी और सौरभ चौधरी।
0: तो ये क्या लिखते हैं
1: भैया, ये लिख रहे हैं कि इस समय भैया ये जानना चाह रहे हैं क्या इस समय भी ये भिंडी की फसल को बो सकते हैं और भिंडी की कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो इनके बुआई के लिए उपयुक्त हैं।
0: देखिए भैया, भिंडी की फसल तो इस समय फल भी दे रही है, जो हमारे किसान भाइयों ने फरवरी में बोई थी
1: जी
0: उस पर खूब फलत आ रही है। और भिंडी की फसल की बात ऐसी है कि भिंडी तो भैया पूरी बरसात चलती है, यानी कि खरीफ की जो ये फसल है वो इस समय बो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वर्ष में 2 बार भिंडी बो जाती है, और इस समय ये कह रहे हैं कि कौन सी प्रजाति की बुआई करनी है। तो भैया देखिए, खरीफ की फसल में जो भिंडी की प्रजाति होती है पूसा सावनी,
1: अच्छा
0: पूसा सावनी से बढ़िया प्रजाति कोई हो ही नहीं भाई। इसके जो फल हैं वो भी काफी लंबे लगते हैं और मुलायम होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और इसके पेड़ भी काफी बड़े होते हैं, तो पूसा सावनी की

0: ये बुआई करें, और इस समय तो बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है भिंडी की बुआई का, तो ये इस समय कर सकते हैं बुआई भिंडी की।
1: बिल्कुल भैया, तो उम्मीद है भैया इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो गया होगा।
0: बिल्कुल। और बस देखो पत्र तो हमारे पास बहुत सारे
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: लेकिन अभी इन्हें समेटते हैं क्योंकि कार्यक्रम जो है हमारा समाप्त होने का और
1: बिल्कुल।
0: समय ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं देता। तो जाने से पहले हमारे किसान भाइयों को एक हमारे पास अभी अभी मौसम की चिट्ठी आई है,
1: बिल्कुल
0: तो भैया मौसम की चिट्ठी पढ़कर सुना दो, और उसके अनुसार किसान भाई जरा देख लेंगे भाई किस प्रकार का मौसम रहेगा।
1: बिल्कुल भैया, ये जो मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, ये हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
0: और भैया इसके अनुसार 11 मई को पुनः सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 12 से 14 मई तक तेज हवा गरज के साथ हल्के से मध्यम वर्षा के आसार हैं।
1: और भैया 14 मई के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है।
0: तो भैया किसान भाइयों भैया तैयार रहियो इस मौसम का सामना करने के लिए, और भाई अपने जो है फसलों का इंतजाम करियो, अपने पशुओं के चारे का भी इंतजाम रखियो, और भैया वैसे भी चौकस रहियो जब हवा की चेतावनी है।
1: भैया अब तो चौकस ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे दिन भैया मौसम की जो घटना भैया ये हो जब हो रही है।
0: और भैया मई के महीने में इतनी ठंड कहाँ होती है और इतनी बारिश कहाँ होती,
1: ना ना
0: अब के
1: भैया
0: तो भैया कोई हफ्ता कोई दिन खाली ना जा रहा,
1: बिल्कुल
0: कभी किधर से हवा आ जा, कभी किधर से बादल आ जा, कभी किधर से बारिश हो जा।
1: बिल्कुल। तो भैया दोगुनी मेहनत के साथ हमें डटकर खेतों पर खड़े रहना है, अपने पशुओं को अच्छे तरीके से रखना, देखभाल रखनी उनकी।
0: और भैया जब बिजली कड़कड़ावे या बारिश बारिश का मौसम हो तो भैया बाहर को ना निकलना।
1: हाँ सही कह रहे हो। और भैया ये जो मोबाइल है ना, इसको कम से कम उपयोग करें जब बिजली कड़के तो।
0: हाँ ये भी भैया खतरे से खाली नहीं है, तो किसान भाई जो है बड़ी सावधानी रखें। और अब देखियो किसान भाइयों को जरा अपना पता भी बता दो, ताकि वे ये तो अपनी प्रतिक्रिया बता दें हमें कि उनको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा या वे हमें कार्यक्रम से क्या अपेक्षा रखते हैं।
1: बिल्कुल भैया, तो हमारा भैया पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है भैया 2467-63।
0: और भैया देखिए अब किसान भाई जो है जो हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहें, तो भैया वो हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर लें।
1: बिल्कुल, मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88।
0: जी हाँ 9457-07-8288।
1: बिल्कुल भैया, सबसे पहले उन्हें व्हाट्सएप नंबर को भैया अपने मोबाइल में, बड़े वाले मोबाइल में सेव करना है, और भैया व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से वो हमें अपनी जो भी खेती किसानी से संबंधित समस्या हो, या भैया वो कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, या उन्हें कार्यक्रम कैसा लगा ये बताना चाहते हैं, तो भैया इस व्हाट्सएप संदेश पर भेजकर भैया वो बता सकते हैं।
0: बिल्कुल। या भैया वो हमें कोई समीक्षा या सलाह लिखना चाहते हैं ना, वो भी लिख लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भाई देखिए अब ज्यादा बातें नहीं और यहीं पर कार्यक्रम समेट लिया जाए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: किसान भाई अपने साथी नरेश पाल सिंह,
1: और अपने साथी हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति।
0: किसान भाइयों राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। कानूनी सलाह कार्यक्रम में सुनिए एडवोकेट मुकेश कुमार त्यागी से आलोक कुमार की बातचीत। विषय है रिट याचिका और आम आदमी पर उसका प्रभाव।
1: कानूनी सलाह।
2: श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं श्री मुकेश त्यागी एडवोकेट, जो कि सिविल कोर्ट बिजनौर से हमारे बीच में आए हैं, और आज आपसे हमारी बातचीत का विषय है रिट।

0: और आम आदमी पर उसके प्रभाव। तो त्यागी जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद। आप सब सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले हम वकील साहब ये जानना चाह रहे हैं कि जो रिट है इससे आम आदमी क्या समझे।
1: आलोक जी, ये बड़ा जरूरी और भारत के हर नागरिक को जानने के लिए विषय है और बहुत इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ गई है। रिट से मतलब आप ये समझें कि जहां कहीं किसी आदमी के मूल अधिकारों का हनन है, उसके हनन के खिलाफ कोई कार्य किया जा रहा है, चाहे उसमें कोई भी लोक अधिकारी हो, इवन गवर्नमेंट हो, राज्यपाल हो, अगर वे कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई ऐसा कानून बनाते हैं या कोई भी एक्ट ऐसा करते हैं जिससे आम आदमी के उन मूल अधिकारों का हनन हो, तो आदमी उसे चैलेंज दे सकता है। ये रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पड़ेगी। संविधान में इसकी व्यवस्था हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 में की गई है।
0: अच्छा, तो देखिए, ये तो आपने बड़ा विस्तार से समझाया कि क्या है और किन किन के खिलाफ ये हो सकती है। मुख्य बात ये निकल के आ रही है कि इस रिट डालने से क्या समाधान निकलेगा।
1: पहले देखना यह है लोग जी कि रिट का आपका विषय क्या है, किस समस्या या किस हनन के लिए आप रिट डालने की बात आपके सामने आती है। अब इसमें दो चीज है, या तो आप हाई कोर्ट जामे या आप सुप्रीम कोर्ट जामे। कब तो आप हाई कोर्ट जामेंगे और कब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये एक श्रोताओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब अगर कोई स्टेट जैसे यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है, यहाँ का कोई अधिकारी या यहाँ की सरकार कोई ऐसा एक्ट बना दे कि वो इन अधिकारों जो मूल अधिकार आदमी के हैं उनके खिलाफ हो, उनका हनन करता हो
0: जी,
1: तो आप हाई कोर्ट जाएंगे
0: जी।
1: अब इस यहाँ जानना यह जरूरी है कि आम आदमी के मूल अधिकार क्या हैं, उनका हनन का निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो जो संविधान में मूल अधिकार हमारे दिए गए हैं नागरिकों के
0: जी,
1: उनका जानना बहुत जरूरी है। पहले मूल अधिकारों में जो मेन है, एक तो है स्वतंत्रता का अधिकार। आप या कोई भी अधिकारी या कोई भी अथॉरिटी आपको आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती।
0: अच्छा,
1: और अगर आपको कहीं बंदी बना लेती है किसी बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना कोई अपराध किए, ऐसा समझे आप
0: जी जी,
1: तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि मुझे साहब, इन्होंने बिना किसी कारण के, बिना कोई अपराध करे, मुझे बंदी बना कर रख रखा है इन्होंने।
0: अच्छा।
1: अब वो आदमी तो बंदी है, उसका कोई रिलेटेड, कोई संबंधी, कोई मित्र, इवन एनीवन, हाई कोर्ट जा सकता है कि साहब इस आदमी को इन लोगों ने खिलाफ कानून के पकड़ के बंद कर रखा।
0: अच्छा,
1: तब हाई कोर्ट इस पर एक्शन लेगी और अगर वो कैद आपकी अवैधानिक है तो उसे क्वेश कर देगी, खत्म कर देगी।
0: अच्छा,
1: तो एक तो अधिकार जैसे मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है, तो ये अधिकार वे अधिकार हैं कि इनके खिलाफ राज्यपाल, राष्ट्रपति, कोई भी आदमी कोई कानून पारित नहीं कर सकता। अब सपोज ऐसे मानिए आप कि ये यूपी गवर्नमेंट कोई एक ऐसा एक्ट बना दे कि जिससे इन संविधान के अधिकारों पर फर्क पड़ता हो, तो हाई कोर्ट आप जाएंगे और वहां आप काउंसिल करेंगे, काउंसिल को अपने सारे तथ्य बताएंगे, वे उसे ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद आपकी रिट मूव होगी हाई कोर्ट में।
0: अच्छा,
1: और यहाँ इसमें ये भी है लोग जी
0: जी
1: कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकती।
0: अच्छा,
1: मान लिया कोई नहीं गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसा भी मैटर हो
0: जी,
1: और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की नॉलेज में ये बात आती है समाचार पत्रों से, टीवी से या कैसे भी, कि ये एक कानून ऐसा पारित कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जो संविधान की आत्मा के या संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके खिलाफ है, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस इशू कर सकती जो भी उससे संबंधित पक्षकार है उन्हें।
0: अच्छा, देखिए, अभी आपने एक बात की थी कि कोई आदमी बंद है और वो जो है अपनी रिट दायर करे और उसकी कैद जो है वो खत्म हो जाए। कि मान लीजिएगा कि किसी को बंद कर दिया और उसका भाई अपराधी है और उसके भाई को पुलिस ले गई और उसको एक या दो दिन तक उन्होंने कैद में रखा और वो उसने रिट भी डाल दी, तो अब उसको ये सबूत देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या मतलब कोई गवाह की जरूरत होती है, क्या जरूरत पड़ती है, कैसे वो साबित करे कि भाई हमारे भाई को या जिस आदमी को वहां पर रखा गया वो गलत है।
1: ये बड़ा जरूरी आपका एक सवाल है कि एक आदमी कैसे साबित करे, क्यों पुलिस वाले रिकॉर्ड में तो रखने के नहीं, हमने इस आदमी को अरेस्ट कर रखा।

0: ये ज्यूरिडिक्शन आपका फिर डैमेजेस में आवेगा और ये ज्यूरिडिक्शन यहीं को अदालतों को बनेगा। अब आपको ये साबित अदालत में करना, ओरली या डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंस आपके पास हो कि ये वो आदमी पकड़ कर इन्होंने 3 दिन रखा
1: अच्छा।
0: अवैधानिक कैद में। हाई कोर्ट रिट में तो ये मानेगी कि भाई ये आदमी आया है और क्या इसे पकड़ा है और क्या यो इसकी कैद अवैधानिक है। मान लीजिएगा किसी आदमी को उसने कोई अपराध तो किया नहीं, उसे पकड़ रखा, ये अवैध कैद हो गई। दूसरी चीज, कोई एक्ट है बना हुआ, किसी ने, सरकारी अधिकारी ने किसी दबाव से जबरदस्ती किसी आदमी को पकड़वा रखा, ये अवैध कैद हो गई। और इसमें एक आज्ञा मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सीआरपीसी एक है, उसमें ये प्रावधान है कि अरेस्टिंग के विद इन 24 आवर कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहां उसे पेश करना पड़ेगा। वो मजिस्ट्रेट साहब ये तय करेंगे कि इस आदमी को जेल भेजा जावे या इसे छोड़ दिया जावे। अगर
1: अच्छा।
0: 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं तो भी रिट लाई हो सकती है कि साहब 24 घंटे हो गए इसे, और ना तो किसी मजिस्ट्रेट के ही ना पेश करा और ना किसी उन जेल भेज के अदालत की कोई कार्यवाही इसमें पूरी की गई।
1: अच्छा। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि साबित तो करना ही पड़ेगा।
0: साबित बिल्कुल करना पड़ेगा, और वो साबित करने का यही प्रावधान है कि जिन लोगों ने आपको पकड़ते हुए देखा हो, आजकल मोबाइल चल रहे हैं, सब लोगों का जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो ये सोच के आम नागरिक चुप ना रहे कि ले गए होंगे किसी को पकड़ के, हमें क्या मतलब है, या ले जाए इसके घर के जाने, हमें क्या मतलब है। आप देन एंड देयर जितना संभव हो सके फोटोग्राफी कीजिए उन लोगों की, और उच्चाधिकारियों के जैसे एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, इन लोगों को हो सके तो फैक्स वगैरह कोई आप तुरंत इमिडिएटली एक्शन लेते हुए कर दें, तो वो आपके प्रूफ के तौर पर काम आएगा कि भाई जब हमें पकड़ा नहीं, हमने कोई अपराध नहीं करा, तो हम पुलिस वालों पर या किसी भी चीज पर, किसी अधिकारी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हमें पकड़ लिया। ये सब आपके एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज होगा, जिन्हें आप साबित प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, बात ये आ गई, हमें पता चल गया कि किन किन बातों के ऊपर हम रिट दायर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि रिट दायर की कहां जाएगी, एक आम आदमी कैसे समझे।
0: हाँ, मैं ये आपको शुरू में भी थोड़ा बताया और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर किसी स्टेट के अथॉरिटी या स्टेट के कर्मचारी या लोक अधिकारी जी स्टेट के अंडर है, एक ही स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो हाई कोर्ट आप जाएंगे।
1: अच्छा।
0: कि जैसे सपोज कीजिए बिजनौर से कोई आपको पुलिस वाला परेशान करता है या कोई अधिकारी परेशान करता है, इसमें और भी मैं आगे को बताना चाहूंगा। इससे पहले आपको एक तो हुआ आदमी को दिए हुए अधिकार, दूसरे लोक अधिकारियों पे जो कर्तव्य सौंपे गए हैं अगर कोई उनका पालन नहीं कर रहा या उन अधिकारों से बाहर जा रहा है जो उसे सौंपे हुए हैं, तो भी आप रिट में जा सकते हैं। सपोज आप एक आदमी को देखते हैं कि भाई ये आदमी काम कैसा कर रहा है, ये तो 64-65 साल इसकी उम्र हो गई, इसे रिटायर हो जाना चाहिए था, ये कैसा काम कर रहा है, तो आप अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट उसे एक नोटिस जारी करके ये पूछ सकती है कि आपकी आधिकारिकता क्या है, आप कैसे योग्य हो इस पद के लिए। दूसरी चीज, अगर कोई अधिकारी जो उस पर कर्तव्य सौंपा गया है उसका पालन नहीं कर रहा, तब भी आप हाई कोर्ट रिट में जा सकते हैं। तो ये नहीं है केवल कि स्वतंत्रता से छीन ली किसी की तो ही रिट का है,
1: अच्छा।
0: अगर कोई सरकारी अधिकारी लोक सेवक अपना कर्तव्य नहीं कर रहा, पालन नहीं कर रहा, या उससे ज्यादा की एक्सरसाइज कर रहा है जो उसे अधिकार है, तब भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है। अब जो सवाल आपका मूल था कि आदमी कब हाई कोर्ट जावे और कब सुप्रीम कोर्ट जावे, तो ये तो मैंने बताया कि कब हाई कोर्ट जावे, अगर एक स्टेट का मैटर है, उसके ही लोक अधिकारी या उसके अंडर ही एक ही स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो हाई कोर्ट लाई कर जाएगी, हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन इसका बन जाएगा।
1: अच्छा।
0: और अगर एक स्टेट से ज्यादा का मैटर है, तब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जावेगा।
1: अच्छा।
0: इसका उदाहरण एक मैं आपको बताऊंगा, जैसे कावेरी जल विवाद है, तो ये आपका चला तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, ये सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई इसमें।
1: अच्छा।
0: अब एक सवाल ये और है कि स्वतंत्रता का हनन अगर है तो कोई भी आदमी जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और ये बाकी जो रिट हैं 5 प्रकार की जो मेन और हैं, निषेधाज्ञा भी जारी कर सकती है, एक निषेधात्मक भी रिट होती है,
1: जी
0: या

0: के भाई तू कैसा काम कर रहा है यहाँ, इनमें कौन आदमी जावे? तो इनमें वो आदमी जावे जिसके अधिकार किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।
1: अच्छा, एक और बात है, आजकल हम देखते होंगे कि नौकरी हम आम आदमी कर रहे हैं, सामान्य कर रहा है, और कोई मान लीजिएगा कि छोटी पोस्ट का कोई अधिकारी है और बड़ी पोस्ट वाला उसको परेशान कर रहा है, तो वो मतलब अपने विभाग में रिट डालेगा या वो भी कोर्ट में जा सकता
0: ना
1: है?
0: वो फिर विभागीय हो गया, क्योंकि मान लीजिए उसे भी ड्यूटी सौंपी गई है, उसके ऊपर भी ड्यूटी है। वो अगर उसका अधिकारी उससे इलीगल काम करने के लिए कोई कह रहा है तो नहीं कह सकता,
1: अच्छा,
0: और अगर वो कह रहा है तो उसे कोई बाउंड नहीं कर सकता कि तू ये काम करे ही करे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कर रहा है तो इस बात की उनसे ऊपर के अधिकारियों को अपने सूचना दें लिखित में, और अगर संभव है कोई आपके यहाँ डेली की वो डायरी या कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि आज आपने क्या कार्यवाही की, तो ये सब चीजें उसमें भी मेंशन वे
1: कर
0: करें।
1: सकते हैं। तो अब हम वकील साहब अंत में ये जानना चाहेंगे कि इस संदर्भ में और क्या-क्या खास बातें हैं जिनका आम आदमी को ध्यान रखना चाहिए।
0: ध्यान ये रखना चाहिए,
1: जी
0: सबसे पहली जरूरी बात, संविधान ने जो मूल अधिकार दिए वे इसलिए दिए कि एक आम आदमी का हनन ना हो सके, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके
1: जी
0: और उसका उत्पीड़न

0: है या कोई भी है, हिम्मत करिए, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लीजिए। जो आप कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू करिए, आपको पूरी पावर दी हुई है। हर ये संवैधानिक रेमेडी आपको लोगों को अवेलेबल संविधान से इसीलिए कराई गई है कि कोई आपके अधिकारों का हनन
1: न कर
0: ना कर
1: सके।
0: सके, आपके सिर पर चढ़कर कोई एक तरह से मान ले ना बैठ सके, अपने कर्तव्यों के पालन से इनकार ना कर सके, अपने को जो शक्ति संविधान से मिली है हर अधिकारी को उससे बाहर जाकर कोई कार्य ना कर सके। इसकी रोकथाम, इसकी देखभाल एक आम आदमी के ही हवाले है। उसे ही अपनी तैयारी देखनी पड़ेगी कि भाई क्या यो हो रहा है, हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। केवल ये मान के कि मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं, इससे काम नहीं चलेगा मेरी राय में। तो
1: अच्छा, तो कुल मिलाकर हर आदमी को जागरूक होने की आवश्यकता है।
0: आवश्यकता है बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक आप लाए हैं, रिट एक बहुत अच्छी पावर है, संविधान द्वारा दी हुई शक्ति है एक आम आदमी के लिए। इसका प्रयोग हर आदमी को करना चाहिए, और ये भी ना हो कि बिना वजह किसी का उत्पीड़न सरकारी अधिकारी का या किसी का भी किया जावे, ये भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, सबके अपने अधिकार हैं, सबके अपने कर्तव्य हैं, उनका पालन होना चाहिए।
1: तो वकील साहब, आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कानूनी सलाह, कानूनी सलाह।
3: रिट याचिका और आम आदमी पर उसका प्रभाव। कानूनी सलाह कार्यक्रम में अभी आप एडवोकेट मुकेश कुमार त्यागी से आलोक त्यागी की बातचीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत हैं छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है तीसरी कसम फिल्म से।

फिर वही रात। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही छाया गीत अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है देशकान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती कल रात्रि 9:30 पर और कल रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुनिएगा कल सवेरे 6:05 पर। श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 6:30 पर। कल सवेरे 6:45 पर काव्य धारा क्रम में श्री सुधीर कुमार शर्मा का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सवेरे 7:31 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में अपर्णा श्रीवास्तव के गाए रोहिलखंडी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 9:25 पर। कल सवेरे 9:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम बात आसपास की। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर सुनिएगा कल सवेरे 10:00। गोल्डन हिट्स होंगे कल सवेरे 8:45 पर। कल सवेरे 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम जिंदगी लाइव का समय रहेगा कल दोपहर 12:05 पर। महिला जगत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल दोपहर 1:15 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर बालेश्वर और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। एक ही गीतकार ये कार्यक्रम आप सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम का समय रहेगा कल शाम 5:15 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर लोकगीतों और रागनियों का सजीव फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी सुनवाया जाएगा। विविध क्रम में कल शाम 6:45 पर डॉक्टर सुष्मिता शर्मा की वार्ता का विषय होगा समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:00

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
2: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
1: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित

0: आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
2: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
3: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, बहुत लाइटली तो छींटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की

0: श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर शाम के 7:31 हुए हैं। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए विविध कलाकारों के गाए चंद नाथ।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए नात। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

हम तुम्हारे हैं सनम। अभी आपने इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को सुना। गीतकार समीर और संगीत दिया था निखिल विनय ने। कार्यक्रम का अगला गीत है वर्डली ब्रदर्स जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया है पिंजर फिल्म से। गीतकार गुलजार हैं और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

जोगी फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में यह गीत सुना। गीतकार रवि और संगीत दिया था शकील बदायूं ने नी ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत है कुमार सानू की आवाज़ में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। गीतकार जावेद अख्तर हैं और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म में कुमार सानू के गायज गीत के साथ ही कार्यक्रम की संध्या अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बाजीगर फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म से कुछ गीत। गायक कलाकार थे कुमार सानू और अलका याग्निक। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार

0: बनी है हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की

निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंक के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी। कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू

0: पीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। त्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 1

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and Tobago Daily Express newspaper. Raksha Mantri Rajnath Singh has said that national security goes beyond border protection and includes the safety of society, environment and citizens. Addressing an event marking 10 years of Tiranga Mountain Rescue with the Indian Army in New Delhi, he said a strong India ensures secure borders, confident communities and protecting of lives during disasters. He added that Tiranga Mountain Rescue has become a key support system for the armed forces and local communities in the Himalayas. Health Ministry has activated precautionary surveillance measures amid low global risk assessment of the hantavirus cases. Sources said the Health Ministry is closely monitoring the evolving situation relating to reported cases of hantavirus infection on board the cruise ship MV Hondius. This is being done in coordination with the National Center for Disease Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization and other international health authorities. Sources stated that as per preliminary information shared through the WHO under the International Health Regulation Framework, a total of 8 probable cases of hantavirus infection have been reported on board the vessel, of which 5 cases have been laboratory confirmed. 3 deaths have also been reported. WHO was notified of the incident in the first week of this month. In view of the evolving situation, the Public Health Emergency Operations Center under NCDC convened a high-level review meeting involving senior officials to assess the situation and review preparedness measures. Government has said domestic LPG supply across the country is smooth and no dry out have been reported at any distributorship. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that government's effort has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. Director of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Opesh Kumar Sharma, said that the government continues to engage with every stakeholder to ensure the welfare of all Indian seafarers and uninterrupted maritime operations.
1: All Indian seafarers in the region are safe and there is no incident involving Indian flag vessel reported in the past 48 hours. The ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,019 Indian seafarers so far, including 20 in the last 48 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported.
0: Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that the government continues its outreach to countries in the Gulf. He informed that as part of that, Foreign Secretary Vikram Misri paid an official visit to UAE yesterday. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force, IAF, have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. Raksha Mantri Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden-flight trial. He described it as a significant development in advancing India's indigenous defense capabilities. Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. India's Simranjeet Kaur advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. Simranjeet defeated her Chinese Taipei counterpart Fong Yu Zhu 6-0 in straight sets in the quarterfinal to move within one win of her maiden World Cup medal. Simranjeet will now face world number one Kang She-young of South Korea in the semifinals. Indian women's recurve team has already assured the country's first medal in the tournament with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semifinal yesterday. In football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asia Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in the final Group B fixture at Suzhou in China today. For India, Preetika Burman in the 7th and 85th, Alva Devi Senjam in 36th and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-final of this tournament would guarantee India's spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. And in IPL cricket, Delhi Capitals have set a target of 143 runs for Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi. Put into bat, Delhi Capitals scored 142 runs, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal. swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरीब बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरीब बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: कल सुबह सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर मुनाकिद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
4: आज सुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
2: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली है, अरकान कानून साज असेंबली है कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके सीपीआई और सीपी

0: आईएम नेज आईयूएमएल के दो दो अरकाने कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकाने कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज टीवीके पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था, हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनुष्यात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी पांच बच्चों को मनुष्यात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनुष्यात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनुष्यात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मनुष्यात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये माशरे माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नजर कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दो दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए। ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकतदारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 5वीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के उसूल का एआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्समे तक एक

0: मीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। यह आला सतही जायजा फाल हुकुमरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेशगी वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोख और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे एक माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निमटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें एक माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नजर एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक्वामी सेहत हुकाम के तावुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजव्वजा आराजी के पैमाइश के इकदाम क़िता आराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान यह फैसला किया गया। जस्टिस GS कुलकर्णी और अद्वे सेचना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी मनसूबाबंदी की इंतहाई नाकिस पेशरफ्त पर तनकीद की और कहा कि यह कानून 5 दहाइयों से ज्यादा नाफिजुल अमल है। खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पैरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंग यू जू को सीधे सेटों में 0 के मुकाबले 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ 1 जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की किम श्यून से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले BJP के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज दिन है शुक्रवार, रात्रि के 9:30 हुए हैं और हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। तो आप भी इस कार्यक्रम में हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं अपने मन की बातें और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत और अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। तो हमसे बातें करने के लिए आपको चाहिए होंगे हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9457078288 और 01341230105। आप इन दोनों मोबाइल नंबर्स पर, दोनों दूरभाष संख्याओं पर हमसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। और अब वक्त ज़ाया ना करते हुए ये देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो नजीबाबाद।
1: हाँ जी सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव तहसील कुमराज जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित होता हूँ। बड़ा गाँव से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: जी मांगीलाल धाकड़ जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ सर जी, आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मांगीलाल जी, मांगीलाल जी, आप खेती किसानी करते हैं?
1: जी मैं खेती के बारे
0: हाँ,
1: कहता
0: पिछले
1: हूँ
0: कार्यक्रमों में आपसे कई बार बात हुई है मेरी
1: जी।
0: तो।
1: जी शर्मा जी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल।
1: जी
0: तो
1: जी सर जी, आपसे पिछली बार भी बात भई थी मेरी।
0: हाँ, तो मांगीलाल
1: जी
0: भाई
1: सर जी,
0: एक बात पूछना चाहते हैं कि आप
1: हाँ
0: इस
1: पूछो।
0: समय जब मौसम की स्थिति है वो वहाँ मध्य प्रदेश में कैसी है?
1: मध्य प्रदेश में सर जी काफी 2-8 दिन पहले आंधी हवा तूफान पानी से नुकसान भाया था
0: अच्छा
1: जी, बहुत भयंकर तूफान आया था।
0: हाँ, तूफान आ रहे हैं थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और
1: जी सर
0: जिसी
1: जी,
0: जिसकी वजह से तूफान भी आ रहा है और हल्की बारिश भी हो रही है, बादल भी छाए रहते हैं और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है।
1: अब ये 2-4 दिन से जरूर मौसम अच्छा है।
0: हाँ, इस वजह से थोड़ा सा गर्मी से राहत भी मिली है।
1: जी जी सर जी, और सम्मेलन चल रहे हैं हमारे समाज में जी,
0: अच्छा
1: शादी शादी का सीजन चल रहा है,
0: हाँ,
1: और इसमें परेशानी आती है सर जी।
0: हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि शादी की पूरी तैयारियां हैं और सब कुछ लगा हुआ है, सारा भोजन बना हुआ है और सारी व्यवस्था कर दी गई है और अचानक से शाम के समय जोरदार
1: जी
0: आंधी चलती है, हवाएं आती हैं, तो बहुत सारी
1: जी
0: समस्याओं का सामना करना पड़ता है होस्ट को
1: जी
0: जो ये सब चीज़ को आयोजित कर रहा है, उनके परिवार वालों को तो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल, परेशानी जो मेहमान आते हैं उसे भी दिक्कत पड़ती है
0: जी हाँ बिल्कुल, मेहमान भी नहीं पहुंच पाते हैं कभी कभी,
1: जी,
0: मौसम इस तरह का हो जाता है और
1: हो
0: इससे
1: जाता है
0: नुकसान हो
1: जी।
0: जाता है। हाँ, ये तो एक ऐसा नुकसान है जो थोड़ा सा हमें सबको बहुत कष्टदायी होता है, हम सबके लिए और खास तौर पर उस होस्ट के लिए जो इस तरह का
1: जी
0: इवेंट आयोजित कर रहा है। तो मांगीलाल भाई, अभी अभी आपने बोला था कि आंधी तूफान
1: जी
0: आए और बहुत नुकसान हुआ, इसके अलावा जो
1: जी
0: अभी आपने, आपकी हमारी बात हुई शादी और विवाह से संबंधित,
1: जी
0: इसके अलावा खेती किसानी में तो सब ठीक है या वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुई है इस आंधी तूफान
1: नहीं
0: की
1: नहीं
0: वजह से?
1: खेती किसानी में तो सब ठीक ठाक है। अब काय फसल तो निकाल दिए हैं, और कुछ
0: हाँ
1: बेचने के लिए भी मंडी ले गए
0: हाँ तो मतलब
1: जी।
0: वहाँ सब सेफ
1: सुरक्षा
0: है।
1: से, मतलब फसल को सुरक्षा से रख लिए, कोई दिक्कत
0: हाँ,
1: नहीं है
0: ये तो बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि किसान का जो है ना पूरा जो,
1: जी। बहुत बहुत मेहनती
0: हाँ
1: बातें हैं, हम तो किसान
0: हाँ
1: हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, और आपस में बहुत मेहनत पड़ती है हमको
0: हाँ बिल्कुल, एक पूरे सीज़न की जो मेहनत होती है अगर लास्ट मोमेंट पे, अंतिम क्षणों में वो मौसम
1: जी।
0: ख़राब हो जाने के कारण वो हमारी फसल बर्बाद होती है तो किसान बोलते हैं कि बहुत दुखी होता है। और हमने देखा भी है कि हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं अपने किसी भी फसल को उगाने के लिए और उस समय यदि लास्ट
1: हाँ जी,
0: मोमेंट पे,
1: मौसम
0: हाँ
1: अचानक ही बिगाड़ जाता है तो बहुत दुख पहुंचता है
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे मांगीलाल धाकड़ भाई?
1: जी। मैं आज, फिल्म का नाम है संगीत,
0: जी
1: उसमें ये गीत है, मैं एक आवारा है कि बंजारा मेरा, पूछो ना पता ना दिलदारा,
0: अरे
1: और
0: वाह,
1: कुछ नाम है मित्रन के लिए आना चाहता हूँ सर,
0: हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं।
1: जो हमारे परिवार के हैं,
0: हाँ,
1: धीरन धाकड़ हैं, मंगल धाकड़ हैं, और काना है, और कुछ नरेश प्रजापति हैं, गजराज सिंह लोधी जी हैं, अमर सिंह बिलाला जी हैं
0: जी तो मांगीलाल भाई लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: तू मौजूद है जरा पढ़ के देख, तू मौजूद है जरा पढ़ के देख, मेरे शेर के मिसरों से जरा गुजर के देख। तुझे लिखकर महसूस कर लिया है, तुझे लिखकर महसूस कर लिया है, ये नजारा भी जरा तू आके देख।
0: क्या बात है, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: जी वकार भाई, कैसे हैं आप?
1: जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और आज मेरी हेलेना जियोवाद में कम से कम 1 साल बाद कोल शामिल हो रही है।
0: हाँ, ये तो है, क्योंकि आपको मालूम ही है और अक्सर हमारे सभी श्रोता इस मुतालिक काफ़ी बार आकाशवाणी में लिखते रहते हैं कि हमारी कॉल कार्यक्रम में शामिल नहीं होती थी। और वक्कार भाई, आप भी जानते ही हैं कि एक ही
1: जी
0: समय में बहुत सारे श्रोता लगातार कॉल करते रहते हैं, तो वो हमारा
1: बिल्कुल।
0: भाग्य, हमारा लक होता है कि किसका कॉल पिक हो जाता है और उसके बाद
1: हालांकि
0: हम।
1: हालांकि सर पहले दिनों में, पिछले दिनों में ऐसा होता था कि हमारी महीने में या 2 महीने में कभी ना
0: हाँ
1: कभी कॉल शामिल हो जाया करती थी,
0: हाँ
1: लेकिन आज मुझे खुद इतना लंबा इंतजार करना पड़ा है।
0: हाँ वकार भाई, उसका एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि पिछले एक
1: जी
0: या 2 साल से जो न्यूज़ ऑन AIR ऐप है, उसके माध्यम से रेडियो को बहुत दूर दूर तक सुना जा रहा है, और जिसकी वजह
1: और
0: से आकाशवाणी का जो दूरभाष नंबर है, तो वो सभी श्रोताओं तक, और ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंचा है, और वो भी कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: सर दूसरी चीज ये है कि हमारा जो आकाशवाणी नजीबाबाद है ना सर, वो एकदम नंबर 1 पोजीशन

0: करनी चाहिए। और आप
1: बिल्कुल
0: लगातार एक
1: सर,
0: साल तक, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप पिछले एक वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उस निरंतर प्रयासरत रहने के कारण ही आज आपकी कॉल लग गई। कभी-कभी ऐसा होता
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: हम किस
1: आज सर, मैं
0: हाँ
1: जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो
0: हाँ
1: मैं आज मेरे मन में भी था कि आज हो ना हो मेरी कॉल आज लग सकती है, क्योंकि तो आप
0: क्या
1: आपको मैं अपना लक्की चार्म मानता हूँ सर। हमेशा ऐसा
0: बात
1: हुआ है कि जब जब सचिन भाई आए हैं और मेरी
0: है,
1: कॉल मतलब 99% ऐसे चांस रहे हैं कि मेरी कॉल कनेक्ट हुई है।
0: क्या बात है। तो वकार भाई, मैं यही बात कह रहा था। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जीवन में दो फेज होते हैं, या तो हम सफल होते हैं या हम असफल होते हैं। हमारे सारे श्रोता सुन रहे हैं, या तो हम सफल होते हैं या हम असफल होते हैं। तो जब हम सफल हो जाते हैं तो शायद हमें उस सफलता का वो मोल पता नहीं होता,
1: पता
0: लेकिन
1: नहीं होता।
0: लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमारे पास फिर से दो विकल्प होते हैं, या तो हम छोड़ दें यानी कि क्विट
1: या
0: करें,
1: कोशिश करें।
0: या फिर कोशिश करें। तो अगर जो लोग छोड़ देते हैं तो वो सफलता का जो स्वाद है ना, उसे
1: नहीं
0: कभी
1: चख
0: नहीं चख
1: पाते।
0: पाते। लेकिन
1: बिल्कुल
0: उस असफलता को, जो हम एक बार फेल हुए, हमारी कोशिश नाकाम हुई, हम उसको भूलकर दोबारा से प्रयासरत रहे, तो हमारी कोशिश एक बार फिर से सकाम हो जाती है और हमें हमारी मंजिल मिल जाती है। तो
1: और
0: लगातार
1: सर
0: कोशिश
1: एक
0: करते
1: आज
0: रहने
1: एक
0: से, हाँ
1: खुशी का दिन भी है। आकाशवाणी के हमारे 90 वर्ष पूरे हुए
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। तो सर इस लक्की दिन पे भी मेरी आज कॉल लगी है, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ आज।
0: हाँ। आप भी हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, और आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और 90 साल बेमिसाल आकाशवाणी है ना। तो
1: बिल्कुल,
0: ये
1: 90 साल
0: हमारा मोटो रहा
1: बेमिसाल।
0: है
1: और ये
0: आज।
1: जो हमारा सफर है ना सर,
0: जी
1: हमारा जो दोस्ती का जो ये रिश्ता है,
0: जी
1: हमेशा ही ये बरकरार
0: जी हाँ
1: रहेगा।
0: बिल्कुल। आकाशवाणी के समस्त केंद्रों पर आज एक वॉकेथन का आयोजन किया गया था सवेरे 7:30
1: हाँ,
0: बजे से 9 बजे
1: सभी
0: तक।
1: सभी केंद्रों पे
0: और
1: ये हुआ
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, और इसका सीधा जो प्रसारण था हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद ने, अब जो हमारे केंद्र से एक वॉकेथॉन आयोजित की गई थी, उसका सीधा प्रसारण अपने सभी सुधी श्रोताओं तक पहुंचाया था 7:30 से 9 बजे तक। आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं ने वो सुना भी होगा।
1: बिल्कुल,
0: और
1: लाइव लाइव उसका टेलीकास्ट लाइव मैंने
0: जी
1: देखा
0: हाँ
1: है पूरा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था।
0: हाँ आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर भी वो लाइव था, और इंस्टाग्राम का जो आकाशवाणी का अकाउंट है उस पर भी वो लाइव था। तो मतलब
1: बस
0: उस
1: प्रोग्राम के
0: हाँ
1: माध्यम से सर यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको
0: हाँ
1: रेडियो के प्रति जागरूक किया जाए।
0: हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि
1: कहीं ऐसा ना
0: हाँ
1: हो, ऐसा लग रहा है सर कि आजकल के जो हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, वो मोबाइल में इतना लुप्त हो गए हैं कि वो, मुझे लग रहा है वो प्रजाति जो है ना रेडियो वाली, वो विलुप्त ना हो जाए कहीं।
0: नहीं, बिल्कुल विलुप्त नहीं होगी, और उसके लिए निरंतर आप और हम जैसे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और अपने नए नए साथियों को, अपने नए नए श्रोताओं को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने
1: क्योंकि
0: नए नए
1: सर
0: लुभावने कार्यक्रमों के
1: जितना
0: माध्यम से।
1: आनंद और जितना अपनापन रेडियो से मिलता है और जो मिला है अभी तक, मैं
0: हाँ
1: नहीं मानता कि मेरे मतलब किसी भी चीज में वो आनंद आता है। हम
0: हाँ
1: भले ही मोबाइल चला रहे हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सब जी, लेकिन वो आनंद नहीं आ पाता है
0: हाँ, ये बात आपने
1: जो रेडियो से आता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कही, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आप सुन भी रहे हैं, और अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो बिना रुके आप अपना कार्य भी कर रहे हैं, है ना। और बाकी
1: बिल्कुल
0: अन्य
1: सर,
0: जो साधन है जिसमें वीडियो ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी नज़रों को केवल वीडियो या स्क्रीन पर टिका देते हैं, और वहीं पर फिर हमारा काम बाधित हो जाता है। तो रेडियो एक
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: माध्यम है कि जिसने बहुत से लोगों को मदद की है, और उनके मनोरंजन में भी उनका साथी रहा है, उनके ज्ञान वर्धन में भी उनका साथी रहा है, और इस प्रकार से रेडियो की यात्रा के 90 वर्ष आज पूर्ण हुए। और वकार भाई आज
1: बिल्कुल सर। और एक चीज और कहना चाहूंगा,
0: जी
1: जैसे कि रेडियो से हमारे बहुत सारे लिसनर जो हैं, लिसनरों का बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही सारे लिसनर हैं जो जुड़े हुए हैं,
0: जी
1: तो मैं
0: हाँ
1: उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो परिवार में भी कहीं ना कहीं किसी को भी मतलब किसी एक को ये रेडियो के प्रति मतलब लगाव उनका जो है वो बढ़ाए, और उनसे उनसे कहे कि रेडियो को सुने और
0: हाँ
1: रेडियो से जुड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और इस बात से हम बिल्कुल आपके एग्री हैं। और अब मैं वकार भाई, काफी देर हो गई, हमारे और भी श्रोता
1: हाँ
0: इंतजार
1: सर
0: कर रहे होंगे,
1: बिल्कुल,
0: आज आप
1: क्योंकि
0: कौन सा गीत सुनना
1: सर
0: चाहते
1: आज
0: हैं?
1: क्योंकि कॉल इतने लंबे समय के बाद लगाया तो सर मन ही नहीं भर रहा।
0: हाँ बिल्कुल, तो आज आप कौन सा गीत सुनना
1: सर फिल्म का
0: चाहेंगे?
1: नाम है गदर 2, और गीत के बोले फिर से एक बार उजड़ जाते हैं
0: जी
1: चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त बोल रहेंगे सर,
0: हाँ
1: उनको ये
0: बिल्कुल
1: गाना मेरी तरफ से डेडिकेट रहेगा और आपको भी,
0: जी
1: जैसे नदीम बाकी, रऊफ एहमद, निजामुद्दीन, आसिफ चौधरी, राशिद अंसारी, मुकेश कश्यप, मोहम्मद फरमान, दिव्यांशु यादव।

0: हेलो नजीबाबाद,
1: हेलो नजीबाबाद सर
0: कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिला भूचपुरा सा बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन बोल रहे सर जी।
0: जी रजा भाई, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है सर, आप सुनिए, आप कैसे हैं? आकाशवाणी नजीबाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया हैं, उम्दा हैं, और आशा करते हैं आप भी बहुत बढ़िया होंगे।
1: जी हम भी बढ़िया हैं, और आपको कॉल लगा रहे हैं, बढ़िया है तो सर जी।
0: हाँ, बिल्कुल। क्या सुनना चाहेंगे रजा भाई आज आप?
1: मेरी कॉल काफी है, समझ लो साल से भी ज्यादा टाइम में मेरी कॉल लगे हैं तो
0: नहीं
1: नजीबात में तुम।
0: रजा भाई, मुझे जहाँ तक ध्यान है पिछले कार्यक्रमों में आपकी और मेरी खूब बात हुई है।
1: जी हाँ, हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसा
0: नहीं नहीं नहीं
1: आपसे
0: नहीं
1: मेरी बात हो चुकी है,
0: हाँ
1: पीछे
0: मुझे
1: पीछे सात
0: याद है
1: साल
0: रजा
1: में हुआ
0: भाई,
1: होगा कुछ,
0: दो या तीन महीने पहले आपकी और मेरी बात हुई थी इसी कार्यक्रम के माध्यम से।
1: हो सकता है सर। शायद मैंने आपसे बात भी करी थी मैं फिर
0: हाँ
1: बिजली की लाइन के बारे में।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं रजा भाई?
1: तो देखिए, इस टाइम हज का महीना चल रहा है, लोग हमारे गांव से, आसपास के गांव से, गांव हमारे गांव में सभी तावजे से हमारे हज को गए हुए हैं, तो मुबारक महीना चल रहा है हज का। तो गाने कुली फिल्म का ये सुनवा देना, मुबारक तुम सबको हज का महीना। कुछ नाम बोलो सर जी।
0: हाँ बिल्कुल।
1: मेरा भाई शाहिद हुसैन, छोटा भाई आदिल हुसैन, मकसूद हुसैन है, और ये लाल मोहम्मद अंसारी हैं, और दोस्त हैं राशिद अंसारी, आसिफ चौधरी, और दोस्त आप और हम।
0: ठीक है, तो रजा भाई लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत अपने सभी दोस्तों के साथ।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह भाई, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे। जी
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है।
1: नजीबाबाद सुनता रहता हूँ कार्यक्रम में जी,
0: हाँ
1: और फोन इन प्रोग्राम में ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ।
0: हाँ
1: उसमें क्या होता है ना जी, आपको बताऊं, जैसे कि हर राज्य के श्रोता अलग अलग अपनी पसंद देखे आते हैं, बातें
0: हाँ
1: करते हैं
0: हाँ
1: और उनकी गाने सुनने को मिलता है, तो कार्यक्रम में और भी अच्छा लगता है, बड़ा
0: हाँ
1: रोचकता
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग रंग के जो हमारे पास कार्यक्रम के अंदर समाहित होते हैं, तो ये कार्यक्रम सतरंगी बन जाता है और इंद्रधनुषी कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि अलग अलग राज्य से अलग अलग जो बोलने का जो डायलेक्ट है, उनका जो स्टाइल है वो अलग होता है, और वो उन सबकी बातें हम सुनते हैं और उन सबके जो पसंद के गीत हम सुनते हैं, तो कार्यक्रम में एक अलग ही मज़ा आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जैसे अभी पिछले श्रोता का कॉल आया था,
0: जी
1: उन्होंने बताया कि उनका कॉल 1 साल बाद लगा है, तो
0: हाँ
1: ये आकाशवाणी का मतलब ऐसा जादू है, जब इतने सारे श्रोता आकाशवाणी के बढ़ चुके हैं तो आपका कॉल कैसे लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत सारे श्रोता अलग अलग राज्यों में, जहाँ पर पहले ऑन एयर कवरेज मतलब प्रसारण नहीं पहुँच पाता था, तो वहाँ पर भी अब न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आकाशवाणी नजीबाबाद को वो सुन सकते हैं, और जब वो उसको सुनते हैं तो कॉल भी लगाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और इसी तरह से कार्यक्रम विविधताओं में एकता वाला कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद हो जाता है ना?
1: बिल्कुल सर, जैसे आपको बताऊं, ऐप पर आने लगा है ना, तो
0: हाँ
1: आकाशवाणी का नेटवर्क पूरे भारत में फैल चुका है। ये
0: हाँ
1: बताओ आपको, भारत तो ठीक, लेकिन भारत के बाहर भी लोग सुनते हैं
0: हाँ
1: आकाशवाणी को।
0: भारत के बाहर भी लोग सुनते हैं। और प्रेम सिंह भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक समय मेरे ही कार्यक्रम में, जब मैं कार्यक्रम यहाँ पर कर रहा था, तो उस समय एक कॉल सऊदी अरब से इस कार्यक्रम में लगी, एक कॉल कतर से आई, तो वो जो पल था ना, वो वाकई में बहुत यादगार पल रहा इस कार्यक्रम के लिए और हमारे आकाशवाणी केंद्र के लिए।

0: कार्यक्रम की उपलब्धि के लिए। तो इस तरह से अगर हमसे श्रोता जुड़ते हैं ना, तो भारत के श्रोता दूर बैठे हुए भी अपना कार्यक्रम सुनते रहते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आज भी उन्हें हमसे जुड़ाव है। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे सभी श्रोताओं को उनका पूरा मनोरंजन रहे, उनसे बातें हों। तो आज आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे प्रेम सिंह भाई?
1: जी सर, फिल्म का नाम है दम लगा के हैसिया और गाने के बोले तुमसे मिला दिल में उठा दर्द करारा।
0: जी
1: जी मैं बताऊं सर, हमारा आकाशवाणी से जब मिले हैं ना हम, तो हमारा दिल में ऐसा ही दर्द करारा उठता है और हमेशा आकाशवाणी से मिले रहते हैं हम।
0: भाई वाह, दर्द करारा आपके दिल में उठ रहा है और हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत, क्योंकि क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी कॉल लगने का इंतजार कर रहे हैं। प्रेम सिंह भाई, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नजीबाबाद,
1: जी नमस्कार सर जी।
0: कौन साहब बात कर
1: जी
0: रहे हैं?
1: मैं सुरेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट अजनर जिला महोगा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ
0: जी
1: सर।
0: सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बस एकदम सर जी ठीक है, लेकिन कुछ मौसम करवट ले रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, गले में खांस खराश लग रही है, जुकाम हो गया है।
0: हाँ, क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी हो रही है और अचानक से आंधी तूफान आ जाता है, बारिश पड़ जाती है, तो मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है, तो तापमान के अचानक बदलने से थोड़ा सा हमें भी दिक्कत आ रही है अडेप्ट करने में जो मौसम है उसके साथ। तो सुरेश भाई, आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, मुझे आप सुनना है, फिल्म का नाम है आंदोलन और गीत के बोले कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे उसका नाम
0: जी
1: और कुछ हमारे श्रोता में चाहिए। इसमें जयपाल
0: जी
1: यादव जी है, मांगीलाल चंदेल जी है, गजा लोधी जी है, विजय पांडे जी है, राम जी गर्ग जी है और जितने लोग हैं सभी के लिए।
0: तो लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: जी
1: हेलो नजीबाबाद,
0: हेलो नजीम, बात
1: कौन साहब बात कर रहे हैं?
0: मैं ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ और
1: जी
0: सचिन शर्मा जी को हमारा प्यार भरा
1: जी
0: नमस्कार।
1: राशिद भाई, आपको भी और आप हमारे सभी सुनने वालों को, आपके परिवार से हमारा प्यारा नमस्कार। और राशिद भाई कैसे हैं आप?
0: हम सब खैरियत से, उम्मीद करते हैं आप लोग भी आकाशवाणी में सब खैरियत से होंगे।
1: चलिए बहुत बढ़िया। आज आप क्या सुनना चाहेंगे राशिद भाई?
0: मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ
1: जी
0: लाडला फिल्म का।
1: जी
0: लाडला फिल्म का वो गीत है मैं तेरा लाडला,
1: हाँ ठीक है।
0: ये
1: तो
0: मैं खास तौर से जी
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ हाँ बोलिए।
0: ये खास तौर से मैं हमारे आकाशवाणी के श्रोता और हमारे दोस्त भी हैं
1: हाँ
0: रऊ भाई निजामुद्दीन भाई को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 10-15 दिन के बीच में उनकी माता का इंतकाल हुआ, अभी
1: अरे
0: डेथ हो
1: अरे
0: गई।
1: अरे, ये तो बड़े दुख की बात है।
0: और हम सब श्रोताओं की तरफ से कहता हूँ और आपकी तरफ से भी कि हम दुख की इस घड़ी में उनके साथ
1: बिल्कुल
0: में,
1: बिल्कुल
0: घबराए
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: हाँ
0: और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता फरमा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: जाते भी आज कुछ बात नहीं करना चाहता, हम भी उनके दुख में शामिल है, बस कुछ
1: जी
0: श्रोता
1: हाँ
0: है उनकी तरफ से मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, जैसे नदीम बागी, आचार्य सत्यवीर सिंह,
1: जी
0: रऊ भाई निजामुद्दीन भाई, वकार फरीदी, आशीष चौधरी, महबूब दुकानदार, मुकेश कश्यप, फरमान भाई और बीबी पुष्प मकसूद हुसैन, रजा हुसैन, और आप भी दुख की घड़ी में उनके
1: हाँ
0: साथ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राशिद भाई लीजिए, सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो नजीबाबाद,
1: हेलो नजीबाबाद
0: कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं ग्राम ज्ञानपुरा जिला मुरादाबाद साबिर अली बात कर
0: जी साबिर भाई, कैसे हैं आप?
1: रहा हूँ। हाँ सब बढ़िया हैं, आप कैसे हैं सर? अरे
0: यहाँ बहुत बढ़िया है साबिर भाई, आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो बड़ा मस्त हो रहा, सर ये ठंडा मौसम हो रहा, मई के
0: अच्छा,
1: महीने में ऐसा मौसम पहली
0: पहली बार
1: बार देखा हमने सर ये।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहली बार ऐसा मौसम हो रहा है। और ये मौसम ऐसा हो रहा है जैसे नवंबर जब खत्म होने वाला होता है और दिसंबर शुरू होने वाला होता है, रात के समय ऐसी सर्दी हो रही
1: ऐसी सर्दी होती है, हम तो
0: है।
1: कहना कि ऐसा ही मौसम बना रहे तो फिर तो गर्मी का तो पता ही नहीं चलेगा।
0: हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। मैं आपका नाम भूल गया, आप अपना नाम एक बार
1: साबिर
0: फिर।
1: अली,
0: साबिर भाई, तो साबिर भाई मौसम सारे ज़रूरी होते हैं, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं शायद जो ना हो पाए।
1: हाँ सर ये भी सही कह रहे हो, हम तो किसान हैं हम तो।
0: हाँ तो फिर यही तो है ना, तो
1: हाँ
0: उस ईश्वर ने जो भी कुदरत का निर्माण किया है और उसने उसमें हर तरह के रंग भरे हैं, हर तरह के मौसम भरे हैं, तो हर एक मौसम का,
1: अलग
0: हर एक रंग का अपना अलग महत्व है।
1: मजा होता है और उसी के
0: हाँ
1: हिसाब से हम काम करते हैं।
0: हाँ तो अगर हम उसकी रजा में रहेंगे तो हम मज़े में रहेंगे, है ना?
1: जी, हाँ
0: तो साबिर भाई आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: हाँ मैं दो रास्ते फिल्म का गाना सुना दीजिएगा मुझे, बिंदिया चमकेगी
0: हाँ
1: चूड़ी खनकेगी। सर
0: जी
1: मुझे एक बात और कहनी है,
0: जी
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में ज्यादा श्रोता हो गए, ये दो कार्यक्रम कर दो, एक लोकल के लिए और एक बाहर वालों के लिए।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, कार्यक्रम
1: जी
0: दो कर सकते हैं लेकिन समय तो सीमित ही है। और यदि कार्यक्रम, हाँ यदि कार्यक्रम दो हो जाएंगे तो उसके लिए हमने अपने सभी श्रोताओं को एक और भी कार्यक्रम है शनिवार के दिन, जिंदगी लाइव, दोपहर बारह
1: हाँ
0: बज
1: वो
0: के
1: भी सुनते
0: पाँच
1: हैं।
0: मिनट से 1 बजे तक। तो अगर ये बात करने वाला कार्यक्रम है, इसमें आप सीधे हमसे बात करते हैं और उस कार्यक्रम में आप सीधे हमसे मैसेजेस करते हैं और हमसे अपनी बातें हमसे रखते हैं और हम उसके अनुसार आपके गीत सुनवाते हैं, ठीक है साबिर भाई? तो हर तरह के रंगों का समावेश ही आकाशवाणी को इतना वृहद और विशाल बनाता है जिसकी वजह से
1: हाँ
0: आज,
1: नहीं, बहुत से बेचारे महरूम रह जाते हैं कि हमारे उनकी गोल नहीं लग पाती, हम तो खैर लगा लेते हैं, अपनी गोल लग जाती है इंशाल्लाह।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। तो साबिर भाई कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां हमें और इजाजत नहीं दे रही हैं कि कार्यक्रम का समय आगे बढ़ाया जाए, तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रात के हम सफ़र।

नमस्कार श्रोताओं, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी इवेंट होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ताउम्र हमारी ज़िंदगी का सफ़र बने रहते हैं और उन्हें ही हम अपना हम सफ़र मान लेते हैं। तो इसी क्रम में आकाशवाणी भी हमारा एक हम सफ़र है। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए, आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल। तो आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी आपका किस प्रकार से हम सफ़र रहा है आपकी इस जीवन यात्रा में, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और मैं देख रहा हूँ हमारी स्क्रीन पर हमारे श्रोताओं के मैसेज रिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए हैं। आज का हमारा विषय है आकाशवाणी के साथ हमारी ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे हमारा हम सफ़र बन गया। तो इसी क्रम में हमारे सबसे पहले हमें हमारे एक श्रोता हैं रविंद्र कुमार राणा जी, इन्होंने हमें एक कविता लिख करके भेजी है। बड़ी प्यारी कविता है, आकाशवाणी के ये भव्य 90 साल ऑल इंडिया रेडियो बना बेमिसाल। रेडियो के सुरों ने जनहित में सदा जनगणमन का रखा पूरा ध्यान। विज्ञानी, किसान, बालक, बूढ़े, जवान, सभी के जीवन में ज्ञान उत्कर्ष भरा। आकाशवाणी की हर श्वास प्रश्वास में सबके प्रति है सकारात्मक प्रेम भरा। ज्ञान ज्योति के पुष्प पल्लवित कर देशवासियों का जीवन धन्य किया। रेडियो के समता परम स्नेही भाव ने श्रोताओं पर उपकार अनन्य किया। धन्य ये ऑल इंडिया रेडियो सबको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वर देती है। तुलसी मीरा सूर राधा रैदास कबीरा के प्रिय भजन सुना मंत्र मुग्ध कर देती है। मन पसंद कव्वाली रागनी फिल्मी गाने सुनाकर सबको हर्षाती है ये रेडियो। विश्वसनीयता, प्रमाणिकता, मौलिकता, वैचारिक अभिव्यक्ति दर्शाती है रेडियो। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का आत्म साक्षात्कार कराती आकाशवाणी। प्रसार भारती कुशल नेतृत्व में संचालित भारत को प्रकाशित करती आकाशवाणी। आम जन मानस के अंतस्तन मन में देखा गया है अत्यधिक सरस सुधार। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चहुओं श्रोताओं से रेडियो करती प्रेम अपार। सभी सम्मानित श्रोता जनों से अंत में सर्वाधिक ये अनन्य विनय हमारी, छात्र, सैनिक, कृषक, सर्वजन हेतु आकाशवाणी सुनना सदा हितकारी। श्रोता गण ज्ञान प्रकाश लेकर जो भी आकाशवाणी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, कवि, लेखक, वैज्ञानिक, वार्ताकारों से निश्चित ज्ञानार्जन अमोघ वर पाते हैं। रविंद्र कुमार राणा जी ने ये कविता हमें लिख करके भेजी है कार्यक्रम रात के हमसफर में। और आज की थीम है, आज के इस कार्यक्रम का विषय है आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल। और ये 90 साल बेमिसाल आपके किस प्रकार से हम सफ़र रहे, आज इस कार्यक्रम में हम इस सब का उल्लेख करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, अपने सभी श्रोताओं को आपके द्वारा हम तक भेजी गई आपकी सारी बातें बताएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जल्दी से हमें लिख भेजिए आकाशवाणी आपका हम सफ़र किस प्रकार से रहा। तब तक आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम रात के हम सफर में। कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है रात आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी ने, और ये लिखते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दौर था वीडियो रेडियो सुनते थे, 1986 की बात है कि रेडियो सुनते थे और ये सोचते थे कि हमारा नाम कैसे शामिल हो। ये सोच सोच कर काफ़ी वक्त गुजर गया, हमें पता ना लगा, लेकिन मोहब्बत इस कदर थी कि आकाशवाणी नजीबाबाद सुनते रहे और आज तक सुन रहे हैं। और जब पता लगा कि खत डाले जाते हैं तब नाम आता है, तब हमने खत डालने शुरू किए। बिल्कुल सही बात है, और खत डालने पर ही हमारा नाम आता है, और ये बहुत अच्छी बात है। और अगला मैसेज हमें लिखते हैं ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। और ये हमें लिखते हैं आकाशवाणी की 90 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे बोलना, चलना, खेती करना, दोस्त बनाना, गीत संगीत के साथ मनोरंजन, दूर दूर की खबर देना, आज हम सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आकाशवाणी हमारा एक ऐसा साथी रहा है जिसने जीवन के हर मोड़ पर हमें संभाला है, सुनाया है और हमें हंसाया है, और दुख की घड़ी में भी आकाशवाणी हमारे साथ रहा है। तो ऐसे ही जीवन का सफ़र चलता रहा और आकाशवाणी हमारे साथ आगे बढ़ता, हम आकाशवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन यूं ही आगे बढ़ाते रहे।

कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। ये लिखते हैं, आकाशवाणी के साथ हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उससे जो ज्ञान की बातें मिलती हैं उनसे पुरानी बातें भी याद आती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नजीबाद आकाशवाणी से हम जुड़े हुए हैं और जो भी बातें हमें यहाँ से बताई जाती हैं हम इन पर गौर करते हैं, और ये सारी जो बातें हम गौर करते हैं अब से नहीं, बहुत पुराने समय से ही गौर करते चले आ रहे हैं। मिसबा शमसी लिख रही हैं नगीना से, आकाशवाणी की हर गूंज में यादों का एक संसार है, सदियों पुराना ये रिश्ता सच्चा और बेशुमार है, शुरू की मीठी दोस्ती हर पल का हसीन साथ है, बेमिसाल है ये सफ़र इसमें कोई अलग ही बात है। क्या बात है, बहुत ही शानदार पंक्तियाँ ये हमें लिख करके भेजी हैं मिसबा शमसी ने। आप भी अपने मैसेजेस हमें टाइप करके भेजते रहिए, हम आपका मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

हमारे अगले श्रोता लिख के भेज रहे हैं, मुझे आज भी याद है 2005 में जब नजीबाबाद से आरजे सुनील वर्मा जी और प्रेम कुमार सडाना जी से मुलाकात हुई, वो बहुत ही शानदार लम्हा था मेरी ज़िंदगी का। और ये हमें लिख कर के भेजा है परीमहल कासगंज से, आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, मोहम्मद असलम सैफी, इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली और इनके सभी परिवार वालों ने। आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम 15 साल से नजीबाबाद सुन रहे हैं, पहले हम खत भेजते थे, अब हमारा खत शामिल होते रहे हैं, अब व्हाट्सएप के माध्यम से कार्य अपने नाम भेजते हैं और मैसेजेस भेजते हैं। यहाँ के सभी कार्यक्रम बढ़िया, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को उसके 90 साल पूरे होने पर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा, ये लिख करके भेजते हैं। और रात के हम सफ़र कार्यक्रम में अगला मैसेज मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट से मोहम्मद बकार, फरीदी इकबाल, फरीदी सितार बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर लिख करके भेजते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्षों के इस लंबे सफ़र की। 22 साल से रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं और ज़िंदगी का कोई सा भी पल ऐसा नहीं जिसमें हमारे साथ रेडियो ना हो। और बहुत ही अच्छा मतलब अनुभव बता रहे हैं कि रेडियो किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी में शामिल है। और अनिल विनोचा जी नगीना से लिखते हैं, आकाशवाणी

लेकिन 90 साल बेमिसाल, सच बहुत ही गर्व उल्लास, उत्साह और बड़ी उपलब्धियों का समय है, जिसके लिए सभी को हार्दिक बधाई। रेडियो सबसे पुराना और पहला सूचना, ज्ञान और मनोरंजन का साधन था, जिसे दिल से नमन। जब महात्मा गांधी जी ने देश को संदेश देना था, तब रेडियो को ही चुना था, और आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी रेडियो पर ही आते हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो पर ही सब चर्चाएं होती हैं, और आधुनिक समय का जो पॉडकास्ट है, जो आजकल हम एक वर्ड सुन रहे हैं, वो भी आकाशवाणी से ही प्रेरित है, क्योंकि पहले आकाशवाणी पे वार्ताएं और भेंट वार्ताएं होती थी, तो उसी भेंट वार्ताओं में केवल उस समय ऑडियो होती थी रेडियो पर, लेकिन अब ऑडियो विजुअल होता है। कितना गहरा अगला लिखते हैं मैसेज, हमें रेडियो से बहुत ही गहरा रिश्ता है। 90 के दशक से 2005 तक अपनी युवा आयु में रेडियो से लगाव बना। टीवी तो था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण उस समय विद्युत आपूर्ति बहुत कम होती थी, तो ज़्यादातर रेडियो ही सुना जाता था। हमारे घर में रेडियो का वो मर्तबा हासिल हुआ जो आज नए नए LCD TV स्क्रीन को भी नहीं है। रेडियो हमारे फादर के रूम में बड़े ही सुंदर तरीके से और सलीके से रखा होता था, और उसको ढकने के लिए हमारी माताजी ने एक सुंदर सा कवर क्रोशिया का बनाया था। फैजुर रहमान नारायणपुर रतन बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमें लिखते हैं, और अब लगता है कार्यक्रम का समय, हमें यहीं पर कार्यक्रम को अंत करना होगा। आपको छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ, अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रात के हम सफ़र। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

0: मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become